आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: भक्ति गीत के बाद स्वागत बा रउआ सबके, और ये कार्यक्रम अभी शुरू हो रहल बा आपन दी आपन देखभाल। जे में हम है राउर दोस्त दीपाली, तो सबसे पहले स्वीकार करी हमार प्रणाम, सुप्रभात। दोस्त लोग, रउआ तो पता ही बा कि एक कार्यक्रम में हम बतावे नी कुछ उपयोगी घरेलू नुस्खा, तो हाँ आज भी हम लेके आ गइल बानी ऐसने कुछ नुस्खा। दोस्त लोग, आज हम बतावे जात बानी सबसे पहले जटामांसी के बारे में। दोस्त लोग, जटामांसी से पाचन सुधरेला, त्रिदोष के नाश होला तथा त्वचा और रक्त विकार में लाभ होला। जटामांसी कसैली, तीखा रस वाला, संदिग्ध और तीक्ष्ण गुण से युक्त होला। अनिद्रा, हृदय रोग, वमन, अरुचि, ज्वर, हिस्टीरिया, मिर्गी, दंत रोग, सूजन, मस्तिष्क रोग, स्मृति विभ्रम, स्मृति के कमजोरी, मूत्र रोग, मासिक स्राव की अनियमितता, आक्षेप, पीलिया, गैस व नेत्र रोग की दूर करेला। रक्त संचार सुधारेला, पेट दर्द, वमन और कुष्ठ आदि रोग के मिटावेला। आयुर्वेद में एके इहे गुण बतावल गइल बा। यूनानी तिब्ब के अनुसार ई दिल, दिमाग, जिगर तथा पेट के रोग के दूर करेला। ई पौष्टिक और बलदायिनी भी होला। ई बाल के काला भी करेला। हृदय के बेचैनी, पेट में अफरा तथा मासिक धर्म संबंधी अनेक कष्ट के नष्ट करेला। जटामांसी नेत्र ज्योति भी बढ़ावेला।

पे कौन कौन बीमारी से निजात मिल सकेला। नपुंसकता में समान मात्रा में जटामांसी, लौंग, जायफल और सौंठ लेके चूर्ण तैयार करी और दिन में 2 से 3 बार 1-1 चम्मच के मात्रा में ली। दांत और मसूड़ा के रोग में जटामांसी के चूर्ण बारीक करके रोजाना मंजन की तरह दांत पर मली और मसूड़ा के मालिश करी। ऐसा करे से दांत मसूड़ा के दर्द, खून और पीव आवल, मुंह के बदबू तथा दांत के दर्द आदि रोग समाप्त हो जाए। पेट में दर्द होके पे सौंठ, आंवला, काला नमक और जटामांसी के चूर्ण समान मात्रा में लेके दिन में 3 से 4 बार सुसुम या गर्म पानी से सेवन करे से पेट में होके वाला दर्द मिट जाला। अनिद्रा में जटामांसी की 1 चम्मच चूर्ण पानी के साथ रात के सूते से 1 घंटा पहले ली। हाई ब्लड प्रेशर होके पे जटामांसी, अश्वगंध और ब्राह्मी ये तीनों के समान मात्रा में लेके चूर्ण बनाई और दिन में पानी के साथ 2 से 3 बार सेवन करी। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाए। दिल के धड़कन बढ़े पे सुबह शाम 1-1 चम्मच दालचीनी में 1/2 चम्मच जटामांसी के चूर्ण और 1 चुटकी कपूर मिला के रोजाना ली और जब तक दिल की धड़कन सामान्य ना हो जाए यह खुराक लेते रही। मिर्गी रोग होके पे जब मिर्गी रोग में दौरा पड़े और रोगी बेहोश हो जाए तो जटामांसी के चूर्ण नथुना में लगा के सुंघाई। त्वचा में निखार लावे और एके बरकरार रखे खातिर गुलाब जल में जटामांसी के जड़ के घीस के चेहरा पर लेप करी आ 1-2 घंटा के बाद चेहरा के पानी से धोली। ई करे से चेहरा में निखार आई। हिस्टीरिया ये रोग प्राय स्त्री के होला जेकर मुख्य कारण तनाव ही मानल गई बा। 4:2:1 के अनुपात में जटामांसी के जड़ के चूर्ण, वज के चूर्ण और काला नमक मिला के 1 सप्ताह तक रोजाना शहद के साथ 1/2 चम्मच के मात्रा में दिन में नियमित रूप से ली।

0: जटा मानसी से जुड़ल कुछ नुस्खा। अब चली जान लियल जाओ हरड़ के कुछ नुस्खा। अस्थमा रोग में यानी दमा में रात के समय हरड़ के रस चूसे से दमा के शिकायत दूर होला। यदि हरड़ के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक भी चूसी तो हरड़ के कसैला और कड़वापन काफी हद तक मिट जाई। दस्त और पेचिश में पुराना दस्त और पेचिश से राहत पावे खातिर अधपका हरड़ के 4 ग्राम गुद्दा में थोड़ा सा लौंग और दालचीनी के चूर्ण मिला के शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन करी। कब्ज होखे पे आयुर्वेद में कब्ज के अनेक रोग के मूल कारण मानल गई बा। 2 से 3 हरड़ के पिस्टी या हरड़ के 6 फल के काढ़ा बना के उसमें लौंग और दालचीनी के चूर्ण डाल के ये दोनों के मात्रा 4 ग्राम रात के सूते से 1.5 घंटा पहले ली। अपच अफरा और पेट दर्द में यदि छोटा हरड़ के भून के उसके चूर्ण 1 चम्मच में थोड़ा सा काला नमक मिला के सेवन कर जाए तो ये सब लक्षण शांत हो जाए। घाव होके पे हरड़ के भून के उसके बारीक चूर्ण बना के उसके छान ली। आ इस चूर्ण में इमली के पानी डाल के बारीक पेस्ट तैयार करी और ये प्रभावित उंगली पर लगाई। हरड़ में सैकड़े के गुण और इमली के एसिड जनित प्रभाव दोनों मिला के घाव के शीघ्र सुखा दी। में हरड़ की काढ़ा तैयार करके उसमें पानी मिला के आँख धोए से आँख के कई रोग नष्ट हो जाला। ऐसे लालिमा सूजन और दर्द आदि लक्षण के भी शमन होला। हरड़ बाल खातिर एगो टॉनिक के समान है। हरड़ के गुद्दा पीस के नारियल के तेल में तब तक धीमा आंच पर पकाई जब तक हरड़ के सार तेल में समाहित ना हो जाए। आ ई तेल के बाल के जड़ में रोजाना मालिश करे और ई लगावे से बाल मजबूत होला और ई ओकर रंग भी काला होखे लागेला। उसे सप्ताह में 1 से 2 बार हरड़ के काढ़ा से बाल के धोए से भी बाल काला और दोष रहित हो जाला। बावसीर में ताजा हरड़ के एरंड के तेल में सुनहरा ब्राउन रंग हो जाए तक भुनी, फिर ओकर चूर्ण बना ली। फिर जुबान पर 1/2 चम्मच चूर्ण रख के उसके चूसी और थूक के साथ धीरे धीरे अंदर जाएगी। ऐसे कब्ज दूर हुई और अंततः बवासीर के नाश भी हो जाई, बवासीर के मस्सा भी दूर हुई। दोस्त लोग हरड़ के प्रयोग करते समय मिर्च तेल तथा चरपरी तीखा एवं उत्तेजक वस्तु के सेवन ना करी तो शीघ्र लाभ हुई। दोस्त लोग ई रहल है आज के आपन कार्यक्रम आपन देह आपन देखभाल जिमे हमनी के जननी है सन जटा मानसी और हरड़ से जुड़ल कुछ नुस्खा। तो अब दी हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति। आ रखे रहुआ आपन सेहत के ख्याल। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
6: मैंने भीष्म और शाल्वो द्वारा ठुकराई गई अम्बा की पीड़ा देखी है। उसका प्रेमी राजा शाल्व उसे अपनाने को तैयार नहीं था और भीष्म तो पहले ही ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे। और आखिरकार इस समाज ने औरत के लिए जो सीमाएं तय कर रखी हैं, अम्बा उसी में कैद हो गई। पर कहते हैं ना कि सब कुछ खाली चला जाए, पर गरीब की हाय खाली नहीं जाती। गरीब मतलब वैसा गरीब नहीं, मतलब बेचारा सताया हुआ। सो अम्बा ने तय कर लिया कि उसके साथ जो भी हुआ है उसका दंड किसी को तो भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ा।
7: सोचते रहिए महाराज भीष्म, पर मैं अपमान और तिरस्कार भरा ये जीवन अब और नहीं जी सकती। मैं उस अपराध का दंड नहीं भोग सकती जो मैंने किया ही नहीं है। पाप आपने किया है, आपने, और इसका दंड भी आप ही भोगेंगे। वचन देती हूं मैं आपको भीष्म, कि जिस प्रतिशोध की आग में मैं जल रही हूं, वो आग एक दिन आपको भी जलाएगी, आपको भी जलाएगी वो आग भीष्म, आपको भी।

तो ये कुंती अपनी ही पहचान के लिए लड़ती रही। महाराज शूरसेन की बेटी प्रथा, जिसे महाराज कुंती भोज ने पाला, उसका विवाह किया। जब हस्तिनापुर की बहू बनी थी तब लगा था कि मुझे मेरी नई पहचान मिल गई, पर नहीं, तब भी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता अचानक मुझे छोड़ गए। उत्तराधिकार की इस लड़ाई के बीच तुम पांच भाइयों को मैंने किन हालातों में बड़ा किया, ये मैं ही जानती हूं। जब तुम सबके अधिकारों की बात आई तो मैंने उनसे केवल विशाल हस्तिनापुर साम्राज्य के पांच गांव मांगे, पर कौरवों ने, उन्होंने साफ कह दिया कि वो तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। और आज, आज तो तुम सबके लिए सचमुच इस धरती पर सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं है। दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए गए।

0: ये आपका प्रेम है महात्मा विदुर, किंतु आपकी प्रेम भावना मेरे पुत्रों को उनका अधिकार नहीं दे सकती।
1: बस माँ, अब आगे कुछ मत कहो। हम अपना अधिकार स्वयं लेंगे। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तब तक कुछ भी असंभव नहीं।
2: अपने पुत्रों पर विश्वास बनाए रखें माँ। आपका पुत्र अर्जुन आपको वचन देता है कि हमारा जो अधिकार हमें मांग कर नहीं मिला, अब वो हम अपने बाहुबल से लेंगे।
3: सुन लिया ना भाभीश्री? आप निश्चिंत रहिए, आपके पराक्रमी पुत्र कभी विवश हो ही नहीं सकते। ये छल से हारे हैं, जीवन से नहीं हारे। महान है पांडव पुत्र जो सब कुछ खोकर भी अपनी नैतिकता और धर्म नहीं हारे।
0: पांडव नहीं हारे, पर हमारा कुल तो हार गया, कुरु कुल की मर्यादा तो हार गई, उस भरत वंश की प्रतिष्ठा कलंकित हो गई, जिसे बचाने के लिए राजमाता सत्यवती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारे तात देवव्रत भीष्म के सामने खोला था।
4: अब ये कौन सा रहस्य था जो खुद भीष्म को भी नहीं पता था? दरअसल ये रहस्य भी भीष्म के लिए एक नई मुश्किल पैदा करने वाला था। तो सुनिए वो रहस्य और वो मुश्किल जो भीष्म के सामने आने वाली थी।
5: पुत्र देवव्रत, मैं जो कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनना। मैंने बहुत सोचने के बाद तुम्हें कुछ कहने के लिए यहां बुलाया है।
6: आप निसंकोच कहे राजमाता, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है।
5: मैं जानती हूं कि तुम अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकते, और यही मेरा भय भी है। आज हम जिस परिस्थिति में आ खड़े हुए हैं पुत्र, तुम्हें अपने आप से समझौता करना होगा।
6: मुझे विश्वास है कि आप जो भी कहेंगी मेरे स्वाभिमान को ध्यान में रखकर ही कहेंगी माते।
5: मैं कोशिश करूंगी, पर मेरी बात सुनकर तुम विचलित मत होना।
6: पर आखिर आप ऐसा क्या कहने जा रही हैं राजमाता?
5: तुम जानते हो कि तुम्हारे भ्राता चित्रांगद गंधर्वों से युद्ध करते हुए मारे गए थे।

0: के सामने जल थल और वायु को साक्षी मानकर प्रण किया है कि मैं इस जीवन में संतान को जन्म नहीं दूंगा।
1: पर वो तुम्हारी संतान नहीं, विचित्र वीर्य की संतानें होंगी पुत्र।
0: मुझे अपनी ही दृष्टि में गिरने को मजबूर ना करें माता सत्यवती, मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं कर सकता।
1: मैं इस नियोग के लिए किसी ऋषि महर्षि को बुलवा सकती हूँ देवव्रत, किंतु मैं नहीं चाहती कि भरत वंश के रक्त में कोई और रक्त मिले। मैं वंश की शुद्धता के लिए तुमसे ये बलिदान मांग रही हूँ।
0: असंभव माते, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता, भले ही मुझे मृत्यु को क्यों ना गले लगाना पड़े।
1: तो तुम कुरु वंश का अंत देखना चाहते हो?
0: आप मुझे समझने में भूल ना करें माते, मैंने कुरु वंश की रक्षा का प्रण लिया है, पर आप मुझे सोचने के लिए कुछ समय दे माते।
1: ठीक है, तुम जो भी निर्णय लो उससे पहले मेरी बातों की गंभीरता को समझना।
2: राजमाता, ये आप किस चिंता में डूबी हैं?
1: तुम विश्राम करो अंबिका।
2: लेकिन दासी ने बताया कि अभी तक आपने भोजन ग्रहण नहीं किया।
1: क्या भूख से कोई बड़ा संकट नहीं हो सकता अंबिका?
2: मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ राजमाता, उत्तराधिकारी की चिंता मुझे भी है, पर हमारे चिंता करने से क्या होगा जब महाराज विचित्र वीर ही।
1: मैं जानती हूँ उनकी संतान नहीं हो सकती।
2: अब तो ईश्वर जो चाहेगा वही होगा।
1: मुझे ज्ञान मत दो अंबिका, ईश्वर वही करता है जो हम चाहते हैं। ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। तुम जाओ और मुझे एकांत में छोड़ दो, मैं इस विषय पर तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती।
3: क्षमा करें महाराज।
0: विंता, तुम इस समय इतनी रात्रि में?
3: राजमाता ने आपको याद किया है।
0: वो ठीक तो है ना?
3: ये मैं कैसे बता सकती हूँ महाराज। हाँ, वो कुछ चिंतित सी तो लग रही थी।
0: ठीक है, तुम जाओ।
3: जो आज्ञा महाराज।
0: आदेश दे माते, कहें अब क्या संकट है?
1: बस एक ही संकट है पुत्र, कि कहीं हम चंद्रवंशी कुरुओं की यात्रा यहीं न रुक जाए।
0: किंतु माते,
1: मैं तुम्हारा संकट जानती हूँ भीष्म, लेकिन नियोग आवश्यक है, हमें चंद्रवंश की शुद्धता भी बचानी है।
0: पर क्या कोई और नहीं जो नियोग से अंबिका और अंबालिका को माता होने का सौभाग्य दे सके? मेरे अलावा कोई तो होगा।
1: हाँ पुत्र, बहुत सोचने के बाद मुझे एक रास्ता मिला है, पर पुत्र आज मैं तुम्हें एक और सत्य बताने जा रही हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी तुम्हें यह सत्य भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसे बता पाना किसी भी स्त्री के लिए सम्मान की बात नहीं हो सकती।
0: ये आप क्या कह रही हैं माते?
1: मैं जानती हूँ कि जिन नैतिक मूल्यों के लिए तुम हमेशा लड़ते रहे, मेरा सत्य सुनकर वे मूल्य तुम्हें ध्वस्त होते हुए लगेंगे। ये भी हो सकता है कि मेरा वो रहस्य जानकर तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचे, पर आज वो समय आ गया है जब मुझे तुम्हें वो रहस्य बताना ही होगा।
0: चुप क्यों हो गई राजमाता?
1: अपने आप से जूझ रही हूँ पुत्र। बात उन दिनों की है जब मैं अपने पिता के घर में थी और नौका चलाया करती थी, ऋषि महर्षियों को नदी पार कराती थी। उसी दौरान एक दिन मेरी नौका पर महर्षि पराशर सवार थे। मुझे देखकर वो विचलित हो उठे। उन्होंने मुझसे कामना की और मैं उन्हें ना नहीं कर सकी।

0: जिसके बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया।
1: मैं आपका पुत्र हूँ और आप अपने पुत्र से इस तरह की बातें कर रही हैं।
0: मैं जानती हूँ पुत्र कि तुम सामाजिक मर्यादा से बंधे हो। ये सब सुनकर तुम्हें कुरुवंश की मर्यादाएं बिखरती हुई लगी होंगी, पर जो हो गया वो।
1: आप कहना क्या चाहती हैं?
0: तुम्हें मेरे उस पुत्र से मिलना होगा। आज मेरा वो पुत्र महर्षि व्यास के नाम से जाना जाता है।
1: महर्षि व्यास? उन्हें कौन नहीं जानता, पर मुझे महर्षि व्यास से क्यों मिलना होगा?
2: अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग की विनती करने के लिए।
1: असंभव। आप भूल गई राजमाता कि आपने चंद्रवंश की शुद्धता की बात कही थी, रक्त दोष से मुक्त रखना चाहती थी कुरु वंश को। पर क्या आपको ज्ञात नहीं है कि महर्षि पराशर सूर्यवंशी हैं? इसलिए महर्षि व्यास भी।
0: जानती हूँ, वो भी सूर्यवंशी है, लेकिन वो मेरा पुत्र है, तुम्हारा भाई है।
1: क्या ये रक्त दोष नहीं होगा?
0: मैं जानती हूँ, पर और कोई रास्ता भी नहीं है। कुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ समझौते भी करने पड़े तो करने होंगे।
1: आप मुझे मेरे स्वाभिमान के साथ समझौता करने के लिए कह रही हैं माते?
0: अपने लिए नहीं पुत्र, एक महान राजवंश के लिए, जिसके लिए तुमने कितने बलिदान दिए, जिसके लिए तुमने मत्स्यकन्या को सत्यवती के रूप में सम्मानित किया।
1: मुझे विश्वास नहीं हो रहा है माते, कि आपने जो कहा वो सच हो सकता है।
2: भरत वंश की रक्षा के लिए तुम्हें विश्वास करना होगा। अब जाओ पुत्र, नियोग के लिए महर्षि व्यास को हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दो।
1: किंतु माते,
2: ये शंका आशंका का समय नहीं है भीष्म, कुरुकुल की रक्षा का प्रश्न है। वो तुम्हें ना नहीं कहेंगे। जाओ पुत्र, जाओ।
3: फैसला बड़ा मुश्किल था, लेकिन कुरुवंश की एग्जिस्टेंस के सवाल ने सत्यवती को मजबूर कर दिया था। कुरुवंश का मोह भीष्म की कमजोरी था, ये उनको मालूम था। क्या कि जैसे ही किसी को आपकी कमजोरी पता चली, बस समझ लीजिए वो उसका फायदा जरूर उठाएगा, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। बस जिंदगी के सच हैं भैया, जान लो, काम आएंगे।
4: महाभारत।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

हकीकत तुझको नहीं पता है, फिर उनकी हकीकत।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88869।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ADG अमिताभ ठाकुर ने जिले का किया दौरा, सभी प्रखंडों में ECG जांच सेवा की हुई शुरुआत, गंडक के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट, विदेश जाने वालों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण, और करंट लगने से पति पत्नी की हृदय विदारक मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। ADG अजिताभ कुमार का गोपालगंज में आगमन हुआ था। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ADG अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, जिले के सभी SDPO और अंचल निरीक्षक तथा DSP मौजूद रहे। इसमें लंबित कांडों के त्वरित और समयबद्ध निपटारे का निर्देश ADG ने दिया। अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। तो वहीं रात्रि गश्ती बढ़ाने और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। सभी पुलिस पदाधिकारियों को कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग का भी निर्देश दिया गया। तो वहीं जन जन स्तर पर पुलिसिंग को और मजबूत करने का निर्देश ADG के द्वारा दिया गया। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक अजिताभ कुमार रक्षित कार्यालय यानी पुलिस केंद्र का भी निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस बैरक, उपस्कर शाखा, परिवहन शाखा और शस्त्रागार का जायजा लिया। पुलिस केंद्र की साफ सफाई और न्यू पुलिस लाइन में निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान SP समेत पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद ADG अजिताभ कुमार ने थामे थाना परिसर में ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। वहां जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर उन्होंने जानकारी भी दी और कहा कि सुरक्षा तथा सहयोग के लिए पुलिस लोगों की सेवा में समर्पित है। सभी लोग बेझिझक थाना पहुंचे। तो वहीं अनजान कॉल से भी सावधान रहने की सलाह उन्होंने आम जनता को दी। बोले कि पुलिस किसी को अनावश्यक रूप से हाजत में नहीं रख सकती। थाना आने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। ADG ने संवाद कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी समेत उपस्थित तमाम पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी ADG से सीधे संवाद किया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिले में हृदय रोग से संबंधित मरीजों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोपालगंज जिला अस्पताल से लेकर सभी 14 प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ECG जांच की सुविधा पूर्ण रूप से संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से अपील किया है कि सीने में दर्द, घबराहट, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक पसीना, चक्कर या हृदयाघात से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर समय गंवाए बिना अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हृदयाघात के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई बार मरीज या उनके परिजन लक्षणों को सामान्य समस्या समझकर इलाज में देरी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति में हृदयाघात से संबंधित लक्षण दिखाई दे तो तत्काल चिकित्सकीय जाँच कराना जरूरी होता है। नेपाल में विगत दिनों लगातार हुई बारिश के कारण गंडक बराज से अधिक मात्रा में पानी के डिस्चार्ज होने के फलस्वरूप गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी के निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह के द्वारा कुचायकुट और गोपालगंज प्रखंड के काला मटिहनिया, कटघरवा, जगीरी टोला, खाप, मकसूदपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नदी के जलस्तर एवं स्थानीय परिस्थितियों का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अंचल अधिकारी रजत बर्णवाल, कार्यपालक दंडाधिकारी सुशांत कुमार, जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता उपस्थित रहे। इस दौरान स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ भी क्षेत्र के स्थिति की समीक्षा की गई। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यक तैयारियों की भी जानकारी ली गई। अंचल अधिकारियों को संवेदनशील एवं निचले क्षेत्रों में माइकिंग के माध्यम से लोगों को सतर्क करने तथा नदी के जलस्तर में वृद्धि की स्थिति में स्थानीय लोगों को सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर जाने की अपील करने का भी निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील किया है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, नदी एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से न जाएं, किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित प्रशासनिक पदाधिकारी को सूचित करें। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि सीने में अचानक दर्द या दबाव, दर्द का हाथ, कंधे, पीठ अथवा जबड़े तक पहुंचना, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, उल्टी या चक्कर जैसी समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे लक्षण हृदय से संबंधित गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला अस्पताल तक पहुंचने में समय लग सकता है। ऐसे में हृदयाघात से संबंधित शिकायत होने पर पहले नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण है। वहां चिकित्सकीय जांच एवं ECG के माध्यम से मरीज की स्थिति का प्रारंभिक आकलन किया जा सकता है और प्रारंभिक इलाज से स्थिति को नियंत्रित भी किया जा सकता है। आज जिलाधिकारी ने भी डुमरिया घाट, दीपऊ छरकी, महारानी छरकी, सत्तर घाट एवं बखरी तटबंध का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बैकुंठपुर प्रखंड के संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में पकहा, शीतलपुर, फैजुलापुर एवं प्यारेपुर गांव में भी स्थिति और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। बरौली तथा माझा अंचल के सरफरा और भैंसई जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी प्रशासनिक तैयारियों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित BDO, CO, BPRO एवं अन्य अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ संवेदनशील क्षेत्रों की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने तथा आवश्यकता होने पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए भी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को संवेदनशील छरकियों एवं तटबंधों की लगातार निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित विभागों को पर्याप्त आपदा प्रबंधन संसाधन एवं आवश्यक उपकरण तैयार रखने को भी कहा गया। आपदा मित्रों को संवेदनशील तटबंधों एवं नदी के आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया ताकि जलस्तर में होने वाले किसी बदलाव की तत्काल सूचना प्रशासन को मिल सके। जिला प्रशासन गोपालगंज के सहयोग से उत्त प्रवासी संरक्षक कार्यालय पटना, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुरक्षित एवं कानूनी रूप से वैध विदेश रोजगार प्रवासन को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस जागरूकता शिविर का आयोजन 29 सितंबर को सुबह 11 बजे से समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में होगा। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी समीर सौरभ, उत्त प्रवासी संरक्षक और विदेश मंत्रालय सहित जिला प्रशासन एवं मंत्रालय के वरीय पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहेंगे। शिविर में विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित एवं वैध प्रवासन, आवश्यक प्रक्रिया, सावधानियों तथा प्रवासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य विदेश में रोजगार के इच्छुक लोगों को अवैध माध्यमों एवं संभावित धोखाधड़ी से होने वाली कानूनी एवं सुरक्षित प्रवासन के प्रति जागरूक करना है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील किया है कि विदेश में रोजगार के इच्छुक व्यक्ति एवं उनके परिजन शिविर में उपस्थित होकर आवश्यक एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी ब्रह्म स्थान के पास शनिवार की शाम को करंट लगने से एक दंपति की मौत हो गई। दोनों निर्माणाधीन मकान में रखी सीमेंट और अन्य सामग्री को बारिश से बचाने के लिए गए थे। इसी दौरान मकान के सरिया में प्रवाहित हो रहे करंट के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले पति करंट के चपेट में आ गए, उन्हें बचाने की कोशिश में पत्नी भी करंट के चपेट में आ गई और हादसे में दोनों की जान चली गई। मृतकों की पहचान ब्रह्मस्थान निवासी स्वर्गीय हीरालाल शाह के 55 वर्षीय पुत्र संतोष शाह और उनकी 50 वर्षीय पत्नी बसंती देवी बताई जा रही हैं। संतोष शाह आटा चक्की चलाते थे जबकि बसंती देवी सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थावे दुर्गा मंदिर परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों द्वारा पर्यटकों को संबोधित करते हुए थावे मंदिर की गरिमा का बखान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह और अधिकार मित्र निधि कांत तिवारी द्वारा मंदिर परिसर में उपस्थित पर्यटकों को नालसा की विभिन्न योजनाओं ADR की कार्यप्रणाली विधिक सहायता पीड़ित प्रतिकर महिला हेल्पलाइन मध्यस्थता सहित तमाम बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट के सेमरा पंचायत भवन परिसर में भी बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न सहित तमाम बिंदुओं पर विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को आवश्यक जानकारी दी गई। इसमें पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी और अधिकार मित्र राजू तिवारी की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी। पिछले 16 सितंबर को उंचका गांव थाना क्षेत्र से लापता एक किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सिवान के मुफसिल थाना क्षेत्र से इस नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में सगा फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसके दोस्त के घर इस नाबालिग को छुपा कर रखा गया था। पत्नी को बताने के बाद मामला खुल गया। नाबालिग को भगाने और संरक्षण देने के आरोप में सगे फूफा को पुलिस ने गिरफ्तार कर अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। भोरे थाना की पुलिस ने लूट कांड के एक अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सोनू कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह बताया जा रहा है, जो सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के संठी गांव के वकील सिंह का पुत्र है और इस पर पहले से मामला दर्ज था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी, अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कटहरिया गांव में छापेमारी करते हुए स्मैक और नगदी तथा मोबाइल फोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अवधेश कुमार बताया जा रहा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका भाई महेश कुमार बाहर से स्मैक लाता है और दोनों भाई मिलकर गाँव में इसकी बिक्री करते हैं। इस मामले में पुलिस ने अवधेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 10 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद किया गया है। अब NDPS एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस नशे के कारोबार में शामिल इसके अन्य साथियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नगर थाना की पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह को पकड़ा है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग गोपालगंज रात्रि में भोजन करने के उपरांत पैदल अपने आवास पर लौट रहे थे। इसी क्रम में जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के पास मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों ने झपट्टा मारकर उनका मोबाइल फोन छीन लिया और फरार हो गए। इस मामले में उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और कांड की गंभीरता को देखते हुए आसपास के CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। अनुसंधान करते हुए पुलिस ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मोटरसाइकिल की पहचान की और इस आधार पर कार्रवाई करते हुए नन्हे कुमार राय पिता स्वर्गीय विश्वनाथ राय साकिन देवापुर अकील टोला थाना माझागढ़ को गिरफ्तार किया। इसके साथ विकास कुमार शर्मा साकिन छपिया वार्ड नंबर 24 थाना नगर को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी विकास कुमार शर्मा से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये लोग रात्रि के समय मोटरसाइकिल से शहरी क्षेत्र में घूमकर पैदल आने जाने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाते थे। मौका पाकर उनका मोबाइल फोन झपट कर फरार हो जाते थे। छीने गए मोबाइल फोन को अजय कुमार उर्फ बादल पिता कामेश्वर भगत साकिन आर्या नगर वार्ड नंबर 21 थाना नगर के माध्यम से बेचने की बात सामने आई। गिरफ्तार अभियुक्त नन्हे कुमार राय और विकास कुमार शर्मा की निशानदेही पर अजय कुमार उर्फ बादल के ठिकाने पर भी पुलिस ने छापेमारी की, जहां से झपटमारी कर बेचे गए रियलमी कंपनी और वीवो कंपनी के कुल 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तीनों को गिरफ्तार किया गया है और अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एडीजी अमिताभ ठाकुर ने जिले का किया दौरा। सभी प्रखंडों में ईसीजी जांच सेवा की हुई शुरुआत। गंडक के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट। विदेश जाने वालों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। और करंट लगने से पति पत्नी की हृदय विदारक मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
5: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
4: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
5: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
4: कहाँ?
5: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
2: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
2: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
2: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 8003-3586-76 या 95-999-27-982।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आप सभी को सब परिवार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्रोता बंधु, साप्ताहिक कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है, खैर मकदम है। प्रत्येक सप्ताह रविवार को शाम को 7:45 से और अगले दिन सोमवार को सुबह 7:10 पर आपका संदेश मिला कार्यक्रम प्रसारित होता है। आप तमाम श्रोता विशेष करके जो संदेश मिला में अपने बातों को रखते हैं उनके प्रति हम रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे श्रोता हैं अपनी मन की बात, अपने दिल की बात रेडियो रिमझिम तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। उम्र चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति का अपने जिंदगी का एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। यदि आप हमारे साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो और लोगों को भी आपके अनुभव से लाभ मिलेगा। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में पूरे सप्ताह भर रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से जो कार्यक्रम चलता है, जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, हमारे कई आदरणीय श्रोता हैं जो दूर दराज रहते हैं, देश विदेश रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं और गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, कई कार्यक्रम में जुड़ते हैं। ऐसे श्रोता जो हमें सुनते हैं वे यदि कार्यक्रम के संबंध में कुछ अनमोल सुझाव देते हैं तो हम उसे अपनाते हैं और उनके मन के मुताबिक कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, पिछले 2-4 दिनों से प्रकृति ने अपना रूप बदला, दिन रात बारिश हुआ और हो रहा है और उस बारिश में हम लोग अपने घरों में दुबके हैं। सरकार द्वारा भी चेतावनी दी गई है कि अति आवश्यक काम होने पर भी घर से बाहर निकले और विशेष करके जो वाहन चलाते हैं उन्हें तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा जो है किस रूप में कहां पहुंच जाता है किसी को पता नहीं चलता है, केवल सजगता सतर्कता ही बचाव का उपाय है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, सुझाव और मार्ग निर्देशन से रेडियो रिमझिम अपने स्थापना काल से और आज सितंबर का महीना समाप्त होने वाला है 2026 का, उसी पर चलता है। हमारे श्रोता जो है अनमोल हैं, उनके सुझाव और विचार अनमोल हैं। मान लिया जाए किसी व्यक्ति को अक्षर ज्ञान नहीं है, वे भी कई मूल्यवान सुझाव रेडियो रिमझिम को देते आए हैं। कहा जाता है कि पंच परमेश्वर होता है और सबके सुझाव विचार से ही जो कार्य होता है वह बेहतर होता है। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है समाज में। यदि हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ समय बिताना पड़ता है। अब तो शहरों में विशेष करके महानगरों में हम जब भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एकांकी जीवन बिताते हैं। जिस तरह ट्रेन में हमें लगता है कि 1000-1200 लोग बैठे हुए हैं और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चल रही है अपने लक्ष्य के तरफ, उसी तरह आज समाज हो गया है जिसमें एक दूसरे से परिचय नहीं होता है, एक दूसरे को जानते नहीं हैं ट्रेन के अंदर। ठीक उसी तरह हमारा समाज जो है एक एकांत के तरफ जा रहा है। यह शुभ संकेत नहीं है। यदि हमें समाज में रहना है, एक दूसरे के प्रति दर्द हम दर्द एक दूसरे के प्रति साझा करते रहना है, इसी को तो समाज कहते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, हमारे कई युवा साथी हैं जो हमें फोन के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी कहते हैं कि सर, आपने जीवन के हर साइड से कुछ ना कुछ अपना अनुभव देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो मेरा मानना है कि हर परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं। यदि वहाँ के बच्चे अपने शिक्षा के साथ अपने काम के साथ उनका अनुभव लेते हैं, उस परिवार में सरस्वती और लक्ष्मी का वास हो जाता है। और जहाँ पर काली कोठरी में अपने बुजुर्ग को फेंक दिए, घर के टूटे फूटे फर्नीचर के तरह, वहाँ जो है संस्कार विहीन वह परिवार हो जाता है। बहुत सारा धन कमा लिए लेकिन यदि आपके पास संस्कार नहीं है, दूसरों के प्रति सम्मान नहीं है, मानवतावादी नहीं है, तो यह जीवन जो है धीरे धीरे निरस हो जाता है। हम कई लोगों को देखे हैं कि वह जवानी के दिनों में मूंछों पर घी लगाया करते थे चमकाने के लिए, और आज बुढ़ापे में उनकी स्थिति देख रहे हैं। तो जीवन को सरल और सहज बनाकर यदि हम जीते हैं सादा से, तो जीवन जो है बड़ा ही लाजवाब हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं कि लंबे समय तक सरकारी सेवा में रहे, धीरे धीरे घर परिवार रिश्तेदार गांव नगर से कटते गए और जब रिटायरमेंट हुए तो किसी शहर में एक घर बनाकर एकांकी जीवन जी रहे हैं। यह भी कोई जीवन है मेरे समझ से? जीवन का मतलब है कि हम एक दूसरे के समीप रहें, एक दूसरे के नजदीक रहें और जीवन को बेहतर बनाएं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपको पता ही है कि रेडियो रिमझिम का प्रसारण रेडियो पर सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात को 11:10 पर राष्ट्रीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में सुनाने के बाद रेडियो पर कार्यक्रम खत्म होता है। लेकिन जो गूगल के प्ले स्टोर में रेडियो रिमझिम का ऐप है, उस पर 24 घंटे रिमझिम परिवार अपनी सेवाओं को देता है। एक बड़े ही अच्छे इंजीनियर साहब थे, वह बता रहे थे कि हम जब अपने गाड़ी से निकलते हैं पटना जाने के लिए, तो मोहम्मदपुर तक जाते जाते आवाज जो है आता नहीं है। तो हमने उन्हें समझाया कि आप जो है रेडियो रिमझिम के ऐप को अपने साउंड बॉक्स से या वाहन में जो भी यंत्र है उससे जोड़ दीजिए और पटना तक जाइए, पूरा रिमझिम का आनंद लीजिए। रिमझिम का मकसद है कि संसार में जो भी घटना घटित होती है

0: रात में 8:45 पर जरूर सुनते हैं और 15 मिनट में ही पूरे संसार के समाचार से अवगत हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आकाशवाणी भारत सरकार की संस्था है, जिसके माध्यम से जो सूचना हमें मिलती है वह कई स्तरों पर उसकी पुष्टि होती है, तब जाकर हमें यह सूचना मिलती है। और कोई भी जिम्मेवार मीडिया है वह कोई भी जानकारी देने से पहले हर तथ्य को सही से परख कर आम जनता तक पहुंचाता है। और मेरा भी मानना है कि भारत सरकार के अनुमति से रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है, इसलिए उसके मार्ग निर्देशन को 100% हम अमल करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं और उसी के अनुरूप हम प्रसारण करते हैं। कहीं भी दुनिया में यदि व्यक्ति कायदा कानून के अंतर्गत रहता है तो वह भी ठीक रहता है, वह जिस पद पर है उसकी भी प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहती है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम हर दिल की आवाज है और जो भी एक बार सुनता है वह लगातार हमसे जुड़ता है। और रेडियो रिमझिम का मानना है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं सर्वोच्च प्राथमिकता हम उसको देते हैं। हमारे रिमझिम परिवार में हर उम्र वर्ग के लोग जो है जुड़े हुए हैं, सबका अपनी पसंद है, अपनी ख्वाहिश है, अपनी इच्छा है, उसी के अनुरूप हम कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। विशेष करके आपदा के समय व्यक्ति को सजग सतर्क रहना चाहिए। यदि आप युवा हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग का, बच्चों का विशेष करके ध्यान रखें। आपदा के समय आपदा जो है बोलकर नहीं आता है। अभी हाल में ही नेपाल में जो त्रासदी हुई, जो घटना घटी, उससे पूरा देश जो है दर्वित हो गया, मरमराहट आ गया, क्योंकि कहीं भी किसी जगह भी मानव जीवन का मूल्य अनमोल है और वह जब अनमोल चीज हाथ से फिसलता है तो किसी को भी दर्द और पीड़ा होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम आपके सेवा में सदैव तत्पर रहता है। आपके मनोकामना को पूर्ण करने का हम भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है जिसे हम लगातार सुधारते रहते हैं। मेरा मानना है कि जिसे भी जो काम मिला है वह यदि पूरी ईमानदारी से, जिम्मेवारी से अपने काम को करे तो धीरे धीरे हमारा देश, राष्ट्र जो है विकसित हो जाएगा और मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर ख्याति जो है फैलती है और व्यक्ति को बड़ा ही अच्छा लगता है। कहा गया है परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। जिस तरह गोहरा का आग जो है धीरे धीरे सुनकता है, उसी तरह अच्छा काम जो है धीरे धीरे संसार में फैलता है। जब कोई बच्चा 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा लगातार परिश्रम करते हुए अपने आप को एक कमरे में कैद करके पढ़ता है और बाद में पता चलता है कि वह नासा में गया, इसरो में गया, यूपीएस में गया, तो बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है। यदि हम सही दिशा में सही मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यदि दिशा और लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो तो सफलता मिलने में काफी परेशानी होती है। आदरणीय श्रोता बंधु, हमारे साथ सोनू जी भी बैठे हैं, उनका इशारा है कि बहुत सारा संदेश आया है, उसे भी पढ़ना है, तो सोनू जी पहला संदेश पढ़ रहे हैं।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास है रतनपुरा से विवेक सिंह जी भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम बहुत ही रोचक और जानदार है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में नियमित सुनता हूं। आपके जीवन के अनुभव हमें प्रोत्साहित करता है। रेडियो रिमझिम परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सर, इनके संदेशों पर

0: अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय विवेक सिंह जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने अपने अनुभव को रेडियो रिमझिम के साथ साझा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो कहा कि रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम बड़ा ही रोचक और जानदार है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जब हम लोग कोई काम करते हैं और कोई पीठ थपथपाता है, ताली बजाता है, तो बड़ा ही गरिमामय अनुभूति होती है। आप कहते हैं कि हम अपने अनुभव से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो सही बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है, यदि उसके बदले उसे धनराशि मिलता है तो उसके परिश्रम का फल है। इसके अलावा यदि उसे प्रोत्साहन मिलता है, शाबाशी मिलता है, तो उसे काफी अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि ईश्वर ने जिसे जो काम दिया है उसे ईमानदारी से करना चाहिए, और उसी में ईश्वर रहते हैं, भगवान रहते हैं। हम कभी भी फटपीस या शॉर्टकट रास्ता खोजने लगे तो बड़ा ही असुविधाजनक स्थिति हो जाती है। हम समझ गए कि हम सरकारी सेवा या गैर सरकारी सेवा में चले गए, हमको जो है 8 घंटा या 10 घंटा का जो मिलना है वो तो मिलेगा, काम काहे के लिए इतना जोर लगाए। तो अगला का नुकसान नहीं करके व्यक्ति स्वयं अपना नुकसान करता है। जिस तरह एक व्यक्ति को एसी में रहने का आदत हो जाता है और जब कभी बिजली का लाइन फट जाता है तो वह मछली के तरह, बिना पानी के मछली के तरह छटपटाने लगता है, ठीक उसी तरह यदि हम अपने कर्म को सही दिशा में सही जिम्मेवारी के साथ नहीं करते हैं तो व्यक्ति जो है आगे चलकर लाचार और विवश हो जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बार बार निवेदन करते हैं कि जिसे जो मौका मिला है वह बेहतर ढंग से करे। उम्र एक संख्या है। कई हमारे मित्र हैं जो बैंकर्स थे, बैंक से रिटायरमेंट हुए, उसके अलावा आज अपने को कई कार्यों में व्यस्त रखते हैं। जब वे मिलते हैं तो बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। तो रिटायरमेंट तो सरकार द्वारा या अन्य जगहों से हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी यदि आप अपने व्यस्त रखते हैं तो आपका जीवन भी लंबा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जीने की तमन्ना होगी। यह सबको पता है कि जितने भी सजीव चीज इस पृथ्वी पर आए हैं उन्हें एक ना एक दिन निर्जीव होना है, तो उसकी चिंता न करें। जब तक हम सजीव हैं, बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को कामों में लगाए रखें। जब काम से मन भटकता है तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति का जीवन जो है मरते दम तक सक्रिय रहना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं कि कई व्यक्तियों ने 80 साल 90 साल की उम्र में जाकर कई तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, कई तरह का सम्मान पाए। तो जीवन जो है जल धारा की तरह है, हमेशा बहते रहिए। कहा जाता है कि जो पानी हमेशा बहता है वह हमेशा स्वच्छ और निर्मल होता है, और जो पानी ठहर गया उसमें से बदबू आने लगता है। तो जीवन को जल के तरह हमेशा चंचल रखिए और आगे बढ़ाते रहिए। और जो लोग लगता है कि आपके साथ नेगेटिव हैं, उनसे दूरी बना रखिए। कहा जाता है कि समाज, परिवार और साथियों का बहुत बड़ा प्रभाव जो है व्यक्तित्व पर पड़ता है, इसलिए बहुमुखी प्रतिभा का बनिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है समीर कुमार कुशवाहा ग्राम लालबेगी से भेजे हुए हैं। पूरे रेडियो रिमझिम टीम को नमस्कार। ऑनलाइन कार्यक्रम भारती जी, मनोरमा जी का प्रस्तुति काफी अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम का समय 1 घंटा और बढ़ा दिया जाए तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय कुशवाहा जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपको हमारे यहाँ के आरजे का कार्यक्रम करने का अंदाज अच्छा लगा, यह जानकर मेरा भी मनोबल बढ़ा कि हम जिस व्यक्ति को अपने यहाँ सेवा देने के लिए रखे हैं, वे अपने कामों को बेहतर ढंग से करते हैं। यह अनुभूति आप जैसे आदरणीय श्रोताओं के माध्यम से हमें भी प्राप्त होता है और आप लोगों को खुल कर लिखना भी चाहिए कि जो कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता है, जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं लगता है, यदि लिखिएगा तो वे व्यक्ति, वे आरजे जो है सुधार करेंगे और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम देंगे। कई लोगों ने कहा कि आपके आरजे का उच्चारण जो है कहीं कहीं गलत होता है। हम मानते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इन बातों को अपने आरजे तक हम पहुंचाते हैं कि आपको और प्रैक्टिस करना चाहिए और उच्चारण में सुधार करना चाहिए। हम तो रामता जोगी बहता पानी के तरह हैं, कभी 15 दिन यहाँ रहते हैं, कभी 10 दिन गांव में रहते हैं, कभी और कामों में रहते हैं। मेरा जीवन जो है इस स्थिति में पहुंचा है कि हर जगह घूमना फिरना, लोगों से मिलना, लेकिन जो जिम्मेवारी हम लिए हैं उसे सही ढंग से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपने दूसरी बात लिखी है आदरणीय कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए, तो हम इस पर विचार करेंगे। यदि संभव हुआ तो हमें बढ़ाने में कहीं कोई संकोच नहीं है, लेकिन आपका संदेश मिला में अपने विचारों को पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है गौरव कुमार चौहान कमालपुर से भेजे हुए हैं। नमस्कार सर, ऐप के माध्यम से रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम को सुनता हूं। मैं गाजियाबाद में काम करता हूं। हेलो क्यूज कंटेस्ट बार बार पुराना चलाया जा रहा है। भारती जी और मनोरमा जी का रिकॉर्डिंग सुनाया जाए, रात में फिल्म पर आधारित कार्यक्रम और गीतों को सुनाया जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय चौहान साहब, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप गाजियाबाद में रहते हुए रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा कि अपने यहाँ के जो आम जनता हैं, वह देश विदेश प्रदेश में दूसरे जगह रह कर भी यदि रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनता है, इसे जो है प्रेम ही कहा जाएगा। आप जहाँ रहते हैं वह तो दिल्ली के नजदीक है, मनोरंजन के कई प्रकार के साधन हैं, लेकिन आप रेडियो रिमझिम को वहाँ से सुनते हैं, शानदार है, जानदार है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हो और वहाँ से केवल रेडियो को चुनना अपने आप में बेमिसाल काम है। हम आपको एक बार पुनः नमन करते हैं। आपने एक प्रश्न रखा कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट को बार बार पुराना चलाया जा रहा है। मैंने इसके संबंध में सोनू जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि कुछ गड़बड़िया रह गई थी तकनीकी रिकॉर्डिंग करने के वजह से, जिसके वजह से हमें 2-3 बार जो है पुराना HQC यानी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट कार्यक्रम चलाना पड़ा, लेकिन आने वाले समय में हम जो है इसमें सुधार करते हुए जो भी हमारे सहयोगी हैं उनसे कहेंगे कि नया बनाया जाए और नया चलाया जाए, सोनू जी ने बताया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगले सप्ताह से HQC जो नया रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ 4-5 पड़ा हुआ है उन सबको सुनाया जाएगा। जो नए श्रोता हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन्हें एक बार बताते चलें हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का रिकॉर्डिंग जो है प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 तक होता है। कभी मनोरमा जी करती हैं, कभी भारती जी करती हैं, तो इनका भी रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द सुनाया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। और जो रिकॉर्डिंग हमारे पास हैं उन सब का फाइनलाइज करने के बाद आपके सेवा में हम प्रस्तुत करेंगे। और तीसरी बात आपने एक और कही है कि रात में फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम और गीत सुनाया जाए। आदरणीय चौहान साहब, हमारे यहाँ जो है इस तरह का कार्यक्रम 2011-12 में चलता था, लेकिन बाद में ऑनलाइन कार्यक्रम होने लगा। सोनू जी जो सोमवार से शुक्रवार तक 9:15 से 10:15 तक आपको SMS फरमाइश सुनाते हैं, उसके बाद ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम चलता है। इस वजह से यह सब कार्यक्रम को हमने रोक दिया है। यदि आपका आदेश होगा तो शनिवार या रविवार को इस तरह के कार्यक्रम को हम बनाकर आपको सुनाएंगे। इसी तरह प्रेम के डोर को बनाए रखिएगा और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपने बातों को रखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है पूनम कुमारी भोरे संसारपुर से। सर, आपके पूरे टीम को नमस्कार है। मैं लंबे समय से रेडियो रिमझिम को सुनती हूँ। मेरे परिवार को सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है। सुबह कार्यक्रम लेट से शुरू होता है, इसे सुधार किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय पूनम जी, आपके माता पिता को, आपके पूरे ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अपने जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आपने अपने संदेश को भेजा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यह जानकर काफी अच्छा लगा कि आपके परिवार के सभी सदस्य रेडियो रिमझिम को सुनते हैं और पसंद करते हैं। यह हमारे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं है। हमारा उद्देश्य ही है कि आप हमें सुने, अपनी प्रतिक्रिया दें, जो हमारी कमियां हो उसके बारे में बताएं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम यही प्लेटफॉर्म है। 5 जनवरी 2009 से आज सितंबर 2026 हो गया। इस कार्यक्रम को हम इसलिए चलाते हैं ताकि आम जनता की आवाज, आम जनता की बात हम तक पहुंचे। हम तो अपने तरफ से एकदम फिट फाट होकर कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन यदि आपके नजर में कहीं कोई चूक हो रही है और आप इशारा करते हैं तो हम उसमें सुधार करते हैं। आपने जो अगला प्रश्न रखा है कि सुबह में कार्यक्रम में लेट से शुरू हो रहा है, इसे सुधार किया जाए। आदरणीय पूनम जी, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हमारा कार्यक्रम सुबह 5 बजे रेडियो पर शुरू हो जाता है और रात को 11:10 तक चलता है। अगर इस तरह की बात हुई होगी तो हम अपने लोगों सीट में चेक करेंगे और यदि त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और अपने में सुधार करेंगे। संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है हरिकेश बारी जी मीरगंज से भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम टीम को नमस्कार। मेरा शिकायत है कि सुबह का राष्ट्रीय समाचार कभी कभी चलता है, इसे नियमित किया जाए। और आपका सोशल मीडिया भी देखता हूँ, काफी अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय बारी जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा कि आप अपनी बातों को, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में पहुंचाया। आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय समाचार 8 बजे वाला कभी कभी चलता है, इसे नियमित किया जाए, तो यह जो है बड़ा गंभीर बात है। यदि इस तरह की बात है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और इसमें सुधार करेंगे। चूंकि 24 घंटे हम भी सुन नहीं पाते हैं, जिस तरह रैंडम सिस्टम से बीच बीच में कार्यक्रमों को ऐप के माध्यम से यदि दूर है तो सुन लेते हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो हम इस पर निगरानी बढ़ाएंगे। चूंकि सुबह 8 बजे का राष्ट्रीय समाचार होता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, रात को 11:10 के बाद अगले दिन 8 बजे राष्ट्रीय समाचार सुनने का अवसर मिलता है, तो मैं जो है इस पर ध्यान दूंगा। यदि इस तरह की चूक हो रही है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगला बात आपने रखा है कि रेडियो रिमझिम का सोशल मीडिया भी देखता हूं, तो यह तो और अच्छी बात है। जो हमारे नए युवा साथी या श्रोता जुड़े हुए हैं उन्हें बताते चलें, रेडियो रिमझिम का हाल चाल गोपालगंज है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। आज के दौर में जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट होता है उन सब का संचालन रेडियो रिमझिम द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। जो हमारे आदरणीय श्रोता स्मार्ट मोबाइल रखते हैं, एक बार रेडियो रिमझिम का फेसबुक यूट्यूब यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि रेडियो रिमझिम जो है केवल अपने स्टूडियो में काम नहीं करता है, इसके अलावा बाहर निकल कर लोगों के बीच जाता है, स्वच्छता की बातें, स्वास्थ्य जागरूकता की बातें भी करता है। यह जो है काफी कोऑपरेटिव है, जो दूर दराज में है सोशल मीडिया को एक बार जरूर देखें जो रेडियो रिमझिम के नाम से है, और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है, जागीरी टोला उमेश सिंह जी भेजे हुए हैं। सर नमस्कार, आपकी टीम मेरे गांव आई थी, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम का लाभ बताया, स्वच्छता के बारे में विस्तार से समझाया। मुझे इस बात की खुशी है कि रेडियो के अलावा गांव-गांव में घूमकर रेडियो रिमझिम टीम जागरूकता कर रही है। इसके लिए रेडियो रिमझिम परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय उमेश सिंह जी, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार नमन करता है, प्रणाम करता है। आपने सही बताया, यह जानकर मुझे भी हर्ष हुआ कि हमारी टीम जो है आपके गांव में गई थी, स्वच्छता के बारे में मीटिंग किया, सेहत सही लाभ कई के बारे में बात किया। वैसे गोपालगंज जिले के 15 किलोमीटर की आवर्ती में रेडियस में रेडियो रिमझिम के टीम बच्चे घूमते हैं। हम रेडियो के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा हमारी टीम जो है गांव-गांव में जाती है, लोगों के साथ स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, स्वच्छता पर चर्चा, लोक अदालत के विषय में बताया जाता है, और बताने के बाद इसका प्रतिफल भी मिलता है। रेडियो से तो हम प्रचार प्रसार करते ही हैं, लेकिन गांव-गांव में जो हमारी टीम सालों भर घूमती है, हर तरह की जानकारी देती है, और लोग भी इन सब का स्वागत करते हैं, सहयोग करते हैं, अपने फोटो को खिंचवाते हैं रेडियो रिमझिम के साथ, ताकि हमें भी जानकारी हो कि किस गांव में कितने लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं और उसके कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है, नूरजहां खातून कारगिल मोहल्ले से। सर सलाम, रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है। रेडियो पर स्वच्छता के बारे में नाटक के माध्यम से जो बताया गया वह काफी अच्छा है। हमने 3 एपिसोड सुना है, और अगला एपिसोड कब आएगा बताएं। ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम से मैं जुड़ती हूं। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय नूरजहां खातून जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है जब सारे लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। आपने बताया कि रेडियो रिमझिम के माध्यम से स्वच्छता के बारे में आपने एपिसोड सुना, 3 एपिसोड सुना, जो काफी अच्छा है। तो जैसे ही स्वच्छता विभाग से अगला एपिसोड का सूचना आएगा, हम जो है तुरंत उसे भी प्रसारित करेंगे। वैसे हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन या ऑफलाइन सुनते रहें। और आपने बताया कि आप जुड़ती हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा। आप सबका सकारात्मक सहयोग ही गोपालगंज जिले को बुलंद बनाएगी, रेडियो रिमझिम को एक मिसाल बनाएगी। कोई भी संस्था या परिवार उसके सदस्य के सहयोग से ही बेहतर होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, सबके सहयोग से ही व्यक्ति बेहतर बनता है। जब एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में सफल होता है तो माँ बाप भाई बहन सबका सहयोग होता है, तभी वह सफल होता है। उसका मेहनत तो है ही, उसका मेहनत साथ में पूरे परिवार का सहयोग से ही बेहतर बनता है। उसी तरह रेडियो रिमझिम अपने श्रोताओं का समूह है, परिवार है। हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं और गोपालगंज जिले के रेडियो रिमझिम को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाते हैं। आपका संदेश मिला, मैं आपने लिखा है कि एक कहानी सुनाए, क्योंकि इतने संदेश आ जा रहे हैं कि हम भी चाहकर कहानी नहीं सुना पाते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि अगले आपका संदेश मिला में ज्ञानवर्धक प्रोत्साहन रूपी कहानियों को सुनाया जाए।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है सासा मूसा पुरानी बाजार से असलम मियां जी भेजे हुए हैं। रेडियो रिमझिम परिवार को मेरा सलाम है। शानदार जानदार बेमिसाल रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम है। मुझे ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। रेडियो रिमझिम की टीम हमारे बाजार में आई थी, लोगों से संपर्क किया, बात किया, काफी अच्छा लगा। हालचाल गोपालगंज यूट्यूब पर सुनता हूँ, काफी अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही मेरे पास अभी कई संदेश पड़े हुए हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए। तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
1: आदरणीय असलम मियां जी, आपके पूरे परिवार को, आपके बाजार वासियों को, ग्राम वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है कि आपका संदेश मिला में जो भी श्रोता हमें संदेश देते हैं, अपने बातों को पहुंचाते हैं, वह हमारे लिए बेहद अनमोल होते हैं। हम लगातार 24 घंटे प्रसारण कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, वाहन पर, लेकिन इस प्रसारण का प्रतिफल कब मिलता है? जब आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप लोग अपने बातों को पहुंचाते हैं। हम कोई विशेष जानकार, विशेष विद्वान और विशेष व्यक्ति नहीं हैं। हम एक आम आदमी हैं जो आप लोगों से निकलकर रेडियो रिमझिम का सफल प्रसारण करने का अवसर मिला। और जो व्यक्ति गांव से निकला है, देहात से निकला है, माँ बाप खेती करते हो, उसके पास पशुधन हो, तो वह व्यक्ति हर हालातों से गुजर कर जब किसी अच्छे जगह पर पहुंचता है तो उसकी यादें जो है रहती है। और वह जो है चाहता है कि मेरे द्वारा जो गलती की गई है या जो अपने जीवन यात्रा में सफलता की कहानी है, वह सब जो है लोगों से शेयर करें। सफल व्यक्ति वह नहीं है कि बहुत सारा धन कमा लिया, घर द्वार बना लिया, अपने मकान को 4 तरह के रंग से रंगवा लिया। मेरे समझ से सफल व्यक्ति वही है जो घर परिवार को जोड़े रहे, समाज में अपनी पहचान बनाए और अपने साथ दूसरों के बेहतरी के लिए कार्य करे। इस पृथ्वी पर बहुत सारे राजा महाराजा आए, अब वह इतिहास बन चुके हैं। सफल व्यक्ति वही है जो अपने जीवन को निष्कलंक रखे और अपने जनरेशन को शिक्षित बनाए। और जहाँ पर शिक्षा है वहाँ विकास है। हमने कई बार इस कार्यक्रम के माध्यम से कहा है कि जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी को आना पड़ता है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। और जो व्यक्ति शिक्षित होगा वह जो है नम्र होगा, विनम्र होगा, उसका आचरण और चरित्र जो है बेहतर होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारा धन लगाकर बहुत बड़े गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ा लिए और आगे बढ़ा दिए। आज के डेट में देखिएगा सरकारी और गैर सरकारी में बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय से पढ़कर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हैं, प्रशासनिक सेवा में गए हैं, न्यायिक सेवा में गए हैं। पढ़ने का ढंग होना चाहिए कि हम किस माध्यम से पढ़ रहे हैं और किस तरह पढ़ रहे हैं। जिस तरह बचपन में पढ़ने का मन नहीं करता था तो जब माता पिता को देखा जाता था तो किताब जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि बाबूजी को और माँ को लगे कि हम खूब पढ़ रहे हैं, तो यह देखावटी पढ़ाई होता था। इस पढ़ाई का मतलब आठवीं कक्षा के बाद समझ में आया कि पढ़ाई दिखाने वाला चीज नहीं है, उस पर अध्ययन करना चाहिए, गहनता चाहिए, तभी व्यक्ति बेहतर बन सकता है। बहुत अच्छा लगा आपका संदेश और आपने बताया कि रेडियो रिमझिम का टीम जो है आपके बाजार में आई थी, लोगों से संपर्क किया था, यह जानकर मुझे भी काफी अच्छा लगा। और आपने सबसे महत्वपूर्ण बात बताया कि हालचाल गोपालगंज जो है यूट्यूब के माध्यम से आप सुनते हैं, तो यह सेवा जो है हमें लगता है कि 10 साल हो गया। रात में 9:05 में और सुबह 7 बजे जो हालचाल का हम लोग रेडियो पर प्रसारण करते हैं, उसे कोशिश किया जाता है कि रात को 12 बजे से पहले यूट्यूब रेडियो रिमझिम पर डाला जाए हालचाल गोपालगंज के नाम से। और हमें लगता है कि 5,000, 10,000, कभी 14,000, 15,000 व्यू आ जाता है और बहुत सारे लोग सुनते हैं। और हमने यह भी बताया है कि हम वीडियो इसलिए नहीं डालते हैं कि हर मोबाइल पर 1.5 GB, 2 GB डाटा मिलता है। जब आप वीडियो के साथ समाचार देखिएगा तो मोबाइल का सारा डाटा खत्म हो जाएगा और केवल ऑडियो सुनिएगा तो आपका डाटा भी बचा रहेगा और सारी सूचनाएं भी मिलेगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफवाह जो है जल्दी फैलता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, कहीं कोई न्यूज चला दिए, लेकिन हम लोग जब भी कोई सूचना देते हैं भारत सरकार के एक अंग होने के नाते पूरे जिम्मेवारी के साथ हम लोग सूचना देने का प्रयास करते हैं, जिसकी सत्यता की पुष्टि हर जगह की गई है। आज इतने लंबे समय से हालचाल का प्रसारण हो रहा है, कहीं से ना कोई शिकायत आया, ना कहीं से कोई बात हुई, लोगों का सकारात्मक सहयोग मिलता रहा। तो जीवन में तुरंत जो है बोरिंग के पानी के तरह उछलना है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करना पड़ता है, और धीमी और अस्थिर और धैर्यता के साथ अपने रफ्तार को पकड़ना है तो मंजिल भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगा और लक्ष्मी की कृपा भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों से बात करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सोनू जी बता रहे हैं कि अब जो है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का और भी जो है समाप्त होने वाला है। तो हर व्यक्ति को कार्य करने का, जीवन में आगे बढ़ने का एक अवधि होता है, एक समय होता है, उस समय का सही सदुपयोग करके व्यक्ति बेहतर बन सकता है। जिस बात को हम बार बार कहते हैं, एक ही स्कूल, एक ही कक्षा और एक ही शिक्षक, उसमें पढ़ने वाले कोई IAS बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है और कोई कुछ नहीं बन पाता है। तो यह जो है पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह अपने पढ़ाई को पढ़ते हैं। जीवन में दिखावा जो है क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई जो है शाश्वत होता है, स्थिर होता है। बहुत सारे लोगों को यह मानना है कि हम घर द्वार बना लिए, बाल बच्चा को पढ़ा दिए, हम बहुत अस्थिर हो गए। लेकिन ऐसे भी लोगों को हमने वृद्धा आश्रम में देखा है कि वह बच्चे को इतना पढ़ा दिए कि बाद में वही बच्चा जो है अपने माँ बाप को नालायक समझने लगा और उन्हें अंत समय जो है वृद्धा आश्रम जाना पड़ा। यह कॉन्सेप्ट और सोच जो था पहले अंग्रेजों के देश में हुआ करता था, ओल्ड एज होम, लेकिन धीरे धीरे वृद्धा आश्रम जो है अब हर जिले में, हर प्रखंड में खुलने जा रहा है। यह मानसिकता अच्छी नहीं है। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, बचपन में उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया और जब आपकी जरूरत पड़ी तो आप पति पत्नी पक्षी के तरह उड़ कर चले गए, आपका यह कार्य जो है न ऊपर वाला माफ करेगा न नीचे वाला माफ करेगा। जितना वह सहारा दिया है उतना सहारा का अपेक्षा करता है। बेटी हो या बेटा, इन दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि वृद्धावस्था में अपने माता पिता के प्रति सचेत रहें, सजग रहें, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दे कि हमें यह चीज चाहिए। उनके बोलने से पहले आप उन तक यदि पहुंचाते हैं तो आधुनिक भारत का आप श्रवण कुमार हैं। अभी कुछ दिन पहले बाबा बैजनाथ धाम में बहुत सारे लोग गए थे, एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक लड़का जो है अपने माता पिता को ठेला गाड़ी पर बैठा कर धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ का दर्शन कराने गया था। यह पूरे भारत में वायरल हुआ। तो जो अच्छाई है उसे सब लोग स्वीकार करते हैं और जो नकारात्मक बातें हैं वह समाज जो है कहीं से स्वीकार नहीं करता है। भले वह बोले या न बोले, लेकिन अच्छी बातें सबको अच्छी लगती है और गलत बातें जो है किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में। आपने धैर्य से इतने लंबे समय तक हमारे बातों को सुना, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं अगले सप्ताह आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे। इसी के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
0: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-6575।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
8: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
10: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
9: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: दोस्तों, यह है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का सफर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अब कहानी मीरा। बात आज से करीब 500 साल पहले की है। ये वो वक्त था जब तुर्की और ईरानी ताकतें हिंदुस्तान में लूट नहीं बल्कि हुकूमत के इरादे से आने लगी थीं। दिल्ली की गद्दी मुगलों के हाथ में थी। अकबर तेजी से अपना राज्य बढ़ा रहे थे। अगर कोई था जो इनके सामने डट के खड़ा था तो वो था राजस्थान। राजस्थान, जहाँ के राजपूत अपनी मिट्टी, अपने धर्म और अपने वचन को लेकर लक्ष्मण रेखा से भी ज्यादा पक्के थे। ये वो दौर था जब तलवार तलवार को पूछती थी और धर्म के नाम पर सर उतारे जाने में एक मिनट नहीं लगता था। मुगल राजपूतों की नफरत में जला करते थे और राजपूत मुगलों के कारण अपनी नींद खोते थे। पर यह कहानी इस खून खराबे की नहीं है, ये कहानी उस दौर में लगातार हो रहे तख्ता पलट की भी नहीं है। ये कहानी तो इस खून खराबे और नफरत के बीच पल रहे एक अनोखे प्रेम की है, जिसे वक्त ने अमर कर दिया। राजस्थान के मेरता राज्य में उस समय राठौरों का राज था, वही राठौर जिन्होंने जोधपुर बसाया। उस समय मेरता के राणा राव डूडा जी थे। उनके छोटे बेटे रतन सिंह के हाथ सरहद की सुरक्षा थी। रतन सिंह सिपाही थे। जहां एक तरफ परिवार था, जीवन में आने वाली अपनी औलाद थी, वहीं दूसरी तरफ देश था और कुंवर होने की जिम्मेदारी थी। और जैसा कि हर सिपाही की जिंदगी में होता है, फर्ज परिवार से पहले आया। इसीलिए रतन सिंह अपनी बेटी की पहली किलकारी तक नहीं सुन पाए थे, उनकी बेटी मीरा, जिसे सारी प्रजा मीराबाई कहती थी। मीरा ने अपनी पहली मुस्कुराहट से ही सारे मेरता का दिल जीत लिया था। ऐसा खिलखिलाता सलोना रूप सारे राजपुताना में दूसरा था ही नहीं। अपने पिता से दूर पलती मीरा यूं भी सबकी लाडली हो गई थी। मीरा बस कह भर दे और राव डूडा जी तारे तक तोड़ने को तैयार हो जाते थे। मीरा की शिक्षा दीक्षा किसी योद्धा से ही होती थी। दादी और माँ बहुत छोटी उम्र से ही मीरा को घर के कामकाज में निपुण बनाने में जुट गए थे। इसी तीर तलवार और कड़ाही करछी के बीच मीरा 6 साल की हो चली थी। इस विष्णु भक्त परिवार में संत साधुओं का विशेष ध्यान था। दरवाजे पर आने वाला हर साधु पूजनीय होता था, आदरणीय होता था। एक दिन ऐसे ही साधु के स्वागत सत्कार के बाद उनको आराम करने के लिए एक कमरा दिया गया। साधु ने एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछाया और अपने साथ लाई हुई कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर दी। उनके आराध्य की ये मूर्ति उन्हें उनके गुरु ने दी थी। मीरा अपनी दादी के साथ साधु बाबा को खीर देने आई थी। दादी की उंगली थामे आई मीरा कब हाथ छुड़ाकर कृष्ण मूर्ति के सामने जा बैठी, किसी का ध्यान ही नहीं गया। मीरा को लगा जैसे कान्हा ने खुद उसे आवाज देकर बुलाया हो। साधु बाबा राव डूडा जी के परिवार से बहुत खुश थे। प्रसन्न होकर बोले, कहिए क्या वर मांगती हैं रानी सा। रानी सा कुछ कहती इससे पहले ही मीरा बोल पड़ी, गुरुवर आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए।
13: जाएंगे समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
14: AIR.gov.in पर भी उपलब्ध है
15: वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है। हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
16: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
17: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत एक साझा डिजिटल मंच पर पर्यटन से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी। मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ मिलकर नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक तैयार करने की पहल की है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल विश्व पर्यटन दिवस पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में इस परियोजना की शुरुआत की। पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक की परिकल्पना एक टिकट एक पास की है, जिससे पूरे भारत को एक ही यात्रा अनुभव से जोड़ा जा सकेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसे देश में पशुधन बीमा सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजसेवी अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मोदी ने कहा कि अशोक सिंघल का जीवन इस विचार को दर्शाता है कि दूसरों के कल्याण के लिए काम करना व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल से राष्ट्र अशोक सिंघल की जन्मशती मना रहा है। उन्होंने कहा कि अशोक सिंघल ने सामाजिक एकता और समानता को मजबूत करने के लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर ने अपनी दिव्य गायन प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती मना रहा है। भगत सिंह का जन्म वर्ष 1907 में आज ही के दिन पंजाब के तत्कालीन लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। एक रिपोर्ट।
18: भगत सिंह का जन्म क्रांतिकारियों के परिवार में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करके अपने नाम को सार्थक किया। उनकी जयंती मनाने के लिए लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में जश्न इनकलाब नाम का एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोग उनके पैतृक गांव खटखट कला में इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँच रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
17: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। आज हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और तेलंगाना में भी आंधी और बिजली के साथ वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
19: सीतापुर में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या और गोरखपुर में भी लोगों की मौतें हुई हैं। लगभग 1020 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घाघरा और राप्ती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
17: और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
20: तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 139 रन और कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। ये विराट का एक दिवसीय क्रिकेट में 55वां शतक है। इसके साथ ही वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब बात एशियाई खेलों की। एशियाई खेलों के 9वें दिन आज पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 से खेला जाएगा। इसके अलावा मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी और हॉकी में भी भारत अपनी चुनौती पेश करेगा। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
17: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आयुष्मान भारत और हर नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त सचिव किरण गोपाल वास्का शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
21: धन्यवाद विशाल। सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प दर्शाया। आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए रहें तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान दैनिक जागरण में है। रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, भारत किसी देश की भूमि नहीं मांगता और युद्ध भी नहीं चाहता, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करेगा। साबरमती स्टेशन से दौड़ी देश की पहली LNG ट्रेन, गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर किया रवाना। अमर उजाला के अनुसार LNG आधारित दोहरे ईंधन वाली तकनीक अपनाने के साथ भारत चुनिंदा देशों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को मिले स्थायी सीट, जर्मनी और जापान को नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के बयान को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की खबर के बाद तोड़फोड़ और आगजनी को अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रात भर प्रदर्शन के बाद केस दर्ज, SIT गठित, यूनिवर्सिटी ने बताया अफवाह।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की आज 10वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आतंकवाद रोधी नीति का नया उदाहरण बताया। आज से प्रस्तावित 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचा तैयार करने की परियोजना शुरू की। मौसम विभाग का आज उत्तराखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India marks 10th anniversary of surgical strikes on terrorist hideouts in Pakistan. Prime Minister Narendra Modi says it demonstrated new example of India's counter-terrorism policy. Proposed 3-day nationwide bank strike which was to begin today.
22: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
23: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
24: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
23: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
24: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
23: कहाँ?
24: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
25: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
26: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
25: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
26: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
25: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
26: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95 999 27 982।
25: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
26: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
25: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
26: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
25: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
26: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
25: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना

0: क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: Drop that.

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: प्राणप्रिया।

0: समझ हैं? हाँ
1: बढ़िया।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87894 18744।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652।

0: राधा, तुमने अपनी चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
6: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
5: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
6: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
5: कहाँ?
6: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: ओपी हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80023-3586 या 95-999-27।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। पश्चिम चंपारण जिले के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी फैला। बैंक कर्मचारियों की आज से प्रस्तावित 3 दिनों की हड़ताल स्थगित। सामान्य रूप से जारी रहेगा बैंकों का कामकाज। निगरानी जांच ब्यूरो स्वास्थ्य नगर विकास और भवन निर्माण समेत 9 विभागों में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सभी टेंडरों की जांच करेगा। और देश आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंडक, बागमती और कोसी नदी के उफान से तटवर्ती और निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
3: गंडक नदी का पानी फैलने से जिले के 11 प्रखंडों के दियारा और निचले इलाकों में सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं। वाल्मीकि नगर के चकदावा, झंडू टोला, रोहुआ टोला और कानी टोला में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा परिसर में भी बाढ़ का पानी फैल गया है। वाल्मीकि नगर बघा मुख्य पथ पर कई स्थानों पर 2 से 2.5 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। गंडक की 2 धाराओं के बीच बसे बलुआ ठोरी पंचायत का सड़क संपर्क टूट गया है। बघा शहर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
2: गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इधर बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से दरभंगा और मधुबनी जिले के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। दरभंगा के कीरतपुर में आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। दूसरी तरफ कोसी नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से सुपौल और सहरसा जिले के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से गुजरने वाली बागमती, लालबकैया और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गंडक और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गंडक के दोनों तटबंधों पर अतिरिक्त अभियंताओं की तैनाती की गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल गंगा का जलस्तर कम होने से गंडक के पानी की निकासी गंगा में सुचारू रहने की स्थिति है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे अवदाब के क्षेत्र के कमजोर पड़ने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में छिटपुट बारिश के बीच मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। विभाग ने आज राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
4: दिनांक 28 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: बैंक कर्मचारियों की आज से प्रस्तावित 3 दिनों की हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बताया कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुई वार्ता के बाद यह फैसला किया गया। वार्ता में सभी शनिवार को छुट्टी के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति बनाने और स्केल 4 तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के PLI से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखने का फैसला हुआ। हड़ताल टलने से बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। राज्य में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सभी टेंडरों की जांच होगी। निगरानी जांच ब्यूरो के तकनीकी परीक्षक कोषांग के जरिए 1 जनवरी 2000 26 से अब तक जारी निविदाओं की जांच कराई जाएगी। यह जांच स्वास्थ्य, नगर विकास, पथ निर्माण, पर्यटन, ग्रामीण कार्य, ऊर्जा, पीएचईडी, भवन निर्माण और लघु जल संसाधन विभाग की निविदाओं की होगी। विभागों से निविदा की तारीख, काम का नाम, प्राकलित राशि और टेंडर निपटारे की अद्यतन स्थिति समेत अन्य जानकारी मांगी गई है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई 18 सितंबर को हुए उड़ी आतंकी हमले के बाद की गई थी, जिसमें 18 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद वर्ष 2019 में बालाकोट और वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई। आकाशवाणी पर कल प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है।
5: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2026 के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में आगामी रबी सीजन की तैयारियों और कृषि क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की व्यवस्था ने किस प्रकार देश में एक समान कर व्यवस्था को लागू किया।
7: वर्ष 2017 से पहले देश भर में 17 केंद्रीय और राज्य कर थे, साथ ही 13 उपकरों का प्रावधान भी मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में जीएसटी की व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था ने आजादी के बाद पहली बार भारत को एकीकृत बाजार के रूप में स्थापित किया।
8: साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंच रत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी।
7: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक व्यापारी कुमार अभिषेक ने बताया कि इस व्यवस्था से व्यापार करना अधिक सरल हो गया है।
9: पहले टैक्स के काम को लेकर काफी झंझट आता था, जीएसटी आने के बाद धीरे धीरे चीजें आसान हुई हैं। अब बिलिंग और रिटर्न का ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाता है तो समय भी बचता है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी लेकिन अब जीएसटी के साथ काम करना आसान लगने लगा है।
7: सितंबर 2025 से लागू जीएसटी 2.0 ने कर की दरों और स्लैब को और सरल किया। जीएसटी ने कई अलग अलग और अप्रत्यक्ष करों को एक व्यवस्था में शामिल कर कारोबार और कर अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाया। समाचार कक्ष से सविता पारीक।
2: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। पात्रता परीक्षा में आवेदन करने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। विस्तृत जानकारी समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार के छात्रों ने नवाचारी आइडिया देने के मामले में देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश पहले और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर मानक योजना के तहत राज्य के छठी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने 86,476 नवाचारी विचार भेजे थे। श्रावणी मेले में इस बार लगभग 2,77,00,000 श्रद्धालुओं ने कांवर यात्रा की। पर्यटन विभाग के अनुसार मेले में 2,76,74,536 भारतीय और 3,436 विदेशी कांवड़िये सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर देवघर की यात्रा पर निकले। यह संख्या पिछले रिकॉर्ड 1,12,99,000 से दोगुने से भी अधिक है। इस रिकॉर्ड के साथ भागलपुर राज्य में सबसे अधिक आध्यात्मिक भीड़ जुटाने वाला जिला बन गया है। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी बिहार वॉलीबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। छपरा में आयोजित एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में रोहित सिंह सचिव निर्वाचित हुए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद श्री रूडी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं और अवसर उपलब्ध कराने के साथ जिला स्तर तक खेल गतिविधियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित चौथी राजा कर्ण बिहार स्टेट तीरंदाजी चैंपियनशिप के पहले दिन गया जी के तीरंदाजों का दबदबा रहा। अंडर 10 के इंडियन, रिकर्व और कंपाउंड राउंड में गया जी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 330 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोहम्मद सियाज आलम नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर सज्जाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिस बनकर रंगदारी वसूलने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और कार बरामद हुई है। सीतामढ़ी जिले की पुलिस ने सोनवर्षा थाना क्षेत्र से 3 लोगों को चोरी की 5 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर से मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक ट्रक से 10 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता से हुआ। दैनिक जागरण की सुर्खी है, संकल्प पोर्टल पर दर्ज होंगी सम्राट सरकार की घोषणाएं और उपलब्धियां। प्रभात खबर ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लिखा है, बिहार में बिक रही 3,000 करोड़ रुपए की नकली दवाएं, पटना 1 और गया 2 नंबर पर। दैनिक भास्कर लिखता है, नेपाल की तराई में रिकॉर्ड 193 मिलीमीटर बारिश से उत्तर बिहार में गहराया बाढ़ का संकट। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, भारत ने वेस्टइंडीज को पहले मैच में 8 विकेट से हराया। आज अखबार ने मन की बात को प्रमुखता देते हुए लिखा है, आज का भारत आतंक बर्दाश्त नहीं करता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। पश्चिम चंपारण जिले के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी फैला। बैंक कर्मचारियों की आज से प्रस्तावित 3 दिनों की हड़ताल स्थगित। सामान्य रूप से जारी रहेगा बैंकों का कामकाज। निगरानी जांच ब्यूरो स्वास्थ्य, नगर विकास और भवन निर्माण समेत 9 विभागों में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सभी टेंडरों की जांच करेगा। और देश आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
15: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
16: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
17: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
16: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
18: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
19: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
18: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
19: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
18: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
20: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
20: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
20: जानकारी है तो कॉल करें 6502-62112 पे।
21: Now pick your phone up. Hello? Pick it up. Hello? Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैम, धन्यवाद। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर MP से।
2: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, अभी तो ट्राई कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले बंद होता रहा था, फिर चालू हो गया मैम, तो वही फोन ट्राई कर रहे थे और फोन भी लग गया मैम। और वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम?
2: जी मौसम यहाँ बढ़िया है।
1: जी बारिश नहीं है मैम, हमारे यहाँ तो बारिश है मैम।
2: नहीं नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हो जाता तो
1: ठीक है मैम। हम जी मैम, हम भेज रहे हैं, बारिश हो जाएगा यहाँ मैम।
2: जी जी, आपके यहाँ तो होते रहती है, थोड़ा भेज दीजिए कि इधर भी हो जाए।
1: जी जी जी मैम, आप गाना भेज दीजिए, हम बारिश भेज रहे हैं मैम।
2: अच्छा, तो आप गाना बता दीजिए।
1: जी फिल्म डर और गाने के बोल है तू मेरे सामने, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंज दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
2: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ओके मैम, धन्यवाद।
2: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में। जी,
0: हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: जी,
0: हेलो।
1: हाँ
0: हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो बारिश हो रहा है घर में है।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश का मौसम है, एंजॉय कीजिए। तो बता दीजिए, इसी के साथ कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना हमें सुनवा देंगे साजन मूवी का, कोई भी प्यारा सा गीत।
1: गाने की वो
0: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यारी वाला गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो गाना सुनाएंगे भी किसी को?
0: सभी साथियों।
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: धन्यवाद।
1: 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह,

0: नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेस्टोरेंट में।
7: नमस्ते मैम।
6: नमस्ते,
7: हमें गाना सुना था मैडम।
6: जी, नाम बता दिए अपन। और कौन सा गाना सुनेगा?
7: भोजपुरी गाना सुना दे हम।
6: गाना के बोल बता दी।
7: पूरा गाना सुनवाए ना।
6: कौन सा?
7: बेटा और सिस्टर।
6: अच्छा, चलिए ठीक बाबे। और
7: भारती मैम बोलो। तो मनोरमा मैम बोलो कि भारती मैम।
6: भारती,
7: वहाँ पे हम गाना है सबसे उठे सुने गए।
6: ठीक बात, गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
7: आज बाजी कल
6: काल बाजी
7: बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका। सुनते हैं, मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप से।
6: ओके।

0: अरे बाप रे।
1: सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
2: बोलिए क्या रहा है?
1: बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
2: तो गाना सुनना है?
1: बिल्कुल, बताइए कौन सा गाना सुनना है।
2: मौसम के हिसाब से बजा दीजिए। मौसम कैसा हुआ है आपके एरिया में?
1: मेरे यहाँ तो मौसम काफी सुहाना बना हुआ है।
2: बरसात की तरह लग रहा है?
1: बरसात हुई थी, अभी खुला हुआ है और हल्की हवा चल रही है।
2: हवा तो तेज है, हल्की कहाँ है?
1: नहीं, इधर थोड़ा हल्का ही है, उतना भी तेज नहीं है।
2: ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, ठंडा लग रहा है।
1: ठंडा जी, ठंडा लग रहा है।
2: बता दीजिएगा मौसम के हिसाब से गाना।
1: तो मौसम के हिसाब से तो बहुत सारे गाने हैं, आपको कौन सा सुनना है?
2: यही वाला बजा दीजिएगा, बरसात का मौसम आया।
1: गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: मेरे अब्बू है, सलामी मियाँ, मेरे भैया है, मौलवी मियाँ, जमशेद, अरमान, इरफान, शमशेद, भतीजी सब है, खानाज, अजमेरी सब सभी श्रोता को और आपको भी।
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: थैंक यू,
1: वेलकम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90-765-65-750।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज जैट पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
5: सही है, मैं बद्री नारायण मुनि बोल रहा हूँ, ग्राम भलोई जिला सिवान जामो बाजार।
10: जी जी, कैसे हैं आप?
5: हम तो बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं?
10: जी हम भी अच्छे हैं।
5: ठीक है जी, तो हमको एक गाना सुनना है।
10: बिल्कुल, कौन सा?
5: गंगा जमुना फिल्म का। वो गाना का बोल है, नैन लड़ जाई है तो मनवा में कसक होइबे करी, फुटिया पटाका तो धमक होइबे करी।
10: जी जी,
5: वो गंगा जमुना का है। संगीत गीत लिखा है शकील बड़ाणी ने, संगीत दिया है नौशाद साहब।
10: गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: अब पूरे जितना लिसनर है रेडियो रिफ्यूम का, सबको हम सुनवाएंगे और आपको भी सुनवाएंगे, पूरा रेडियो रिमझिम के परिवार को और सबको सुनवाएंगे। और हमारा लड़का है नागार्जुन, उसको भी सुनवाएंगे। धर्मेंद्र है हमारा लड़का, उसको सुनवाएंगे। और गांव में एक आदमी है परोड़ी नाम है उसका, उसको भी सुनवाएंगे।
10: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 जी। कल शाम को 5 से 7 मिलेगा सुनने को।
5: अच्छा, 5 से 7 बजे कल। ठीक है, ठीक है।
11: लागा गोरी गुजरिया से

0: ठीक
1: बा बाबू
0: ठीक बानी
1: ना। हाँ ठीक बानी चला घोड़ा हमें ठीक बन।
0: हाँ
1: ठीक है चाहे तो गाड़ी सुना रही हो
0: बता
1: दी। आप अपना मुंह से सुना रही हो बढ़िया पूरा जुड़वा कौवाली
0: क्योंकि
1: सुनाई करे दुनिया के लोग तो सुनबे कर पचास आदमी नारे धरो टाइम पास करे खाना खा लगे पूरे खाली से सब सुनी
0: तेरा और गाना प्ले करता नहीं
1: ठीक बोलो
0: रेडियो 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलामत
12: मैं। वालेकुम असलम, कैसा है?
11: मेरा ठीक है, आप बताइए अपना, कैसी हैं आप?
12: हम ही ठीक। खाना खा लिए?
11: जी मेरा नाश्ता हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
12: हाँ हमारे भी हो गया। और सब बताइए?
11: और सब तो ठीक है।
12: मुझे गाना सुनना है।
11: बिल्कुल बताइए कौन सा?
12: यही गाना ना, ये मेरी चाहत किस मेरे नाम से धर के जिया।
11: एक बार और बताइए।
12: तेरे नाम से धर के जिया।
11: और गाना किसी को सुनवाएंगी भी?
12: सब श्रोताओं को।
11: आपके गाने को प्ले करते हैं?
12: ठीक।
11: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: आपको ये सुनाएगा?
11: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।
12: ठीक।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: गोपाल ओझा ग्राम कुटुबासा से बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
0: बढ़िया है, रहेगी अभी धूप निकल रही है, गर्मी पड़ रही है अभी तो।
1: अच्छा, आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है?
0: गर्मी पड़ रही है, अभी तो फसल भी कटेंगी, अभी तो 2-4 दिनों बाद।
1: चलिए, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: मुझे सुनना है कुमार सानू की आवाज में वो डी डॉन फिल्म का
1: गाने की बोल।
0: देखा दे तुम्हें दिल ये बेकरार हो गया, वो जाने जाना हमको तुमसे प्यार हो गया, वो वाला गाना।
1: अच्छा अच्छा,
0: और ये वो डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: बिल्कुल बताइए।
0: हमारे दोस्त है सुनील साहू जी, मक्सूद अलख है, ज्योति जी है, जीतन धाकड़ जी है और नरेश जी है, इनके लिए और आपके लिए भी।
1: तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्ते
7: नमस्ते,
8: भोजपुरी में बात करी ना मैम, भोजपुरी में आपको बहुत अच्छा मीठा आवाज लगेगा।
7: अच्छा जी,
8: मनोरमा जी?
7: ना ना, भारती।
8: अच्छा अच्छा, भारती जी। आप लोग दोनों जने का आवाज एक ही खानी बा।
7: बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाने लो।
8: जी जी जी, मोने पानी होता?
7: हाँ, इन्हें तो पूरा एकदम पानी होता वाला पूरा।
8: अच्छा अच्छा,
7: अभी तो थोड़ा खुलल बावे।
8: और सब नाश्ता पानी हो गया मैम?
7: हाँ हाँ, नाश्ता पानी हो गया बावे, सब जाने अब अपना अपना काम में।
8: जी जी जी जी, एगो गाना सुना दी।
7: बता दी कौन सा?
8: सुनो, एगो गाना सुना दी खेसरिया के भोजपुरी।
7: अच्छा,
8: अपने मन से?
7: वैसे तो हम रोज अपना मन से बोलो के सुनाबे करे नी।
8: अच्छा, तो सुना दी है खेसरिया के सुना दी ना, मेरा आरू से के जीतल बा।
7: अच्छा अच्छा, गाना क्यों के सुनवा हूँ के बा?
8: रिसब।
7: अच्छा जी,
8: हाँ, प्रिंट वाला हवन रिसब,
9: अलीका फ्लेक्स वाला।
7: हाँ, ये सब ठीक बानो?
8: हाँ हाँ, सब बढ़िया बा, आप लोग के दुआ बा।
7: तो चली गाना और प्ले करता नहीं।
8: ठीक बा,
7: सुनाते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: नमस्ते
7: नमस्कार।

0: बढ़िया था लग जला।
1: हेलो
2: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: खाना खा ली?
2: हाँ जी, मेरा हो गया, आप बताइए आपका हो गया?
1: हाँ, गाना सुन रहे?
2: जी बिल्कुल, नाम भी बता दीजिए और गाना भी। बोल।
1: अजमेरी खातून, खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाए।
2: हेलो,
1: कौन सुन के गाना?
2: जी जी, और गाना क्यों की सुना हूँ के बाद?
1: खुदा जाने किस्मत कहाँ लेके जाए, ये गाना सुन।
2: ना, हम पूछे थे गाना क्यों की सुने को करे।
1: गुलाबसा खातून, चांदा खातून, मौलदीन या इरफान आलम और शानार खातून, ताबा खातून है, सहिमा खातून है, जमशेद चार मान है, शमशेर है, आपको भी है, जितना रेडियो सुनने वाले।
2: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: आपका नाम क्या है मैम?
2: मेरा नाम भारती है।
1: ठीक है, आपको अब सुनाइएगा।
2: ये आपको कल सुनने को मिलेगा।
1: कितना बजे?
2: शाम को 5 से 7 जो शो चलता है उसी में।
1: ठीक है,
2: ओके
1: सुना दीजिएगा।
2: बिल्कुल।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 एफएम में।
12: कैसे हैं मैम?
11: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इधर का मौसम बहुत खराब है मैम, बहुत लगातार बारिश हो रही है 4-5 दिनों से, बहुत जोरों से दिन रात बारिश हो रही है, ऐसे लगता है कि मैंने मानसून आ गया, इतनी बारिश हो रही है।
11: नहीं इधर तो मतलब कल से शुरुआत हुई है, थोड़ा बारिश हो रहा है।
12: ये पश्चिम बंगाल में जो चक्रवात होते हैं ना, उससे झारखंड पर सीधे प्रभाव पड़ता है ना, सेटल है ना, बारिश हो रही है। आप भारती में बोल रही है ना, मनोरमा में?
11: भारती,
12: मैं भारती में बोल रही हैं।
11: जी जी,
12: मैं सुधीर कोल बोल रहा हूँ, करीमबाग जिला देवघर झारखंड से।
11: तो आज बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?
12: आज सुना दीजिए मैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गाना, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित पर फिल्म आया गया है, जिसके बोल हैं दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई।
11: पर गाना किसी को सुनवाना भी है
12: जी? सबसे पहले मैं आपको, मनोरमा मैम को, जितने आर्जे हैं सबो को, और हमारे कुछ फ्रेंड हैं, मदन कोल हैं, प्रभु कोल हैं, राजकुमारी हैं, किशन कोल हैं, भोलाना कोल हैं, केदारनाथ बोल रहे हैं, प्रसाद यादव, सुष्टिधर प्रसाद यादव, रोहित कुमार सिंह, राजीव रोशन, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
11: तो आपका गाना प्ले करते हैं
12: जी मैम,
11: सुनते रहिए रेडियो रंजन 91.4।
12: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो मैडम, नमस्कार
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिन 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
0: जी जी क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल तो बहुत अच्छा है। आप तो गाना सुनवा दी मेरा।
0: जी
1: आज कौन सा गाना सुनवाइएगा मैडम,
0: बता दीजिए।
1: समझता है कि मेरा पहला कॉल लगा है क्या?
0: जी जी आपका पहला ही कॉल है
1: तो कोई गाना सुनवाइए। आप पहले कॉल में आपका पहला ही आपके पहले मन से ही गाना बजे
0: मेरे मन से।
1: आप गाना सुनवाई है ना वो वाला भारती जी बोल रही हैं?
0: हाँ।
1: तो नहीं आप नहीं बजा रही हैं?
0: नहीं वो तो मनोरमा जी बजाई थी ना।
1: अरे बाबा मनोरमा जी से हम रिक्वेस्ट किए थे उनसे, लेकिन उनके बाद आपसे हम कहे।
0: हाँ।
1: तो आप कहे कि हाँ ठीक है हम बजा देंगे, तो फिर आप बजाई तो दूसरा गाना बजा है ना वो स्टेज प्रोग्राम वाला। फिर आप दूसरी बार हम कॉल किए तो आप कहे कि नहीं ठीक है वो जो आप बता रहे हैं वही गाना हम खिलाफ फिल्म का बजा देंगे अलका याग्निक वाला। तो बजा था उसी लिए तो हम पूछ रहे हैं हम आपसे, हम सुने नहीं है
0: क्योंकि अभी तो मेरे पास एक कॉल बचा हुआ है। तो अभी
1: तो खैर कॉल बचा हुआ तो सब छोड़ दीजिए, तो उसमें हो मेरा है ना।
0: जी।
1: तो हम सुने नहीं है, दूसरे तीसरे लोग सुने होंगे पर दूसरा तीसरा हमसे कहा भी नहीं है कि आपका गाना बजा है या नहीं बजा है, तो हम क्या झूठ बोलने जाए, जो बात हकीकत है वो सही है।
0: नहीं आपके लिए तो एक मैसेज आया हुआ था किसी का, किसी को आपका गाना पसंद आया था तो आपका

0: हाँ, वो नाम लिए थे तो छोड़िए वो बातों को, ये बचा है तो कभी बच जाएगा वो मेरा, है ना। तो आज कोई खास कर जो है वो क्रांति फिल्म का गाना बजा दीजिए ना।
1: कौन सा वाला?
0: वो चाना चोर गरम वाला। चाना चोर गरम बाबू मैं लाया चाना चोर गरम। अच्छा, नहीं तो वो बजा दीजिएगा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हाँ तो ये दोनों में से कोई एक बजा दीजिएगा। तो ये दोनों क्रांति फिल्म का है, इसी का सुना दीजिए मैडम, बहुत अच्छा रहेगा। और बताइए अब आपके यहाँ बारिश हुआ है या नहीं?
1: बारिश तो खूब हो रहा है,
0: मजा आ गया एकदम ठंडा में।
1: पूरा मौसम एकदम हो गया।
0: आप लोग भुट्टा उट्टा खाते कि नहीं?
1: हम तो बहुत खाते हैं।
0: आप मेरे इतना नहीं खाती होंगी।
1: नहीं, बहुत अच्छा लगता है वो।
0: हर रोज 35-40 से जो है भुट्टा लाता हूँ, खरीद के भी लाता हूँ, अपने खेतों से लाता हूँ, लेकिन 35-40 डेली भुना जाता है उसको। इसीलिए कहे कि आप मेरे इतना नहीं खाती हो, खाने के लिए हम 4-5 खा जाते हैं। अच्छा। ना?
1: हाँ, बाकी तो घर के लोग खाते होंगे।
0: तो और लोग भी है ना, हम ही थोड़ी है, तो 4 या 5 इतना हम खा जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, इस साल में मजा आ गया है मेरे खाने में। एकदम भुट्टे का जो बोलते हैं ना भोजपुरी में, धुरकत छोड़ा देना, वही है कि धुरकत छोड़ा दिए हम इस साल में। इतना खा रहे हैं, इतना बोल रहे हैं कि तुम लोग तुम्हारे पेट में इतना हजम कैसे हो जाता है आपको देखो। नहीं नहीं, हजम करने वाली बात ही है। और पहले के भुट्टे में पहले देसीला आता था, अब जो है फॉर्म वाला आ गया ना, तो फॉर्म वाले के जो छिलका बहुत मोटा होता है, तो हम खाते हैं वो जो दूध वाला रहता है ना पूरा, संचा बाल हम लोग बोलते हैं ना संचा वाला, तो उसी को हम ज्यादा दांत से नचोड़ के खाते हैं, जिससे वो पूरा फट भी जाता है दाने और हजम भी हो जाता है। उसमें छिलके मोटे नहीं होते हैं, परंतु उसकी बहुत पतली होती है।
1: जी जी, वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, मीठा भी लगता है ना। तो हम बाल ज्यादातर नचोड़ के खाते हैं। तो इस साल तो मजा आ गया मैडम, जो भी हो खरीदते हो या अपने खेतों से हो, बहुत भुट्टे खाए, बहुत भुट्टे खाए, इतना काटा। अभी अभी ऑर्डर दे दिया है, आ रहा है 35 तो बाल आ रहा है। पूरा इंजॉय, बरसात के मौसम में जानते हो ये अच्छा रहता है भुट्टा खाना, बैठ के भुट्टा खाते रहो। अभी तो बहुत तूफान आ गया है, ठंड भी बहुत पड़ रहा है।
1: देखिए
0: कल परसों से कैसे होता है दिन, देखा जाए। तो ठीक है मैडम, आप थोड़ा ये गाना जो है क्रांति फिल्म का,
1: जी जी बिल्कुल,
0: है ना, वो ये दोनों में से कोई एक गाना बजा दीजिएगा। ठीक है मैडम, तो
1: रेडियो कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके, थैंक यू।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
6: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
9: Now pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ,

0: 3029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है।
1: प्रणाम मैडम।
2: जी प्रणाम।
1: अरे कॉलर लगा है, कोशिश की नहीं लगा फोन मैडम।
2: अच्छा,
1: हम भी बोल रहे हैं बंजारी से।
2: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं। गाना सुन मैडम, नाकाबंदी के गाना।
2: नाकाबंदी
1: कौन? मित्र है बाकी जी।
2: हेलो।
3: हाँ हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: जी जी नमस्कार मैम।
2: नमस्कार। आपका नाम?
3: मेरा सुमित नाम है।
2: और कहाँ से रहने वाले हैं आप?
3: यही सरयावाड नंबर 1 गोपालगंज से। और हेलो
1: हेलो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। सोनी पेपर है ना, सुमित के साथ लगे काम करते हैं बंजारी मोड़। कब गाना सुनाएंगे मैडम?
2: ये आपको गाना कल सुनने को मिलेगा, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच।
1: नाकाबंदी गाना सुना दो मैडम।
2: बिल्कुल। गाना क्योंकि सुनाना
1: नहीं सर, नहीं सुना मैडम,
2: खुद अपने दोस्तों में सुनना है।
1: हाँ दोस्त, अन्य बात मित्र
3: वही कह रहा था। मैं कह रहा था कि मेरा यही पे है, बगल में ही आपके एरिया में बंजारी में टिश्यू पेपर का मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बैठा हुआ। तो मैं वही सोच रहा था कि कैसे मतलब रेडियो रिंजन से कैसे मतलब होलसेलर से हमको कॉन्टेक्ट कराना था, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से पता चले कि यहाँ पे टिश्यू पेपर का ये सेल मेरा बढ़े। अगर आपको होलसेलर सबसे कांटेक्ट हो तो आप बताइए, वैसे फिर हम वैसे भी जुड़ सकते हैं। मतलब ये तो रिटेलिंग वाला काम नहीं है मेरा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग B2B है, मतलब जो भी होलसेलर है बस वही उन्हीं से मेरा काम रहेगा, है ना। रिटेलिंग में तो बहुत कम हो जाएगा, जैसे है ना मेरा मैन्युफैक्चरिंग होता है लगभग 150 बंडल डेली का प्रोडक्शन है ना, और रिटेलर लोग जो है 1 बंडल 2 बंडल लेगा लोग, उससे मेरा काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो वही मैं अपना सेल बढ़ाना चाह रहा हूँ।
2: जी रेडियो रंजन में कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कल 5 बजे में रहूँ?
2: जी कल 5 से 7 में गाना बज जाएगा आपका।
1: ठीक है, नाकाबंदी कर।
2: ओके ओके, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 91.4 एफएम में।
1: रामायण गुप्ता पेनुडा खास से बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बरखा बरसता।
0: अच्छा, उन्हें बारिश होता?
1: हाँ बारिश होता एकदम, घर में लुकायल बनी गया।
0: अच्छा, यानी तो अभी खुलल बावे तो मतलब
1: बरसता धीमे धीमे धीमे धीमे बरसता। गीत सुने के बाद
0: बता दी कौन सा गीत सुने के बाद?
1: माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं।
0: अच्छा, और गाना क्योंकि सुनाऊं के बाद?
1: सुने के बाद शंकर भाई बारे ऋषिया हरपुर के जी, हमारा सजाम गावेला प्रेमी बसारा लोग सुनी। गणेश चतुर्दशी के नमस्कार। गणेश चतुर्दशी अनुमत है आज?
0: हाँ हाँ आज अनुमत है।
1: हाँ दही चूड़ा खा गया आज नहा धोवा के?
0: हाँ हाँ बिल्कुल खाई जाए।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार। रेडियो रंजन में कॉल करनी हो खाते बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा, तुम्हें एक धमाकेदार

0: ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी सलाम मैम।
7: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम 90.4 FM में। हेलो
6: जी मैम, आज भी आप में क्या बात है?
7: आज भी हम ही हैं।
6: चलिए अच्छा लगा,
7: शुरुआत हम ही से होती है और एंडिंग वो करती है।
6: जी मैम, और इतना लेट से तो स्टार्ट हुआ है मैम।
7: हो जाता है कभी कभी, अभी जस्ट रिचार्ज हुआ तो कॉल लेना शुरू की
6: मैम। तो हम फर्स्ट में लगाने वाले थे लेकिन रिचार्ज को ऐसे लगा नहीं पाए।
7: कोई बात नहीं
6: मैम, मौसम का क्या हाल है उधर गोपालगंज में अभी?
7: क्यों, आप गोपालगंज में नहीं है?
6: नहीं है, लेकिन अभी हम गांव में हैं।
7: अच्छा,
6: टाउन में नहीं है
7: अभी। तो इधर एकदम मौसम, बारिश नहीं हो रहा है और ठंडा है, हवा चल रहा है।
6: मैम हवा तो इधर भी चल रहा है लेकिन हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है।
7: नहीं अभी इधर थोड़ा रुका हुआ है
6: मैम। तो मौसम को देखते हुए हमको एक गाना सुनाइएगा।
7: बिल्कुल, बता दीजिए
6: जी। गाने का बोल है, बरसते पानी का मजा कुछ और होगा।
7: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: जी गाना तो सभी दोस्तों को डेडिकेट है और आपको, और बताइएगा गाना कैसा है।
7: गाना तो अच्छा लग रहा है सुनने में।
6: आप कभी ना कभी तो सुनी होंगी लेकिन सब कोई नहीं सुना है, ये गाना बहुत कम ही चलता है।
7: जी जी, तो और सब ठीक है?
6: और सब बढ़िया है मैम, बारिश को वैसे हम भी गोपालगंज नहीं जा पा रहे हैं, 2 दिनों से हो गया कल से आज।
7: अच्छा चलिए बढ़िया है, कुछ दिन आराम भी करना चाहिए।
6: नहीं मैम, आराम अच्छा नहीं लगता।
7: अच्छा,
6: घर में मन ही नहीं लगता।
7: घर में मन नहीं लगता है?
6: नहीं मैम, किचन में जाना पड़ेगा मन लगाने के लिए मैम। हर तरह के कुछ अलग अलग बनाएंगे तो मन लगेगा।
7: तो बनाइए खाइए।
6: और मैम और सब बताइए, आपका नाश्ता पानी हो गया?
7: जी जी, हम लोग का तो हो गया है,
6: उनसे बात हुआ ज्यादा दिन हो गया।
7: जी तो थोड़ा लेट किए होते, 12 बजे के बाद उनसे बात हो जाती।
6: मैम चलते चलते भोजपुरी में बोलना चाहेंगे यही।
7: बोलिए
6: मैम, कब बाजी हमारा गाना?
7: और गाना काल बाजी
6: मैम, आज ना बाजी।
7: ना ना, आज मनोरमा जी की रिकॉर्डिंग कुछ बाचल भावे तो वहाँ के बजायम और हमारा काल बाजी।
6: अच्छा मैम, मैम धन्यवाद, आज ना बोलेम, वो दिन बोलेम जब बाजी तब।
7: ठीक बा, कोनो बात नहीं।
6: और मैम बहुत वो दिन हम खुश रहने के नाम बजा दे नहीं रहा था।
7: कभी कभी रवो लोग इनके बात के हमने के ध्यान में रखते हुए करे के पड़ेगा रवो लोग इनके बात के पूरा।
6: जी मैम, दोनों आदमी की खुशी चाहिए। चलिए हम तो एडवांस में धन्यवाद बोलिए देता नहीं।
7: चलिए ठीक बाबे, तब और गाना प्ले करता नहीं।
6: ओके मैम, बाय।
7: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: गाना सुना है मैम?
0: नाम बताइएगा अपना।
1: सिमरन
0: जी।
1: हाँ सही सर।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको सिमरन जी?
1: मैम वो गाना नहीं है पवन सिंह का, जीना भी क्या जीना बिना के।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: रेडियो रेंजन सुनने वाले सभी का।
0: क्या हाल चाल है सिमरन जी?
1: बढ़िया है मैम, अपना बताइए।
0: मेरा ठीक है।
1: तो खाना हुआ है कि नहीं बारिश में?
0: जी बारिश हो रहा है तो खाना क्यों छोड़ा जाएगा, खाना तो और मजा आता है खाने में। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमिशन 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
4: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

हेलो, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास अभी जब तक हमारे श्रोतागण जुड़ रहे हैं हमसे तो आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना प्ले करूंगी और यहाँ गाने की बोल है, ये खबर छपवा दो अखबार में और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए आप सभी के लिए प्यारा सा गाना प्ले करती हूँ और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे अफलातून मूवी का गाना ये खबर छपवा दो अखबार में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं क्या हाल चाल है, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं कि ये खबर छपवा दो अखबार में, वेरी नाइस ओपनिंग सॉन्ग मैम। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तिलेकी बाबू कर्नाटक से जुड़े हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से गाने की लिंक पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती दी गुड आफ्टरनून, सब लोगों को बोल दीजिएगा मेरी तरफ से, और का हाल बादी ज़रूर बताएं, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और प्लीज़ दीदी एक गाना सॉन्ग भेज रहे हैं बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जी मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी प्रणाम, गोल लागत यानी हिजरा नवादा से मिथिलेश चौहान बोला तानी, और इनकी तरफ से गाने की लिंक पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, और लिख रहे हैं क्या हाल चाल है। तो जी मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय नमस्ते भारती दीदी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि एक मेरा भोजपुरी गाना है बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ जो कि यहाँ गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, आज गाना बजा दीजिएगा खेसारी लाल का गाना बजा दीजिएगा, और मैसेज करने वाली हैं रेशमा जी पठानपट्टी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है खेसारी लाल की आवाज़ में, और गाना सुनना चाहती हैं, गाने की बोल है करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029994921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजद पर।

छोटे से ब्रेक और दो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। तो यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे तरफ से सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा रेशमा दीदी जी को और बहुत अच्छा गाना बा। और रेशमा जी के भोजपुरी गाना से शुरुआत कही नहीं है और बोल दीजिए कि मैम सिलवा दूंगा और बोल दीजिए भारती दी कि मैं सिलवा दूंगा। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से और लिख रहे हैं कि दो गाने के बाद मेरा गाना बजा दीजिएगा। तो आप मुझे कंफर्म कर दें अभी बजाना है या बाद में बजाना है। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दीदी, गुड आफ्टरनून, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से और क्या हाल है भारती दी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, हमारा भी हाजिरी लगा दे न्यायपारा विरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो नमस्ते मैम, मेरा नाम बिट्टू प्रजापति पिपरा सिवान से और मेरी तरफ से सभी को नमस्कार कहिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी सबको नमस्कार बोल दिए हैं आपकी तरफ से। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम और हाँ विनी हम हूँ और कैसी हैं आप। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्कार, भारती मैम जुड़ गए हैं रेडियो रिमझिम से और सुनील कुशवाहा एमपी मैहर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अभी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे, आज मेरा भी एक फरमाइश है और गाने के बोल हैं और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है राम कुमार पांडे जी की तरफ से। तो गाने की बोल है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना फूल और कांटे का, और सिंगर है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना है, और गाने की बोल है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ राम कुमार पांडे जी की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँच चुका है, तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: भारती मैम नमस्कार प्रणाम है, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है, और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारा गाना सुनाई हैं इसके लिए हमारे दिल से धन्यवाद है। आ एक लाइन कुछ कहूँगा, कोई पत्थर की मूरत है, कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में सूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर है, जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर यह है, मुझे तेरी जरूरत।

0: है, तुझे मेरी जरूरत है। तो भारती मैम सुनिएगा, क्या होता है ना कि कभी कभी मतलब कि कुछ करने जाइए तो उल्टा ही हो जाता है। तो कहते हैं, हमने चूम ली उस जमीन को, पड़ोसन ने जहाँ पाँव रखे थे। ओ हो, हमने चूम ली उस जमीन को, पड़ोसन ने जहाँ पाँव रखे थे, और वो बेवफा हमारे घर आकर बोली, बहन जी आपका पति मिट्टी खाता है, मिट्टी। बताइए कितना दर्द होता है जब ऐसे लोग आकर के बोलते हैं। भारती मैम, पत्नी ने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? तब पति ने उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकाल कर समुंदर के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती, मैं तब तक तुमसे प्रेम करूंगा। यह देखकर बेचारा समुंदर की आंखों में भी पानी आ गया और बोला, कहाँ से सीखते हो रे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना, बताइए। बहुत अच्छी बात बोला उसने। हाँ भारती मैम, जाते जाते कुछ कहूँगा, दो लाइनें। अरे ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। तो सभी लोग को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है।
1: तो अभी हमारे पास यहाँ फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ था राम कुमार पांडे जी की तरफ से, और काफ़ी खूबसूरत फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि संजय यादव जी दुबई से जुड़े हैं और लिख रहे हैं, नाइस सॉन्ग पांडे जी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं कि दो गाने के बाद बजा दीजिएगा मेरा, और मैसेज करने वाले हैं गणेश जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग चल रहा है मैडम जी, बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा है और अभी हमको अच्छा लगा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। और लिख रहे हैं कि दिल लगाया था तुमसे पर तुमने इसे तोड़ दिया भारती मैडम। लिख रहे हैं कि दिल लगाया था हमने, तुमने तोड़ दिया, बीच राह में लाकर हमें छोड़ दिया, सोचा था तमन्ना निभाओगी मोहब्बत तुम पर तुमने तो वफा के रुख ही मोड़ दिया। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मिथिलेश चौहान जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि करिश्मा जी की प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपके गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा पर एक गाने के बाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा गाना बजा दीजिए। और जो कि गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है, और गाने की बोल काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है निकेश कुमार चौहान पूर्वी चंपारण से जुड़े हुए हैं, और गाने की बोल है, सौगंध रहे गंगा में जब तक ले पानी, और मूवी है सौगंध गंगा मैया की। तो चलिए बिना देरी के इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:49 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं सुपर गाना मैडम जी बजा रहे हैं निकेश चौहान का फरमाइश ऐसी। इसी तरह माँ बाप की और भाई का प्यार बना रहे और मेरी तरफ से निकेश जी को धन्यवाद बोल दीजिएगा। तो जी बिल्कुल बोल दिए हैं और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास जो कि लिख रहे हैं सूरज के बिना दिन नहीं, चांद के बिना रात नहीं और माँ के बिना जिंदगी नहीं। न्यापारा विरई जिला बलोच छत्तीसगढ़ से बसंत ठाकुर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सरोज ठाकुर ईश्वर राज पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं आदित्य कुमार जम्मू एंड कश्मीर से और आपका प्रोग्राम ऑनलाइन सुन रहा हूँ और मुझे भी सॉन्ग सुनना है सुना दीजिएगा, लिंक के माध्यम से भेज दिए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी बिल्कुल आपके भी गाने को प्ले करूंगी पर उससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि असम से बाबू पेंटर सुनातानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और काफ़ी देर से और लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं कृष्णा कुमार और लिख रहे हैं मेरा गाना प्लीज़ बजा दीजिए और गाने की बोल है गाने की बोल है दिल लगैनी तोहरा से। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं नील कमल जी की आवाज़ में और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे नीलकमल जी की आवाज़ में काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना दिल लगनी तोहरा से तो दिमाग लगा दे लो। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है करिश्मा जी की तरफ से जो कि लिख रही हैं सुपर सॉन्ग। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आदित्य कुमार जी की तरफ से एक काफ़ी मज़ेदार मैसेज पहुंचा हुआ है। लिख रहे हैं कि किसी ने कहा पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है, 3 दिन से पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ना शीतल आई ना छाया। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि मुकेश को खरवार हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं नमस्ते मैडम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मुकेश जी लिख रहे हैं कि तुम आए तो लगा हर खुशी आ गई, यूं लगा जैसे जिंदगी आ गई, था जिस घड़ी का मुझे कब से इंतज़ार, अचानक वो मेरे करीब आ गई। और बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना बजाने के लिए। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि अभी हेलो माई चॉइस की रिकॉर्डिंग चल रही है और जिनको भी गाने को रिकॉर्ड कराना है वो अपना कॉल कर सकते हैं क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम, मैं गोपालगंज बरौली सिसई से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की बोल पहुँची हुई है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। और गाने की बोल है तुझे देखा तो सॉन्ग, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का गाना है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजन 90.4 FM में।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और शो है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 88 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि

0: और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा जी और भोजपुरी गाना सुनना चाहती हैं और काफ़ी देर से मैसेज कर रही हैं, तो जी आपके भी गाने को प्ले करेंगे। पर यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैं भोला कुमार बेतिया जिला से बोल रहा हूँ और दुर्गा जी का मंदिर से आप मेरी एक गाना बजा दीजिए। और लिख रहे हैं कि एके गोपाल गाना का बोल यहाँ पहुँचा हुआ है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू मैडम जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि रानी जी अगर आप सुन रही हैं तो कुछ बोलिए, मुझे दो शब्द बोलने हैं। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो जी अगर रानी जी आप कहीं सुन रही होंगी तो मैसेज का रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं, प्लीज़ दीदी मेरा गाना प्ले कर दीजिए। और करिश्मा जी की तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: हेलो दीदी, गुड आफ्टरनून, मैं करिश्मा कुमारी पिपर नारायण से, कैसे हैं आप ज़रूर बताइए। हम एक हफ्ते के बाद जुड़े हैं, मेरा फरमाइश बजा दीजिए, हमको गीत सुनना है, पिया मर जाहूँ जन कलकतिया, यही सुनना है, बजा दीजिए जल्दी से।
0: तो करिश्मा जी मैं आपको बता दूं कि आप दूसरे गाने की फरमाइश करेंगी तो मैं ज़रूर प्ले कर दूंगी, लेकिन अभी आपके लिए ये गाना मैं प्ले नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई और गाना बोले तो मैं बिल्कुल बजाऊंगी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास और गाना सुनना चाहते हैं, आदित्य कुमार जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और लिंक के माध्यम से इनकी तरफ से गाना पहुंचा हुआ है और गाने की बोल है, लड्डू वंदने सॉन्ग है और पंजाबी सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी के आपके लिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM में ये

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ गाना बजा दो, मेरा गाना सुनना है मुझे। और मैसेज करने वाले हैं भोला कुमार बेतिया जिला से, तो जी बिल्कुल आपके गाने को प्ले करूँगी, पर अभी आपसे पहले यहाँ एक दो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है उसे प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती दी, मैं न्याय पारा विरई से लीला साहू शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गाना सुनना था, कोई देशभक्ति गाना सुना दे और जय भारत जय हिंद। तो आपको भी बिल्कुल, और मैं आपको गाना सुनाऊंगी और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आसाम से बाबू पेंटर गाना सुन रहे हैं और मुझे भी गाना सुनना है, और यहाँ पे वॉइस के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: नमस्कार मैम, हम आसाम से कहता नहीं बाबू पेंटर पवन सिंह के कोई गाना बजा दीजिए, प्यार मोहब्बत वाला।
0: तो चलिए पवन सिंह का आपके लिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजन 90.4।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 1:10 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको एक बात बता दूं कि रेडियो रंजीम का आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रंजीम का ऐप डाउनलोड करके सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी अपने फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं भारती जी ठीक बानी नू और मैं धनेश कुमार मिश्रा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ फीडबैक मैसेज पहुँच गया है बाबू पेंटर जी की तरफ से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा गाना सुन के।
0: और यहाँ थैंक यू का मैसेज पहुँच चुका है और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार, मैं भी प्रोग्राम से जुड़ गया हूँ और सागर आलम खान जुड़े हुए हैं फ्रॉम तेजपुर आसाम से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय क्या हाल है जी, और मैं मनु मौर्या और मुझे भी गाना सुनना है और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना प्ले कर दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से और इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है और गाने की बोल है कहाँ चली गई लुए जान। तो चलिए बिना देरी किए इनके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे गणेश जी की तरफ से काफ़ी बेहद सैड सॉन्ग और गाने की बोल थी कहाँ चली गई ये जान। और इसी के साथ यहाँ बढ़ेंगे आगे, मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना डेडिकेट करने चाहते थे गणेश जी, करिश्मा जी को, मनीष जी को, बिट्टू, राघव जी, दिलीप राम, करिश्मा जी, प्रीति जी, आरजे सोनी जी और आरजे मनोरमा दी के, दिव्या दीदी के, श्रुति दीदी के, ऑफिसर सर के और स्पेशल मैं आपके और फाइनली लाइट आ विलवा। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं सब लोगों का नाम बोल दीजिए। तो जी मैंने यहाँ सबका नाम डेडिकेट जो था वो बोल दिए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा गणेश भैया को। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहा है मन करता है अब तुझे भूल जाने को, उन हसीन पलों को दिल से मिटाने का, जब तुझे मेरी याद आती ही नहीं तो क्या फ़ायदा तुमसे दिल लगाने का। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं जो कि मैसेज करने वाले हैं मंतोष हाथा मठिया से, और गाना सुनना चाहते हैं जाए चंदा ले या वो खबरिया। और क्या बात है, आज काफ़ी सैड सैड गाने की फरमाइश पहुंची हुई है हमारे पास। और चलिए गाना लेकिन बढ़िया आ रहा है सभी की तरफ से, और जाए चंदा ले या वो खबरिया काफ़ी खूबसूरत गाना है। तो प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978।

0: कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
1: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रम जिम 90.4 एफएम। तो आप सभी को बात बता दूं कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज की वेबसाइट से रेडियो रम जिम के वेबसाइट से जुड़कर गोपालगंज के हाल चाल के बारे में जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, मनोरमा जी और पितृ श्राद्ध की शुभकामनाएं, और न्यायपारा विरय जिला बालो छत्तीसगढ़ से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईश्वर राज, पप्पू ठाकुर जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी, दिल से थैंक यू गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं कृष्णा कुमार जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि

0: हेलो हाय भारती जी, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ और मैं रोहित देहरादून से, और बारिश के नाम में लग रहे हैं, बारिश ने नाक में दम कर रखा है। इंद्रदेव बरसाने से फुर्सत मिले तो कैलेंडर ज़रूर देख लेना। हम सावन के काफ़ी आगे आ गए हैं और सितंबर का महीना चल रहा है। क्या चाहते हो, इस बार रावण जलाकर नहीं डुबाकर मारे? और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, गाने की फरमाइश पहुंची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार। नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
1: हम पंडित जी बोल रहे हैं, स्वागत है।
0: हाँ जी, क्या हाल चल रहा?
1: गाना सुना है, सरसों फुला रहा होगा, जाने की जय के खेतों में सरसों, यही गाना सुना है।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ, यही गाना हमारा सुनना है।
0: तो चले रहा और गाना प्ले करते, नहीं सुनाते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो अभी हमने के बहुत ही खूबसूरत से गाना सुनत रहनी आसन, और गाना के बोल है ओढ़नी के रंग पियर। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मेरी तरफ से दिलीप भाई को सलाम कहिएगा, और सागिर आलम अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम सब मुसाफिर हैं, किसी की ज़िंदगी में कुछ पल के लिए आते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम सभी को, और मेरा प्रणाम यूपी से के बनारस से अनिल कुमार जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए लिख रहे हैं और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और काफ़ी देर से मैसेज किए हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। भोला कुमार बेतिया ज़िला से जुड़े हुए हैं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत पवन सिंह की आवाज़ में गाना है, और गाने की बोल है बिगड़ ले दिलवा के दासाबा। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजम 90.4 FM में।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और मज़ेदार जोक्स पहुँचा हुआ है और लिखे हुए हैं कि पप्पू ट्रेन की पटरी पर सो गया। एक आदमी बोला, ट्रेन आएगी तो मर जाएगा पप्पू। साले अभी प्लेन ऊपर से गया, कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन क्या चीज़ है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि भोला कुमार बेतिया से लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा गाना प्लीज़ प्ले कर दीजिए, और मैं आपको बता दूँ कि मैं आपका गाना सैटरडे के दिन ही प्ले की थी, इसलिए फिर से नहीं प्ले कर रही हूँ। और मैसेज करने वाले हैं प्रमोद कुमार साहू, और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास और गाना सुनना चाहते हैं, और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से लिख रहे हैं कि यहाँ गाना सुनवाना चाहते हैं आपको, सोनू भाई को, राम कुमार पांडे जी, कमरान भाई, सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, गजाला जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, खुशबू जी, सागिर अंसारी, आज़ाद भाई, सन्यासी भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गड्डा भाई, रोशनी जी, वीरेंद्र भैया, और लिख रहे हैं मेरा भी नमस्कार सागिर भैया जी को, और आज़ाद भाई और अहमद भाई को बोल दीजिएगा भारती जी। तो जी आपकी तरफ से मैसेज पहुंच चुका है उन लोगों के पास, और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को भी प्ले करते हैं। और इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, गाने की बोल है टिकुलिया एगो लईहा, और सिंगर है सोनू सरगम यादव। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे दिलीप जी की तरफ से काफ़ी बेहतरीन गाना और टिकुलिया एगो लईहा, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपको गाना चलाने के लिए भारती जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ना गहनों की ज़रूरत ना मेकअप की ज़रूरत, श्रृंगार सादगी में लगती है और सबसे शानदार लगता है। और बसंत कुमार ठाकुर ग्राम बिरई न्यायपारा से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे मैसेज अगला पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, दुनिया का बेहतरीन सिंगर मच्छर है, उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए पर ताली सबको बजानी पड़ती है। और काफ़ी मिलदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि दिलीप भाई का पसंद मुझे भी बहुत पसंद है। और सागिर आलम अंसारी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गाने के बोल भेज रहा हूँ, प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, और उससे पहले लूँगी कॉल क्योंकि कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: अस्सलाम वालेकुम मैडम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हेलो, गाना सुना दूं मैडम?
0: जी बिल्कुल, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: तरुण खत्री।
0: और कौन सा गाना सुनिएगा
1: मैडम? वो गाना बोर पर गोइल दावे आधा याद बा, वो गाना सुनो।
0: अच्छा, थोड़ा सा जो लाइन याद बा बता दी। थोड़ा सा एक बार और बताइएगा।

और गाना क्यों के सुनवाए के चाहत है नी? ओके तरह और गाना प्ले करते नहीं, सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

मैं उस गाने को प्ले नहीं कर सकती क्योंकि वो थोड़ा गाना भक्ति में है, तो भक्ति गाने यहाँ पे प्ले नहीं हो पाते हैं, और मैं आप सबको बता दूँ। और चलिए बिना देरी के बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं अमृत मूवी का कव्वाली है, तो चलिए बिना देरी किए प्ले करेंगे गाने को। और मैसेज करने वाले हैं अनिल कुमार, बनारस से जुड़े हुए हैं, तो बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमजम 90.4 FM में।

0: अब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसटी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:56 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और लिख रहे हैं कि अगर आपके पास ईगो है तो आप केवल मुँह फुला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इनो है तो आप ढोकला, भटूरे, केक सब फुला सकते हैं, इसलिए इनो रखिए, ईगो नहीं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो घर वाले बोलते थे कि मेला देखने मत जाओ, खो जाओगे, और अब बड़े हो गए हैं तो बोलते हैं कि मेले तो बच्चे देखते हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज मैम मेरा भी गाना सुन।

यहाँ पे अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि टीचर, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है। छात्र, सर आप पढ़ रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। और लिख रहा है कि आज छुट्टी पे हैं तो प्रोग्राम सुन रहे हैं, अब नेक्स्ट वीक मिलेगा और मेरे साथ मेरे दोस्त भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और छोटे लाल राकेश कुमार जुड़े हुए हैं साथ में। और आदित्य कुमार जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा नाम रविकांत कुमार और मेरा घर जिला गोपालगंज के पहाड़पुर गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रही है गुड आफ्टरनून मैम, मैं सिमरन फ्रॉम गोपालगंज से और मैं थोड़ा लेट से जुड़ी हूँ और लेकिन जुड़ गए हैं। आपके ये शो बहुत ही अच्छा चल रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है। और लिख रही है कि तुम्हारी याद दिल से जाने नहीं देंगे, तुम्हारे जैसा दोस्त खोने नहीं देंगे, रोज़ सफ़र में मैसेज किया करो वरना एक कान के नीचे देंगे और रोने भी नहीं देंगे। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं सिमरन जी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, गाना सुनना चाहते हैं सुनील कुशवाहा मैयर एमपी से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है ये लड़का हाय अल्लाह और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रमझम 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रमजन 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि अनिल कुमार जी की धन्यवाद मैम मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ अभी जिनके गाने को मैंने प्ले किया था उनकी तरफ से भी मैसेज पहुंच चुका है जो कि लिख रहे हैं दिल से धन्यवाद गाना बजाने के लिए, और गाना बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत अच्छा लग रहा है और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुशवाहा मैयर MP से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि परिवार में कथा हो रहा था, पंडित जी ने पूछा जिसे स्वर्ग जाना है हाथ ऊपर करो, सास ससुर ननद पति देवर सब ने हाथ ऊपर कर लिए, बेचारी बहू ने हाथ ऊपर नहीं किए। पंडित जी क्यों बेटी तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना, बहू जब ये सब ऊपर जा रहे हैं तो मेरा स्वर्ग तो यही है। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं रोहित जी, और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास और लिख रहे हैं कि देश के नाम पर कोई गीत बजा दीजिए भारती जी, प्लीज। और लीला साहू, मैं देश की बेटी हूँ, आप भी हो, और शहीद के नाम पर। तो जी हम सब हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब नहीं हैं, और आपके गाने को मैं रूल्स के हिसाब से प्ले नहीं कर रही हूँ, और समय मिले तो ज़रूर प्ले कर दूंगी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, बहुत ही अच्छा सॉन्ग चल रहा है, और लिख रहे हैं कि बंता ने हजाम की दुकान खोली, एक ग्राहक सेव कराने आया। बंता मूछ रखनी है ग्राहक, हाँ। बंता ने ग्राहक की मूछ काट कर उसके हाथ में देते हुए, लो रख लो जहाँ रखनी है। और फ्रॉम हरिओम गोस्वामी मदमोहन और की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और काफ़ी मिलदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे पास एक गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और मैसेज करने वाले हैं साविर अंसारी। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे, और इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश पहुंची और गाने की बोल है, किस्मतियाँ में जे लिखल रह तो, आशीष यादव का गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: the 78 kilogram Kurash events. Details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित। भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 299 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि ये मुद्दा कानूनी से अधिक तकनीकी है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने पीठ को बताया कि भुगतान गेटवे के 96% उपयोगकर्ता इससे मुक्त रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने घोषणा की है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय भारतीय बैंक संघ के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कहा कि ये निर्णय कल रात भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच हड़ताल से संबंधित मुद्दों पर हुई बैठक के बाद लिया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ अन्य यूनियनों और एसोसिएशनों ने 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली को लागू करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। केंद्र सरकार कर्नाटका और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित कर दिया है।
2: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
1: श्री चौहान ने कहा कि शुरुआत में आशंका थी कि अल नीनो के प्रभाव से बुवाई का क्षेत्र कम हो सकता है और महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई। खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है, लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि जितना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है, माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में आतंकवाद से निपटने के भारत के तरीके में बदलाव आया है।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया है। मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि 3 तलाक कानून कैसे मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में मदद कर रहा है।
5: 3 तलाक की प्रथा से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया। इस कानून के तहत तत्काल 3 तलाक को गैर कानूनी और दंडनीय बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कानून संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
5: मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी का कहना है कि 3 तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को उनके वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
7: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
5: मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने उन महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया है जो 3 तलाक की स्थिति में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी बात सामने नहीं रख पाती थीं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ तेजी से बढ़ते आंवला उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की सराहना की। आइए सुनते हैं इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के आंवले से बने उत्पाद आज ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है।
4: आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। सावित्री

0: राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: हम 25 करोड़ लोगों को एसआईसी की अनसिक्योरिटी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 10 करोड़ किसान के अकाउंट में हर 4 महीने 2000 रुपया डालते हैं। आज देश के 10 स्टेट ऐसे हैं जो महिला के अकाउंट में प्रति महीने कोई न कोई 2000 1500 1200 ऐसी अमाउंट डालते हैं। तो मैंने कहा कि क्या सोशल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं बन सकता, और कैलकुलेशन चालू करा तो उन्होंने स्वीकारा कि इंडिया आज 101 करोड़ यानी कि 68% लोगों को सोशल सिक्योरिटी देता है।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं ने शिक्षा, कौशल, प्रौद्योगिकी और रोजगार के माध्यम से वैश्विक समृद्धि को गति देने में युवा आबादी की क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई का बढ़ता उपयोग रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि एआई मानव सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि के लिए परिवर्तनकारी शक्ति बन सकता है, लेकिन उन्होंने इसके दुरुपयोग से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देशों को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एआई मॉडल विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 11वीं वार्षिक बैठक और निवेशक संवाद 2026 में भाग लेने के लिए कतर की राजधानी दोहा में हैं। इस बैठक में सदस्य प्रतिनिधिमंडल, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष बैंक की रणनीतिक दिशा, संचालन प्राथमिकताओं और भविष्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1907 में पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है।
2: शहीद आजम भगत सिंह के मन में देश की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा अपने परिवार से ही मिला था। उनके दादा, पिता और चाचा सभी स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय थे। भगत सिंह खुद भी इस आंदोलन से जुड़े और देश की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी बन गए। अंग्रेजों के कठोर और दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए उन्होंने साल 1929 में केंद्र विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिससे किसी की जान न जाए। इसके बाद उन्होंने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और गिरफ्तारी दी। साल 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी। शहीद भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में गुस्से और प्रेरणा की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी, जिसने उनके बलिदान को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। उनके अदम्य साहस ने देश के युवाओं में जोश भर दिया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और गति दी, जिससे गुलामी की जंजीरों को तोड़ने को देशवासियों का संकल्प और अधिक मजबूत हो गया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के सत्र में 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 956 अंक गिरकर 72,939 पर और निफ्टी 306 अंक लुढ़ककर 22,835 पर पहुंच गया। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। वहीं भारतीय एथलीट पिंकी बलहारा ने महिलाओं के अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की सियोंग सियोन को हरा कर पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। अब तक भारत कुल मिलाकर 39 पदक जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 17 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ईशा सिंह के शानदार प्रदर्शन में उनके कौशल, सटीकता और निरंतरता की झलक दिखाई देती है। मौसम विभाग ने कल तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार कल तक केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। बैंकों की आज से शुरू होने वाली 3 दिन की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल स्थगित।

0: संदिग्ध भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की आज 119वीं जयंती। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 306 अंक गिरा। और एशियाई खेलों में भारत ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत और अंडर 78 किलोग्राम कुराश स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
6: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
4: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
5: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-023-35-8-76 या 95-999-27-982।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527-88291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गया।

और यहाँ पे मैसेज पूछ गया जो कि लिख रहा है, हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। और मैसेज करने वाली हैं हजरा सूरत से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुका है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहे हैं, हाय क्या हाल है जी, मैं मनु मौर्या, गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहा है, न्यूज़ के बाद फिर से हाजिर हो गया हूँ का हलवा मनोरमा दीदी। और मैसेज करने वाली हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और मेरा हाल चाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, प्लीज़ दीदी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले

गोल लागता नहीं और प्रणाम। और मैसेज करने वाले हैं मिथिलेश चौहान, जो कि लिख रहे हैं कोटी कोटी और प्लीज गाना बजा दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मिथिलेश जी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ एक और मैसेज पहुंच गया, जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैम, मैं विनोद कुमार चौहान अभी मुंबई से हूँ, और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और लिख रहे हैं क्या हाल बात। तो हाल तो ठीक बात कि अपन बताएं विनोद जी की रुआ कैसन मानी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैं मन्नू मौर्य और मुझे गाना सुनना है, गाना सुना दीजिए जीता था जिसके लिए, और बहुत ही बेहद खुश सा सॉन्ग है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जीता था जिसके लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं, हाय हेलो गुड आफ्टरनून सभी रेडियो रिमझिम सुनने वालों को, और मैं सोनू कुमार दुबई से, मैं भी जुड़िया हूँ आप लोग के साथ, और हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

पुरानी गाना बजा दीजिए और मैसेज करने वाले हैं। तेलुगु बाबू कर्नाटक से जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं, प्लीज दीदी मेरा गाना बजा दीजिए और डेडिकेट करना चाहती हूँ गणेश जी को, मनीष जी को और धनीश जी के, बिट्टू प्रजापति, राज आरजे सोनी जी को और कृष्णा जी को और भारती दीदी के लिए और स्पेशल मैं आप हूँ। और लिख रहे हैं कि प्लीज़ दीदी बजा दीजिए। और तो चलिए और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा जी पिपरा नारायण से। तो चलिए करिश्मा जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और गाने के बोल है दिलवा ले गई ले राजा जी बोतल में भर के। तो चलिए इंजॉय करते हैं रेडियो 90.4 FM पे ये प्यारा सा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-86165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि मैसेज पहुंच गया है, जो कि लिख रही हैं थैंक यू दीदी गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा करिश्मा जी को, बहुत ही अच्छा गाना बा। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहा है नमस्ते मुनर्मा मैम, क्या हाल है मैम? तो जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय मैम कैसी हैं, मैं निषाद भारती विलेज उछवलिया उचका गांव प्रखंड से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मैं छोटू छलिया हैदराबाद से बोल रहा हूँ, मैडम जी हमारा गाना सुना दीजिए। और गाने के बोल हैं मर्दा पे केहू ताकि तो गर्दा उड़ा दे, और सुनवाना चाहते हैं सुनील जी को, जो कि लिख रहे हैं सुनील जी का फेवरेट गाना है, सुनील जी को सुनाना चाहते हैं और सभी रेडियो रिमझिम दोस्तों को सुनाना चाहते हैं। तो चलिए छोटू जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा गीत।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैडम जी सुन रहे हैं गाना और थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं छोटू छलिया हैदराबाद से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं ओम साई टेरा राघव जी की तरफ से, एक प्यारा सा लाइन है। और इससे पहले मैं आप बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। जो कि लिख रहा है रेडियो रिमझिम पर सोमवार की प्यारी शुरुआत, सोमवार की सुबह हो, चेहरे पे मुस्कान हो, मनोरमा मैम की आवाज में मीठी सी पहचान हो, रिमझिम की धुन बजे धुन, रिमझिम की धुन बजे दिल झूम उठ जाए, दोस्तों की महफिल में हर पल खुशियां मुस्कुराए। और लिख रहे हैं कि मनोरमा मैम आपकी आवाज में ऐसा जादू है, सुनते ही दिल कहे आज का दिन भी खूबसूरत है, आप बोले तो मौसम भी गुनगुनाने लगे, रेडियो रिमझिम के संग सारे दोस्त मुस्कुराने लगे, सभी दोस्तों के नाम, दोस्ती का रंग यूं ही चढ़ता रहे, हर सोमवार खुशियों से भरता रहे, रेडियो रिमझिम के महफिल सजी रहे और अपने की मुस्कान में हमेशा बनी रहे। और मनोरमा मैम के लिए दिल से आपकी सुरीली आवाज का ये असर है, सोमवार भी लगता है जैसे कोई खूबसूरत सफर है, योर वॉइस योर चॉइस के महफिल यूं ही सजी रहे हैं, रेडियो रिमझिम की धड़कन यूं ही दिलों में बसती रहे। और मैसेज करने वाले ओम साइन टेलर राघव जी की तरफ से तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखे हुए थे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रही हैं सुपर सॉन्ग और मैसेज करने वाली हैं करिश्मा कुमारी पीपरा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि मैं निशा भारती विलेज उज्जवलिया उचका गांव प्रखंड से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए और तो आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं तेरे आशिकी का गम पी जा रहे हैं और नाम लेकर और ये डेडिकेट करना चाहती है आप, जो कि लिख रहे हैं भारती मैम, सोनी मैम, श्रुति मैम, दिव्या मैम, निशा सिंह एंड निषाद पांडे, सुधा सिस्टर और सिल्फी सिस्टर, रोशनी सिस्टर, शहीद अंसारी एंड प्यारे प्यारे ऑल लिसनर के साथ। और जो कि लिख रहे हैं ओए मैम जी हम पे भी ध्यान दीजिए, पहली बार जुड़ी हूँ और योर वॉइस योर चॉइस में ओल्ड लिसनर हूँ बट फर्स्ट टाइम कॉल की हूँ, आई मीन फर्स्ट टाइम मैसेज की हूँ। तो चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है तो इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।
1: तुम्हारी मोहब्बत में हम तुम्हारी

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुने थे निशा भारती जी की तरफ से, और इनके तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम गाना प्ले करने के लिए, और लिख रही हैं गाना सुनाने के लिए लव यू। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग मैम, और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव दुबई से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान से पकवलियो टोला बलुआ से हूँ, और मेरे भी गाने की फरमाइश है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है दोस्ती की शुक्रिया कुछ इस तरह करूँ, आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूँ। दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह करूँ, आप भूल भी जाए तो मैं हर पल याद करूँ। खुदा ने बस इतना ही सिखाया है मुझे कि खुद से पहले आपके लिए दुआ करूँ। और मैसेज करने वाले पाजी यूपी 54 से जो कि लिख रहे हैं हाजिरी लगा दीजिएगा मनोरमा मैम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं तेलुगु बाबू कर्नाटक से जुड़ गया मैम, मेरा भी गाना बजा दीजिए, और मैसेज का टाइम देखिए फिर उसके बाद गाना बजाइएगा। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और इनकी फरमाइश लिंक के माध्यम से है, तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं। और बहुत सा मतलब बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, और गाने के बोल हैं उसका मत बन जाना जोगी भूल के अपने जोगन को, तो चलिए गाने को प्ले करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और जो कि गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुंची हुई थी, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रही हैं सुपर सॉन्ग, वेरी नाइस। और मैसेज करने वाली हैं

गाना बजा दीजिएगा और मैसेज करने वाले हैं टुनटुन यादव जी, तो बहुत बहुत स्वागत है और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इन्होंने मैसेज किया जो कि लिख रहे हैं, आपका नाम क्या है मैम? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मनोरमा है और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय मैम, और लिखे नमस्ते मैडम जी, और मेरा भी एक गाना है बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं मंतोष जी, तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, जी मनोरमा मैम,

के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मंतोष जी की तरफ से, और मैसेज किए हैं कि मेरा भी एक गाना है बजा दीजिएगा। और गाने के बोले दिल का क्या करे साहिबा, हम उन्हीं पे मरते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए मंतोष जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि गाने के बोल था, दिल क्या क्या करे साहिबा हम ही तुम ही पे मरते हैं। और मैसेज को दिया जो कि लिख रहा, थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और मैसेज करने वाले मंतुष जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहा है, जो कि लिख रहा है मनोरमा जी, दिल के कोने से एक आवाज आती है, हमें हर पल आपकी याद आती है, दिल पूछता है बार बार बार हम दिल पूछता है बार बार बार हमसे, जितना हम याद करते हैं उन्हें, क्या उन्हें भी हमारी याद आती है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं, मस्त सॉन्ग है और जो अभी बज रहा है जावेद अख्तर धनबाद, और लिख रहे कि हमारा गाना रुआ लोग नहीं की बजाओ लोग, तो राहुल भी गाना बाजी ऐसा कोनो बात नहीं थे। और इससे पहले बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा, तो उन लेके भी गाना बजावल जरूरी बा। और मैसेज कर रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो ज़रूर बजाएंगे, आप अपनी फरमाइश तो लीजिए पहले। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पूछा जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा जी भारती मैम आप दोनों को अदाब, और हाय मैम गुड आफ्टरनून, बजाजी रोड लालगंज से एमडी नौसाद एमडी सदाब, और साथ में एमडी निसार एमडी रिजवान और अभिनंदन टेलर भी। और लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है जो कि लिख रहे हैं, जो कि लिख रहे हैं भारती मैम हमार गनवा ना बाजी का, तो जरूर बाजी चलिए, और गाना हम प्ले करते नहीं, और गाने की बोल बा बर्बादी हुई बर्बादी हुई, तो चलिए एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, बर्बादी हुई, और मैसेज पहुंच गया है नौशाद जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना सुनावे खातिर, साथ में एमडी मीनू केरला से भी, तो बहुत बहुत स्वागत है उनके भी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, धनेश कुमार मिश्रा जी जो कि बहुत ही मज़ेदार जोक्स के साथ है, तो चलिए देखते हैं क्या है। और मज़ेदार जोक्स जो कि लड़का लड़की को अपनी कार में बैठा कर ले जा रहा था, लड़की हम कहाँ जा रहे हैं, लड़का लॉन्ग ड्राइव पे, लड़की आओ पहले क्यों नहीं बताया, ओ वाओ पहले क्यों नहीं बताया, लड़का मुझे खुद अभी पता चला, लड़की कैसे, लड़का ब्रेक नहीं लग रहे हैं। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, जो कि लिख रहे हैं बर्बादी हुई बहुत अच्छा लागल सॉन्ग, जो कि लिख रहे हैं बर्बादी हुई बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच रहा है जो कि लिख रहे हैं अजीत कुमार सा उर्फ हिटलरी बिहारी हरियाणा से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अजीत जी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है मिथिलेश जी की तरफ से, तो इनकी फरमाइश लिंक के माध्यम से है, तो चलिए आपके गाने को मिथिलेश जी हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894704 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 7070-7763-100 या 7070-7742-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है थैंक यू मैडम जी गाना बजावे खातिर। और मैसेज करने वाले हैं मिथिलेश चौहान जी, और जो कि लिख रहे थैंक यू धन्यवाद पूरे रेडियो रिमझिम में काम करने वाले तो मेरे तरफ से प्रणाम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हाय मैडम जी मैं मन्नू मौर्य मठिया हत्ता से, और मेरा भी एक गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, और बहुत ही मजेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं पति सुनो जी मैं कैसी लग रही हूँ, पत्नी सुनो जी मैं कैसी लग रही हूँ, पति बिल्कुल चांद जैसी, पत्नी सच में पति हाँ दूर से ही अच्छी लगती है। और बहुत ही मजेदार लाइन के साथ पहुंचे हुए हैं, और इनका नाम मन्नू मौर्य जी, तो बहुत ही मजेदार लाइन था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और इनकी फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिंक के माध्यम से है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे ये प्यारा सा गीत।
1: जब पता चला था

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहा है मेरा गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद आपको। और मैसेज करने वाले हैं धनीश कुमार मिश्रा जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है हेलो मैम नमस्कार भारती जी क्या हाल है आप मेरा फरमाइश पूरा कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके गाने की फरमाइश कल ही पूरी हुई थी और तो मैं आज आपके गाने को हम प्ले नहीं कर सकते फिर एक सप्ताह बाद ही प्ले करूँगी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं एमडी पिट्टू भाई मैं मीना बाजार से और मैं नाना बना हूँ रुस्कर और अरमान को दुआ प्यार खुशी और समीर को दुआ और सॉन्ग चला दीजिए जुग जी जी अता लाला नुमा। और पिट्टू जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है कि नाना बन गया तो पार्टी तो बनती है और बहुत बहुत बधाई हो नाना बनने की खुशी में। तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और इन्जॉय करते हैं रेडियो मिर्ची 90.4 FM पे ये

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया। और तो श्रोताओं, मैं आप सबको बता दूँ कि कार्यक्रम समाप्त होने वाला है और सबकी तरफ से मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं बाय बाय मनोरमा दीदी। और मैं आप सभी को बता दूँ, श्रोताओं समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291 और कॉल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 72776065। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं लूँगी आप सभी से विदा। इसी के साथ यहाँ पे सबकी तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गया है।

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं संजीवनी भोजपुरी से तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे सभी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
6: All right.

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056559536 या 9056557902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456551 या 9707065775। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

दिल में राखब दिल के अरमान बना के, तोहके दिल में राखब दिल के अरमान बना के, अरे जान जबले रही कसम से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का। तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
8: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए।
9: जी मैं दीपक मेन ग्राम मधुसूदनगढ़ से बोल रहा हूँ।
8: जी नाम क्या बताया?
9: दीपक।
8: अच्छा दीपक जी, क्या हाल चाल है?
9: सब बढ़िया है। अपनी मक्का कट रही है इस जगह, मजदूर आगे पीछे कर रहे हैं हो गया।
8: अच्छा,
9: मजदूर लग रहे हैं खेत में भी।
8: मौसम कैसा उधर का?
9: मौसम मैम बदल बदल हो रहा है, पानी गिर सके। और आपके?
8: हमारे यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, बारिश हो रही है।
9: मैम पानी नहीं गिरता तो बढ़िया है। आज मैम सोयाबीन खाए, मक्का कट जाएगी, नहीं तो मजदूर ऐसे जाएंगे। 500 रुपए गए हैं मैम।
8: जी तो फिर क्या है आज की आपकी फरमाइश?
9: फिल्म का नाम है सपने साजन के, और गाने के बोल है कभी तेरे प्यार में, कभी भूला कभी याद किया।
8: एक बार और बता दीजिए।
9: कभी भूला कभी याद किया, जेकी शराब की मूवी है, जेकी शराब की।
8: जी जी, क्या ये गाना मुझे गा के बताएंगे आप?
9: तेरे इंतजार में कभी भूला कभी याद किया।
8: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
9: हाँ, मेरे मित्र है ना सुनील साहू मकसूदनगढ़।
8: जी जी,
9: उनको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं, और मैम उसने ही मुझे ये नंबर दिया था। मैम बहुत दिन से लगा रहा हूँ, लगे पाई नहीं वो, तो आज तक कैसे भगवान ने सुन ली मेरी।
8: अच्छा जी, तो आज पहली बार कॉल की है हेलो माई चॉइस।
9: हाँ मैम, लगाया था, नहीं लगाया था मैंने बहुत दिन से, वो लगता ही नहीं था, वो आज वो बेटा बेटे में इनकी आज लगा सही।
8: अच्छा जी, यानी कि आज पहली बार ही मतलब लगा है और बात हो रही है।
9: जी मैम पहली बार ही लगाया मैंने, वो भी इतना लगा ले, हमारे मजदूर आ रहा तो खाना पीना करेंगे, तो मैंने लगा ले और बात करते।
8: जी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे।
9: जी मैम, जी मैम, मैम आप, जी मैम ठीक है, धन्यवाद।
8: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
9: जी मैम धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया है जी। कौन बोल रही है? वासी मैम भी बोल रहा
1: हूँ। मनोज मैम।
0: हाँ जी, और सब बताइए, बारिश हो रहा है ना? खूब।
1: जी जी, बारिश तो हो रही है।
0: इसी समय से कॉल लगाते लगाते जाके लगा पाँच मिनट पहले। बोल रहे थी एक गाना सुना
1: दीजिएगा।
0: बोल है घुंघरू की तरह बदता ही रहा हूँ मैं।
1: जी मैं गाना सुनाऊंगी, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: हमारा नाम पप्पू ठाकुर है।
1: और कहाँ से?
0: बगही बाजार कटिया गोपालगंज।
1: अच्छा जी, ये गाना जो बताया वो डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: हाँ हाँ, डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारे दोस्त हैं सुभाष सिंह और राजेंद्र भाई हैं, इनके लिए।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 FM में।
0: जी, हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: जी,
0: हेलो।
1: हाँ
0: हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो बारिश हो रहा है घर में है।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश का मौसम है, एंजॉय कीजिए। तो बता दीजिए इसी के साथ कौन सा गाना सुनिएगा?
0: गाना आप हमें सुनवा देंगे, साजन मूवी का कोई भी प्यारा सा गीत।
1: गाने की बोल
0: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यारी वाला गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो गाना सुनाएंगे भी किसी को?
0: सभी साथियों,
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: धन्यवाद।
1: 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेस्टोरेंट में।
4: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते,
4: हमें गाना सुना था मैडम।
3: जी नाम बता दिए अपन। और कौन सा गाना सुनाई
4: बाजूरी गाना सुना दे हम बेचारी लाल यादव को।
3: गाना के बोल बता दी।
4: पूरा गाना सुनवाए
3: कौन सा
4: बेटा और कुछ करे ले।
3: अच्छा चलिए ठीक बाबे। और गाना
4: भारती मैम बोलो तो मनोरमा मैम बोलो भारती मैम।
3: भारती
4: वहाँ से हम गाना है सबसे उनके सुने गए।
3: ठीक बस गाना प्ले करते नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
4: आज बाजी जी कल
3: काल बाजी
4: बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका। सुनते मैसेज भी करते व्हाट्सएप से।
3: ओके।

0: बाप रे।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: बोलिए क्या रहा है।
1: बस आप लोगों से बातें

0: कौन सा सुनना है?
1: यही वाला बजा दीजिएगा, बरसात का मौसम आया।
0: गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: मेरे अब्बू है कलम मियां, मेरे भैया है मौलवी मियां, जमशेद अरमान निशान शमशेद भतीजी सब है, खानाज अजमेरी सब श्रोता को और आपको भी।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: सही है, मैं बद्री नारायण मुनि बोल रहा हूँ, ग्राम भोलो जिला
7: सीमा जी। कैसे हैं आप?
6: हम तो बहुत बढ़िया है, आप कैसी हैं?
7: जी हम भी अच्छे हैं।
6: ठीक है जी, तो हमको एक गाना सुनना है।
7: बिल्कुल, कौन सा?
6: गंगा जमुना फिल्म का। वो गाना का बोल है, नैन लड़ जाई है तो मनवा में कसक होइबे करी, फुटिया पटाका तो धमक होइबे करी।
7: जी,
6: वो गंगा जमुना का है। संगीत गीत लिखा है शकील बरानी ने, संगीत दिया है 97 साल।
7: गाना किसी को सुनवाना भी है?
6: अब पूरे जितना लिसनर है रेडियो रिमझिम का, सबको हम सुनवाएंगे और आपको भी सुनवाएंगे, पूरा रेडियो रिमझिम के परिवार को और सबको सुनवाएंगे। और हमारा लड़का है नागार्जुन, उसको भी सुनवाएंगे। धर्मेंद्र है हमारा लड़का, उसको सुनवाएंगे। और गांव में एक आदमी है परोड़ी नाम है उसका, उसको भी सुनवाएंगे।
7: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 जी। कल शाम को 5 से 7 मिलेगा सुनने को।
6: अच्छा, 5 से 7 बजे कल। ठीक है, ठीक है।
8: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

ठीक बोलो। रेडियो 90.4 FM।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
10: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
9: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
10: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
9: कहाँ?
10: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
11: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
11: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
4: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
11: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-023-35-876 या 95-999 27-982।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-11। जी हाँ, 80-029-94-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो मैम
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
13: सलाम मैम।
14: वालेकुम अस्सलाम।
13: ठीक है मैम
14: जी? मैं ठीक हूँ, नाम बता दीजिए अपना।
13: रोशनी।
14: कहाँ से बोल रही है रोशनी जी?
13: अगेड़वा।
14: और रोशनी जी, क्या हो रहा था?
13: ड्राइंग बना रहे हैं
14: जी।
13: ड्राइंग बना रहे हैं?
14: अच्छा, ड्राइंग बना रही है।
13: हाँ।
14: अच्छा जी, तो किस क्लास की पढ़ाई करती हैं आप?
13: 7।
14: चलिए, तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
13: हाँ ठीक है।
14: तो फिर कौन
13: नाश्ता हो गया?
14: हाँ जी, नाश्ता हो गया। और आपका हुआ?
13: मेरा भी हो गया।
14: चलिए बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
13: आज स्टोरी के पहले चढ़ाई।

0: पिटाई करा था ना मैं,
1: ये गाना मुझे
0: जाके बताएंगे आप बोलाएंगे। हाँ पहले चढ़ाई था तो हर पिटाई करा दे मैं थाना में, उस संभाले में नहीं बात जहर खाना में गिट्टू कटा तोरे से जड़े से कोड़ी तोरे घरे से ए बर्बादी हुई बर्बादी हुई शादी हुई मोर तोरे से। पहले आपको और जो सुनते हैं उनको और मेरे चाची को और मेरे चाचा को और मेरे बहन को और मेरे अम्मी को।
1: ठीक
0: थैंक यू
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
0: जी हम बोल रहा हूँ नीतीश कुमार पासवान, बोला छपरा सिवान जिला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया।
0: बारिश तो मौसम उधर कैसा है, बारिश का मौसम कैसा है उधर, बारिश हो रहा है?
1: हाँ बारिश तो हो रही है, आज 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रहा है।
0: गाना सुना दीजिए मैम हमको।
1: बता दिए
0: तोहरा प्यार में पिटाई बनी लाइकी मिलत बाबू दास।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: गाना सुनवाना है कमल को, लक्ष्मी को, पूरा डेडिकेट है आपको भी।
1: अच्छा जी, आप रेडियो रिंकी में पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ जी मैम, हम तो कॉल करते हैं लेकिन मेरा कॉल भी नहीं लग सकता है।
1: तो आज पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ पहली बार।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: कार्यक्रम तो बहुत अच्छी लगती है मैडम, आपका भी बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया प्रोग्राम भी होता है, शूट होता है।
1: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक, और सब ठीक है ना?
1: सब बढ़िया।
0: वेलकम।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्ते मैडम जी।
6: नमस्ते।
5: कैसे हैं मैडम जी?
6: जी हम तो ठीक है, आप बताइए, आप कैसी हैं?
5: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ।
6: तो क्या हो रहा था?
5: आपका इंतजार।
6: चलिए चलिए, इंतजार खत्म हो गया, आप फोन भी लग गया।
5: और सब बताए, सब समाचार ठीक बा?
6: सब ठीक बार हुआ। नेहा बोलता है ना?
5: जी मैडम जी, नेहा बोलता हूँ, पहचान लगे।
6: हाँ हाँ, रुआजी कैसे ना पहचाने हम?
5: सब ठीक बा, पहचान लगे।
6: तो आज कौन से गाना सुने?
5: गाना सुना दे चुपके चुपके चोरी चोरी।
6: कई गाना रोज गा के बता सकते
5: मैडम जी? गाना तो ना गाए ले, बाकी रे ने सुने ले।
6: अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं है। ऐसे नेहा जी कहाँ से बोला था?
5: भोर से।
6: अच्छा, मौसम कैसे बने के?
5: बहुत बारिश हो।
6: बारिश तो
5: रात भर बारिश हुआ।
6: और ये गाना कैसे सुनाए के भी चाहते
5: जितना गजे रे सब है
6: नमस्ते सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी
0: मैडम जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
1: जी सुनील जी, कैसे हैं?
0: बस मैडम जी, आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
1: अच्छा जी,
0: जी
1: तो और बताइए मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम हमारे यहाँ धूप खिल रही है, सोयाबीन कट रही है।
1: अच्छा, धूप निकली हुई है।
0: सोयाबीन की कटाई चल रही है।
1: अच्छा, और हमारे यहाँ गोपालगंज में बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है आपके इधर?
1: जी जी,
0: तो हमने उधर भेज दी आपके इधर, हम सोयाबीन काट लेंगे, फिर हम आप हमारे इधर बारिश भेज देना, ठीक है?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और आपके उधर क्या फसल होती है?
1: फसल तो होती है बट मेरे घर नहीं होती।
0: नहीं आपके घर नहीं, आपके शहर में जैसे कि हमारे इधर सोयाबीन होती है, मक्का होती है, आपके उधर क्या होता है?
1: हम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमारा जो एरिया है वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं है?
1: जी जी, खेती वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता।
0: जी जी, कौन भारती जी बोल रही है? मनोरमा जी बोल रही है?
1: मनोरमा
0: जी, भोजन होगा आपके?
1: जी जी, और आपका हुआ?
0: हाँ मेरा भी हुआ यार।
1: चलिए बढ़िया, तो आज की क्या है फरमाइश आपकी?
0: जी मैडम जी, आज की फरमाइश है हमारे मामा जी गोलू साहू जी की। हेलो।
1: हाँ जी,
0: हमारे मामा जी गोलू साहू जी की फरमाइश है। पिक्चर का नाम है राम अवतार।
1: जी।
0: और गाने बोलो, तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो।
1: तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ।
0: हाँ, तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो कौन था ऐसे ही है कुछ मैडम जी, हमको गाना मेरी मोहब्बत की तोहिन होगी, अनिल कपूर वाली फिल्म है ये।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, अच्छा गाना है ये, उनको किसी ने धोखा दे दिया था तो ये गाना वो सुनना चाहते है।
1: अच्छा
0: जी,
1: और ये गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
0: जी जी, ये डेडिकेट गाना उनको किसी एक दोस्त को डेडिकेट रहेगा। और हमारे मित्र है गोपाल ओझा जी, जीतेन धाकड़ जी, गजराज सिंह लोधी जी हैं, और सोनी मैम, मनोरमा मैम, और एक और मैम का नाम भूल गया, भारती मैम को ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
1: ओके सुनील जी, तो
0: ठीक है मैडम, धन्यवाद
1: जी। तो सुनील जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं
0: जी,
1: सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: Now pick your phone up.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
14: सब स्वागत है आपका रेडियो इंजन 91.4 FM में।
13: हाँ जी मैडम, प्रणाम।
14: जी प्रणाम, हाल चाल तो ठीक बा। अपन बताएं कि रोवा कैसन बानी?
13: बढ़िया बानी, हम सब पहचान रहे।
14: हाँ रोवा विकास बोलता है ना?
13: विकास बोलता है। और सब बताएं?
14: सब बढ़िया बारा उद्वा से। रोवा बताएं कि रोवा कैसन बानी?
13: बढ़िया बानी। और गोपालगंज में मौसम है?
14: गोपालगंज के मौसम तो कई बताएं, बहुत बारिश होता है।
13: हमने के दिल्ली में नोएडा में सारा बहुत धूप निकल रहा, थोड़ा होने से बारिशो भेजती, थोड़ा हमारियों के ना ठंडा थोड़ा मिली थी। भगवान के पास फोन करी कि थोड़ा आया ना भेजी।
14: अच्छा चलिए,
13: तो भगवान के लगे कॉल लगवे ना करी,
14: दुआ कर ली की बारिश हो। वैसे क्या होता अभी?
13: अभी तो ड्यूटी होता
14: है। आज के फरमाइश?
13: आज गाना का फरमाइश होते खेसारी लाल के, वही दिल न लगाई वाली
14: गाना बहुत अच्छा गावेंगे। गाना बहुत अच्छा गावेंगे।
13: गाना तो गाई ले दिया सैनू, लेकिन हमार नाम सेकंड है, सेकंड में हमार विकास नाम, तो हमार नाम दिया से नाम से हमार फेमस हटे पूरा। चलिए आपके कृपा से, भगवान की कृपा से आपके दुआरी पर अगर कभी भी आवे कोई तो अगर नसीब में हुई तो एग्जाम गावे खतरा आ जाए।
14: बिल्कुल,
13: ये नोएडा का मेरा दोस्त है ना वो गुरदीप, वो भी बोलते है कि यार तुम्हारे घर में चलूंगा तो यार भारती सिस्टर से भेंट करूंगा यार। हम बोले एकदम यार बिल्कुल चलना यार, चलना, मैं घुमा करके लाऊंगा अपने देश में से। और सब मैडम बताइए आप कैसन बानी अभी?
14: जी जी हम ठीक बानी, बस सभी से बातें होता अभी।
13: अच्छा चलिए बढ़िया बा, मौसम कैसे कि खराब चलता ना दो चार दिन हमारे सर्दी खांसी इतना ना हो गई मैडम की हालत खराब कर दिला।
14: हाँ मौसम की वजह से हो
13: बा। हेलो नमस्ते मैम।
14: जी नमस्ते
13: मैम, गाना जो बताया ना खेसारी लाल जी का, हम दोनों खेसारी लाल के फैन हैं।
14: अच्छा जी।
13: जी अब गाना जब हम खेसारी लाल के ही गाने पसंद करते हैं, और गाना मैम यही होना चाहिए जहर लई हो, वही वाला गाना हम काते लई हो। ये गाना जितना रेडियो रेमियम सुनने वाला है सब श्रोताओं को, और मेरे दोस्त है गुरदीप सबसे पहले आपको सुनवाना है।
14: जी जी बिल्कुल ठीक है विकास जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: अच्छा ओके ठीक है, नमस्ते मैम।
14: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो पिंजिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
1: हम स्वागत है बोल रहे हैं रामाजी प्रसाद
0: जी। कैसन बानी?
1: हम ठीक बानी, दिनो निमन भइल बा, रात भर बरखा बरसल बा, खूब बढ़िया मस्ती आगे लगाता।
0: हाँ बारिश तो भइल बा,
1: आई रहा हवा बहुत खूब बढ़िया। तो गाना सुना दी पूरा हवा पर
0: जी, बता दी
1: सावन के महीना पवन करे सोर, दिया रे झूमे जैसे बनवा ना के मोर
0: जी जी। और गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं,
1: रेडियो रिंगजिम सब कोई सुनता, सब कोई सुनी।
0: चलिए ठीक बा, वैसे खाना उना हो गया कि ना?
1: ना तो खाना आज बना, छाना रहा पूरी खीर आलू सब्जी का सब्जी, खूब मस्ती बा खाना खाए में।
0: हाँ मौसम बढ़िया भइल बा, तो खाना भी अच्छा बने के चाहिए।
1: हाँ
0: बढ़िया बात है, फिर गाना प्ले करते हैं।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुना तो सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: Now pick it up, pick it up. Hello? Now pick your

0: Phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके 90.4 एफएम में।
5: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो
4: जी। नाम बता दीजिए अपना।
5: हम बोल रहे हैं ओम साई टेलर बंजारी रोड सोलूशन के सामने गोपालगंज से, राघव जी।
4: जी जी राघव जी, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया है, आप लोग के दुआ से। आप लोग कैसे हैं, पूरी टीम आप लोग सुनाइए
4: जी। सब कोई बढ़िया है यहाँ पे भी।
5: चलिए अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए बारिश के दिन में।
4: जी जी।
5: और मैम सॉन्ग सुनना है हमको, दिल है बेताब पिक्चर का, क्या तुम्हें खाता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाली है, यही सॉन्ग चला दीजिएगा। और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, स्पेशल मैं आपको टीम को, ठीक है?
4: ओके जी, तो गाना बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए।
5: दिल है बेताब पिक्चर मोदी का, क्या तुम्हें खाता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाली है।
4: तो क्या मुझे गा के बताएंगे ये दो लाइन?

0: बस इतना ही
1: जी। गाना तो बहुत ही अच्छा
0: जी।
1: इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ MIRMC से।
1: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
0: बस ठीक है मैम, बस हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रहा है मैम, और आपके यहाँ भी भेजे थे तो सुनने में मिल रहा अच्छा बारिश हो रहा मैम आपके वहाँ भी।
1: जी जी बारिश तो हो ही रही है।
0: जी जी मैम, हमारे यहाँ कल दोपहर 2 बजे से चालू हो बारिश, तो अभी भी बारिश हो रहा है। तो बैठे थे और फोन लगा रहे थे, हम सोचे चलो अभी टाइम हो ही गया है तो फोन लगाते, नहीं टाइम तो समाप्त हो जाएगा।
1: जी
0: जी जी मैम,
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी आज तो बारिश हो रहा तो सुनवा दीजिएगा बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और सुनवाएंगे कितने। जी बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और सुनवाएंगे आपको कितने रेडियो रिंजिम लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके मैम, धन्यवाद,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
8: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Now pick your phone up.
11: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
13: नमस्ते मैम।
12: नमस्ते,
13: कैसी हैं?
12: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए क्या कहते हैं?
13: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
12: तो क्या कर रही थी?
13: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर के बाद।
12: चलिए, अब जाके लगा है कॉल
13: जी।
12: तो नाम बता दीजिए अपना।
13: मैं शबनम से भी की बात कर रही हूँ।
12: और कहाँ से?
13: जी खाल से।
12: चलिए, तो शबनम जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?

0: मेरे साथ हो, ये वाला सॉन्ग तो मुझे भी गाना तो बहुत ही अच्छा है
1: जी मैम।
0: तो सबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: हाँ, आपको
0: ओके सबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी हाँ मैम, आप नई मन लग रही है, आप जान सकते हैं
0: जी,
1: आपका नाम जान सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
1: आप न्यू लग रही है।
0: हाँ जी,
1: पहले कभी आपको हो रही है?
0: जी जी, आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
1: मैंने बोला कि मेरे हो गई है।
0: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम
0: जी जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैम, मैं आपसे कुमारी बोल रहे हैं।
1: जी मनीषा जी, कैसी हैं?
0: मैं तो बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: अभी कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो
0: रेडियो सुन के उसके बाद से कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को फरमाई
1: थी,
0: बोल रहे हैं सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी।
1: जी तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: मैं खाना खा लिया है आप?
1: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आप खाई हैं?
0: हाँ मेरा भी हो गया है, तो गाना सुनवा दीजिए।
1: बता रही है,
0: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
1: क्या मनीषा जी, ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
0: नहीं, आप दूसरे दिन गा देंगे।
1: जी कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: जी हम आपको और भाभी मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
1: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिव्यू 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: और इतना सुनने के बाद बैताल फिर उड़ा और उसी पेड़ की डाल पर जाकर लटक गया। विक्रम ने हमेशा की तरह इस बार भी उसका पीछा किया और बैताल को अपने वश में कर कंधे पर लाद चल पड़ा और बैताल ने शुरू की एक नई कहानी। उज्जैन नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके लड़के का नाम था गुणकर। उसे एक बड़ी बुरी आदत पड़ गई थी। गुणकर की बुरी आदत थी घर से पैसा चुराना और जुआ खेलना।
1: ईमानदारी के धंधे में बेईमानी नहीं करना।
2: आओ गुणकर, राजा आओ।
3: अरे गुणकर, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सारे भाग आजमा रहे हैं, तुम भी आजमा के देखो। क्यों?
2: अरे आओ ना, आओ लगाओ।
4: मैं थोड़े से लगाऊंगा।
2: अरे नहीं, पूरे लगाओ। पूरा लगाओगे तो ज्यादा कमाओगे, एक थोड़ा लगाओगे तो धीरे धीरे सारी रकम हाथ से निकल जाएगी। आओ लगाओ।
4: नहीं, मैं तो इतना ही लगाऊंगा।
3: अरे जिद क्यों करता है? जितना लगाता है लगाने दे।
2: हाँ, क्यों नहीं? और आ जाओ, लगाओ, पूरा लगाओ।
3: 12, 15, 17 या 18? आए 17।
5: सुनिए, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लगता है साहूकार के लोग आए हैं। आज पूर्णिमा है, आप उन्हें पैसे लौटाने नहीं गए। लगता है उसी के आदमी आए हैं।
6: वही होंगे तो क्या हुआ, चुका देंगे।
5: मैं दरवाजा खोलती हूँ।
6: नहीं नहीं, तुम बैठ, मैं ही खोलता हूँ।
7: आज पूर्णिमा है पंडित, याद है कि भूल गया?
8: पूर्णिमा तक साहू जी की सारी रकम लौटा देने का वादा किया था। कहाँ रकम?
6: हाँ भाई हाँ, सब है, आप चिंता क्यों करते हैं?
9: तो चलना फिर पूरी रकम लेकर, साहू जी ने बुलाया है और कहा है अगर ना आए तो पकड़ के ले आओ।
6: अब बैठिए, पानी वानी पीजिए।
8: अरे पानी वानी, चल जल्दी कर।
6: हाँ हाँ चलता हूँ।

0: क्या हुआ?
1: कहाँ गई वो रकम?
0: यहीं तो रखी थी।
1: गुड़कर चुरा कर ले गया।
2: बहाने बनाता है, मक्कारी करता है।
3: अब नया नाटक शुरू किया है, कहता है चोरी हो गया।
1: तेरी तो
2: क्यों भाई, ये क्या हो रहा है? क्यों खींच के ले जा रहे हैं?
4: अरे साहबार से उधार लिया था, लेते वक्त तो सोचते नहीं, देते वक्त आना कहानी करते।
5: बांधो उसे और जाकर कह दो इसके घर वालों को, अगर इसे छुड़वाना है तो सारी रकम जमा करवा दें
6: और छुड़ा के ले जाए इसे।
0: साहूकार जी, ये लीजिए सारे जेवर और इन्हें छोड़ दीजिए।
6: सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अगर अपनी औरत के ही गहने देने थे तो इतनी देर किसका मुंह देख रहा था?
7: अरे भाई जाओ अब, जुआ खाना बंद करना है।
8: कहाँ जाऊँ?
9: अरे कहाँ जाऊँ, अपने घर जाओ, और कहाँ जाओगे?
10: अरे ये धर्मशाला थोड़े ही है।
7: देखा यहाँ से बहुत हो गया,
10: जाओ रा, जा, जाओ।
8: जुआ खेल रहा होगा कहीं। कितनी बार समझाया, मारा, डांटा, सब कुछ किया, पर कोई असर नहीं हुआ उस पर। और आज, आज पूरे समाज के सामने मेरी नाक काट दी उस कुल कलंकी ने।
0: गुणकर,
1: गुणकर चला जा मेरे घर से, निकल जा, आगे कभी अपना मुंह मत दिखाना। चुहा चुहा, निकल निकल जा मेरे घर, निकल जा।
11: और उस रात गुणकर घर छोड़कर चला गया। घर ही नहीं, उसने वो नगर भी छोड़ दिया। वो चला जा रहा था और ये भी नहीं जानता था कि कहां जा रहा है। तब गुणकर ने देखा कि ये संसार कितना निष्ठुर है। ये उसका घर नहीं है जहां भूख लगने पर मां थाली परोस देती है। यहां न दया है न स्नेह, बिना किए यहां कुछ नहीं मिलता।

0: क्या नाम है तुम्हारे बेटे?
1: बुनकर।
0: ये अपनी ऐसी दशा क्यों बना रखी है?
1: मुझे भूख लगी है बाबा।
0: आओ, आओ मेरे साथ आओ।

0: मुझे भूख लग रही है बाबा,
1: बहुत तेज भूख लग रही है।
2: बोलो क्या खाओगे?
1: आप तो ऐसे कह रहे हैं कि
2: बोला ना, क्या खाओगे?
1: कुछ भी बाबा।
3: अलख निरंजन।
2: ले, इसे खा ले।

0: बाबा ये क्या चमत्कार है, मेरी भूख तो मिट गई।
1: सब प्रश्न बाद में पूछना गुनकर, जाओ अंदर गुफा में जाकर विश्राम करो।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
9: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल ID radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
11: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
12: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
11: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
12: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
11: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
13: निकल

0: ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो?
1: बाबा की शक्ति। बाबा ने आज्ञा दी थी, गुनकर को चैन की नींद की जरूरत है, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
0: बाबा ने कहा उस गुफा में जाके विश्राम करो। मैं उस गुफा में गया और बाबा कहाँ है?
1: इसी द्वार से चले जाइए, बाबा आपको मिल जाएंगे।

0: ये सब क्या हो रहा है बाबा? आप कौन हैं?
1: हम साधु है और ये सब सिद्धि है, इससे अधिक जानने का प्रयत्न मत करना।
0: बाबा, अब मैं यहां आपके पास रहना चाहता हूं,
1: इसलिए कि रोज अच्छा भोजन और सारे सुख मिल सके।
0: जी बाबा।
1: नहीं, कड़ी साधना के बाद प्राप्त की उन सिद्धियों को हम योगी से व्यर्थ नहीं गंवाते। फिर भी तुम चाहते हो तो 8 दिनों मेरे यहां अतिथि बनकर रह सकते हो, उसके बाद तुम यह स्थान छोड़ना होगा।
0: मुझे स्वीकार है बाबा।
1: जाओ, महल में सेविका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
2: अलख निरंजन।

0: बाबा जी आ रहे हैं।
1: तलाक निरंजन। हाँ बुनकर, सुख से तो हो ना?
2: परम सुखी हूं बाबा। इंद्रलोक में भी इतने सुख नहीं होंगे। जिन सुखों की मैंने कल्पना भी नहीं की थी वे सुख भी।
1: बस अब ये सब समाप्त। जाओ अपने संसार में लौट जाओ। परिश्रम करो, सत्य बोलो, सबकी सेवा करो और अच्छे मनुष्य बनो।
2: नहीं बाबा, मैं वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं जिससे ये सारे सुख एक चुटकी में उपलब्ध हो जाए। मुझे गुरु मंत्र दीजिए बाबा।
1: ये विचार छोड़ दो गुनकर, ये साधना बहुत कठिन है, तुम कर नहीं सकोगे।
2: मैं अवश्य करूंगा।
1: तुम्हें बहुत कष्ट होंगे गुनकर।
2: मैं सारे कष्टों को सह लूंगा बाबा।
1: तो ठीक है, परम सिद्धि की अवस्था लंबी तपस्या के बाद दो चरणों में प्राप्त होगी। पहले चरण में ध्यान, मंत्र पाठ, योग और तपस्या।

0: तुम्हारी तपस्या का पहला चरण समाप्त हुआ गुणकर,
1: तुम सफल हुए। अब साधना का दूसरा चरण आरंभ होगा।
2: साधना का दूसरा चरण आरंभ करने के पूर्व अगर आप आज्ञा दें तो घर का एक चक्कर लगा के आ जाऊं।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा।
2: अब इन वस्त्रों में, इस हालत में घर जाना उचित नहीं है। अगर आप कहें तो मैं।
1: हाँ, क्यों नहीं। हलाख निरंजन।
2: मैं अपने माँ बहन भाई के लिए कुछ ले जाना चाहता हूँ।
1: अवश्य, ये तो अच्छे विचार है। हलाख निरंजन।
2: अब पिताजी कुछ रुपए पाकर कितने खुश होंगे।
1: हलाख निरंजन।
2: मैं आज ही चला जाता हूं, अब जल्दी लौट के आऊंगा।
3: आजकल आप कहां रहते हैं गुणकर भैया?
4: भैया आप क्या काम करते हैं?
5: गुणकर बोलो ना, तुम चुप क्यों हो?
6: माँ, आजकल मैं एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने में लगा हूं।
2: बड़ी ऊंची सिद्धि है, एक बार प्राप्त हो जाए फिर देखना।
3: अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे?
2: अरे फिर तो चुटकी बजाते ही जो तुम चाहो वो चीज सामने आ जाएगी। अगर तुम्हें भूख लगी तो भोजन की थाली आ जाएगी। अगर तुम्हें नींद आ गई तो सुंदर सा पलंग आ जाएगा।
7: सिद्धि से तुम्हारा तात्पर्य जुए से तो नहीं? ये सब कुछ, ये सारा धन तुम जुए में जीत कर तो नहीं लाए?
2: पिताजी, आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं होता? इस परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं कड़ी तपस्या कर रहा हूं।
8: इस तरह गुणकर ने अपने परिवार के साथ कुछ दिन संसारिक सुख में बिताए और फिर साधु बाबा के पास लौट आया साधना के दूसरे चरण के लिए।

0: बाबा, मेरी साधना का दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब मैं जो चाहूंगा वही होगा।
1: मुझे भूख लगी है बेटे, कुछ खाना खिलाओगे?
0: अभी लाता हूं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भोजन क्यों नहीं आया? अलख निरंजन।
2: अरे भोजन क्यों नहीं आया? भोजन क्यों नहीं आया? भोजन कहां है?
0: बाबा, मुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई?
2: बाबा मुझे जवाब दो, मुझे सिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई? जवाब क्यों नहीं देते? मुझे सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हुई बाबा?
3: इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल ने विक्रम से प्रश्न किया। अच्छा विक्रम, अब बता, गुणकर को परम सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हुई? उसने साधना के दोनों चरण पूरे किए, मंत्र पढ़े, तपस्या की, फिर वो सफल क्यों नहीं हुआ?
4: जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ
5: बेताल, गुणकर को परम सिद्धि इसलिए नहीं प्राप्त हुई क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वो अपनी तपस्या, अपनी साधना बीच में छोड़कर अपने घर चला गया था। उसे घर नहीं जाना चाहिए था। किसी भी तपस्या में सिद्धि तब तक प्राप्त नहीं होती, हम अपने लक्ष्य पर तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि हम अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित न करें। कोई भी मोह, कोई भी दूसरी इच्छा, कोई भी लालच बीच में ना आए। ऐसा किए बिना परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती।

0: ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं।
1: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
2: मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे

0: अदाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी,
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
6: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
5: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
6: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
5: कहाँ?
6: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता।
7: और आसान बनाने के लिए पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने पद से दिया इस्तीफा, उपसभापति रामवचन राय को सौंपा त्याग पत्र। नेपाल में भारी बारिश से गंडक, बागमती और कोसी नदी में भारी उफान, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहराया। और बैंकों की हड़ताल स्थगित होने से लोगों को मिली राहत, सभी सार्वजनिक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में आज हुआ सामान्य कामकाज। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पशुधन बीमा सेवाओं को डिजिटल और आसान बनाने के लिए पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि पशुपालकों और किसानों के हित में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। पोर्टल के लाभ बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपना आवेदन पोर्टल पर डालते ही निष्पादन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।
8: किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की जो आजीविका है उसको सुरक्षित करने के लिए, सारी तकनीकी को सुगम बनाने के लिए, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस बीमा पोर्टल के लॉन्च होने के बाद अब किसानों को दरखास्त लेके कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, वो एक बार आवेदन पोर्टल पर डाल देंगे और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती चली जाएंगी।
7: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजी जाएगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान के तहत राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों के साथ डटकर खड़ी रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि देश भर में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
9: जो प्रयास किए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खाद की कोई कमी नहीं आई, खाद की व्यवस्था करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। लेकिन हम ये जोर जरूर दे रहे हैं कि

0: ना जरूरी है उतने खाद का उपयोग, संतुलित उपयोग, उसके लिए खेत बचाओ अभियान हम फिर चलाएंगे, ताकि सॉयल हेल्थ कार्ड में जो सिफारिश की है माटी में जो तत्व कम है उसके आधार पर कितना खाद चाहिए उतना खाद डाला जाए तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज इस्तीफे का पत्र उपसभापति रामवचन राय को सौंप दिया। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर श्री सिंह ने चार बार विधान परिषद के सभापति पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 33 सालों से लगातार वे विधान परिषद के सदस्य हैं और आगे भी सदस्य के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में वे सक्रिय रहेंगे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट से प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों को खारिज किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अनुज सिंह के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले तथ्य प्रस्तुत करें।
2: जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं उनके आरोप से कोई बात तथ्य सच है ये मानना ठीक नहीं है। जन स्वराज में कोई भी ऐसा जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला संगीन मामला हो उसको उम्मीदवार बनने का उसका सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास कोई FIR हो, कोई उसकी जानकारी हो, कोई उसमें तथ्य हो, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो तो जरूर हम लोग के भी संज्ञान में बात लाइए।
1: नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, सुपौल, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज और सुपौल स्थित बीरपुर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक, बागमती और कोसी नदी में उफान के कारण तटवर्ती और निचले इलाकों में पानी फैल गया है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके कारण बघा प्रखंड के चकदहवा, बीन टोली, झंडू टोला और बंगाली कॉलोनी समेत विभिन्न इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलाया जा रहा है।
3: नेपाल में ऊपरी क्षेत्र में हुई बारिश के कारण गंडक नदी में डिस्चार्ज बढ़ रहा है। आज लगभग 4,80,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज गंडक बराज पे चल रहा है और लगातार हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी लोग एकदम मुस्तैद हैं।
1: इधर हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि आज दोपहर 1 बजे कोसी बराज से 1,81,805 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि नेपाल स्थित बराह बराज से 1,08,600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दोनों जगहों पर कोसी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। जिला प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, निर्मली और मुरौना अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। गंडक नदी में उफान से गोपालगंज और सारण जिले के कई इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण और गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम का मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हुई है, जबकि दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, रोहतास, कैमूर समेत राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है स्वच्छ भारत मिशन पर एक रिपोर्ट।
7: एक घर में शौचालय बना, फिर दूसरे घर में, देखते ही देखते छोटी छोटी ये पहल एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। आज 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय इस बदलाव की गवाही दे रहे हैं और वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत ने खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य हासिल किया।
8: आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? मैं नहीं जानता हूँ मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूँ। मैं गरीब परिवार से आया, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत के हिस्से हुई। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? बेचारी गांव की मां बहने अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं वो शौच के लिए नहीं जा पाते। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते?
7: आंकड़ों के पीछे मधुबाला देवी जैसी लाखों महिलाओं की अपनी कहानी है। सीतामढ़ी की मधुबाला के लिए घर में शौचालय सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा बदलाव है।
9: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान जिले को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं यह अभियान नारी सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। घर घर शौचालय बनने से महिला को आत्मसम्मान का अनुभव करा रही है। वहीं स्वच्छता एक मिशन के रूप में सीतामढ़ी में चल रही है। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी में दूरगामी सोच को दर्शा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को कोट कोट धन्यवाद।
7: एक शौचालय से शुरू हुई सुविधा करोड़ों परिवारों तक पहुंची। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को आदत, स्वास्थ्य को प्राथमिकता और सम्मान को जीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव दर्ज किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट के साथ राहुल कुमार।
1: देश आज सीमा पार पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी अड्डों पर लक्षित कार्रवाई की थी। 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद यह कार्रवाई की गई थी। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है।
10: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के बीच बैठक के बाद आज से प्रस्तावित 3 दिवसीय बैंकों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
11: 5 दिनों के कामकाजी सप्ताह की मांग पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन करने का आश्वासन मिलने के बाद बैंक कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरेश विक्रमादित्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 4 मुद्दों पर सरकार के साथ सहमति बन गई है। अन्य मुद्दों पर भी सकारात्मक विचार किए जाने का आश्वासन मिला है।
12: जिन चार मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने स्ट्राइक कॉल दिया था उसमें से ज्यादातर मुद्दों पर कंसेंसस बन गया। दूसरा और भी हमारा जो रेसिडुअल इश्यूज था जो पुराने वार्ता के हिसाब से लागू होना था उस पे वार्ता तेज की जाएगी और 5 डेज पे एक हाई लेवल कमिटी बनी है। अब इस पे थोड़ा त्वरित कार्रवाई करने का हम लोगों को भरोसा दिया गया कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगी, तो इसलिए देखते हुए हम लोगों ने इस हड़ताल को वापस लेने का घोषणा किया।
11: हड़ताल स्थगित किए जाने की घोषणा के बाद प्रदेश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में आज बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चली। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह शुल्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू होना है। इंडोनेशिया में आयोजित ENLIT एशिया 2026 समिट में विद्युत वितरण, ग्रिड आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर विचार विमर्श किया गया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। श्री कुमार ने कहा कि भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक, डिजिटल और स्मार्ट विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मधुबनी जिले के राजनगर में सकरी चीनी मिल प्रबंधन द्वारा एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को गन्ना की उन्नत खेती और उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों की जानकारी दी गई। अरवल जिले में वामपंथी दलों से जुड़े संगठन आईसा और RYA ने इनकलाब मार्च निकाला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भागलपुर में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलन सह संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। अररिया जिले के सभी प्रखंड अस्पतालों में आज से निःशुल्क ECG जांच सेवा शुरू हो गई है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गामा से पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों उसका हथियार लहराता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पशु बीमा सेवा को डिजिटल और आसान बनाने के लिए पशुधन बीमा योजना पोर्टल की शुरुआत की। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने पद से दिया इस्तीफा। उपसभापति रामबचन राय को सौंपा त्याग पत्र। नेपाल में भारी बारिश से गंडक, बागमती और कोसी नदी में भारी उफान। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहराया। और बैंकों की हड़ताल स्थगित होने से लोगों को मिली राहत। सभी सार्वजनिक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में आज हुआ सामान्य कामकाज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
15: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
14: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
15: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
14: कहाँ?
15: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
16: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
17: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
16: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
17: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
16: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर NH 27 साधु चौक गोपालगंज
17: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
18: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय 10:00 से 2:00 PM तक।
10: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
12: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
13: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
14: 90.4
15: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: ऑलराइट।

Are you with me? Can you feel it? Then let's go for it.

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99 27-9-82।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
12: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
12: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
12: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
13: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
14: ऑलराइट।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे मुन्नी, तुम आ गई। चल मेरे कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: 9.4 फ्रीक्वेंसी पर
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: ऑलराइट।

0: जोकर।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
11: दिल्ली उच्च न्यायालय आयोजित करने जा रहा है वरिष्ठ निजी सहायक और निजी सहायक परीक्षा 2026। वरिष्ठ निजी सहायक के कुल 117 पद उपलब्ध हैं, जबकि निजी सहायक के कुल 33 पद उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय की वेबसाइट। वेबसाइट का पता है www.delhihighcourt.nic.in www.delhihighcourt.nic.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वरिष्ठ सुपरिंटेंडेंट, काउंसलर, कनिष्ठ इंजीनियर, नर्सिंग सहायक, कनिष्ठ ऑफिस सहायक, कनिष्ठ सहायक MS और परिचारक। कनिष्ठ ऑफिस सहायक के 2 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 10 पद उपलब्ध हैं, जबकि अन्य सभी पदों पर एक एक रिक्ति ही उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में प्रशासनिक अधिकारी का पद भरा जाना है। वेतन, भत्ते, अन्य शर्तें समय समय पर कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ही रहेंगे। इच्छुक और पात्र अधिकारी काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट जे में इस पद के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट dor.gov.in/vacancies। विज्ञान एवं

0: प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए महिला शोधकर्ताओं हेतु बायोकेयर कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में महिला शोधकर्ताओं की जैव प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रति भागीदारी को बढ़ावा देना है। फेलोशिप अनुदान पात्रता मानदंड दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी डीबीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है dbt.gov.in। इसके अलावा आरसीबी की वेबसाइट पर भी जानकारियां उपलब्ध हैं। पता है rcb.res.in। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक राजभाषा के पद को भरा जाना है। इस पद से संबंधित विस्तृत जानकारियां यथा शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, आयु सीमा, वेतन, तैनाती का स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं रोजगार समाचार पत्र का 19 से 25 सितंबर 2026 का अंक। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
13: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
14: भरोसे वाले से लेंगे,
13: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
14: और कीमत भी।
13: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
15: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
16: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
17: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
18: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
17: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
17: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। दोनों देशों का 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 72,772 पर बंद। एशियाई खेलों में भारत ने 8 और पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर ने रजत और श्रीशंकर मुरली ने लंबी कूद, गुलबीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ तथा ईशा सिंह ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित टीमें गठित करने का आग्रह किया। भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण और केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। आज हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पोत निर्माण, आधुनिक बंदरगाहों के विकास, खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए कृषि नवाचार, लॉजिस्टिक्स के विस्तार, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम करने, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा फिनटेक क्षेत्र में अपने सहयोग का विस्तार करने जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर भी चर्चा की है।
2: एक्सपेंडिंग आवर कोऑपरेशन इन द फिनटेक सेक्टर।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025-26 में 101 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, जबकि गैर तेल व्यापार 2025 में 76 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। दोनों पक्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार में 200 अरब डॉलर के साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश ने पश्चिम एशिया में जारी संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बावजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई चुनौतियों का अब तक सफलतापूर्वक सामना किया है। कोलकाता में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और ये सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति में आए व्यवधान नियंत्रण से बाहर न हो। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। संवाददाताओं से श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने अपने अपने राज्यों के बड़े हिस्से में सूखा घोषित किया है।
4: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो भाभी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। एक रिपोर्ट।
6: पशुधन बीमा पोर्टल से देश में पशुधन बीमा कार्यक्रमों के बेहतर तालमेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे पूरे देश में पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराए जा सकेंगे। श्री सिंह ने कहा कि ये पोर्टल किसानों की आजीविका की सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है।
7: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी से पशु की मौत हो जाए तो उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ता था और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए यह बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के सभी जिलों में चलाया। आज उसको आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
6: ये पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे के कारण देश के माल ढुलाई लागत में कमी आई है। श्री गडकरी नई दिल्ली में एक निजी मीडिया सम्मेलन में बोल रहे थे।
8: So if you want to make more export,
9: अगर हमें निर्यात को बढ़ाना है तो हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा। आर्थिक संस्थानों द्वारा किए गए विशेष शोध और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर तथा IIT मद्रास की एक रिपोर्ट से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत में 6% की कमी आई है। पहले ये लगभग 16% थी और एक वर्ष पहले मिली रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के बेहतर निर्माण के कारण इसमें 10% की कमी आई है।
8: 6% 1 year before.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 2,000 रूपए से अधिक के UPI लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये शुल्क 15 अक्टूबर से प्रभावी होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से जनगणना के लिए समय निकालने का आग्रह किया। कल मन की बात कार्यक्रम में किए गए अपने आह्वान को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनगणना में भाग लेना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस भागीदारी से देश के भविष्य की सही तस्वीर सामने आती है। भारत आज सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। 28 और 29 सितंबर 2016 की रात सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई 18 सितंबर को उरी आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसमें 18 जवान शहीद हुए थे। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।
10: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
11: भारत के सहकारी क्षेत्र में 8.5 लाख से अधिक पंजीकृत समितियां शामिल हैं, जिनसे 32 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यह क्षेत्र खेती के ऋण, डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन जैसे क्षेत्रों में फैला है और ग्रामीण भारत के लगभग 98% हिस्से को कवर करता है। साल 2021 तक इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। इसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के पास थी, जो अलग अलग विभागों और राज्यों में बटी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुलाई 2021 में भारत में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस तैयार किया, यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि जमीनी स्तर पर वास्तव में कितनी समितियां काम कर रही हैं। इसके अलावा बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नए नियम बनाए गए। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण किया गया। साथ ही सहकारी बैंकों को सीधे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पैसों से भी जोड़ दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि यह लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
10: आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। भारत में आज 8 लाख यानी 800,000 सहकारी समितियां हैं, यानी दुनिया की हर चौथी सहकारी समिति आज भारत में है।
11: भारत टैक्सी भी सहकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। ये सहकारी मॉडल पर आधारित एक चालक केंद्रित गतिशीलता मंच है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए चालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। भारत टैक्सी में शामिल होने के बाद अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा करते हुए राजीव कुमार नाम के एक चालक ने सभी साथी चालकों से भारत टैक्सी को अपनाने और सहयोग के माध्यम से समृद्धि के इस मिशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
12: मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा, ड्राइवर भाई, सारथी भाइयों से, कि सभी सहकार भारत टैक्सी से जुड़े और इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें। सहकारिता का यह है सहकार से समृद्धि की ओर, तो इसको भी समझने की जरूरत है। जो रीजन है कि लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहकारिता में अपनी भागीदारी निभाई है।
11: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को समावेशी विकास के इंजन के रूप में बदल दिया है। जैसे जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और मजबूती को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनू एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। इससे पहले यात्रियों को पेचिंग या इंचियोन जैसे स्थानों पर विमान बदलना पड़ता था और यात्रा में लगभग 13 से 18 घंटे लगते थे। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस सेवा की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में नई दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरिल सुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबद्ध संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा है। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े हैं। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 3:36.72 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.14 मीटर के शानदार थ्रो के साथ रजत पदक देश के नाम किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। सेंसेक्स 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। 1124 अंक घटकर 72772 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 360 अंक गिरकर 22780 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत तंत्र बनाने का आह्वान। प्रत्यर्पण पोर्टल शुरू। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार उपायों को लागू करने पर सहमत। केंद्रीय दल सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र का दौरा करेगा। पशुधन बीमा दावों और निगरानी को सुव्यवस्थित करने के लिए पशुधन बीमा पोर्टल शुरू। भारत और मंगोलिया के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9.
14: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
15: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
16: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
15: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
16: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
15: कहाँ?
16: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
17: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
18: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
17: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
18: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
17: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
18: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35876 या 95 999 27 982।
19: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
18: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
19: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
18: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
19: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
20: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
18: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
19: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
18: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
19: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
18: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
19: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
18: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
19: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
21: ठक ठक।
22: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
23: अच्छा मिला ही नहीं।
22: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
23: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
22: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
23: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
25: माँ अब घबराइए नहीं,
1: चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक नदी का लिया जायजा, डुमरिया घाट तक पहुंचकर की समीक्षा। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। महावीरी अखाड़ा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। शहीद आजम भगत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ आज बाढ़ संभावित इलाकों का समीक्षा करने के लिए पूर्वी चंपारण आए हुए थे। इस दौरान वहां से उन्होंने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण क्षेत्र के गंडक नदी के इलाकों का मुआयना किया, बाढ़ प्रभावित गांव क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद डुमरिया घाट पर पहुंचकर नदी का जायजा लिया। उनके साथ डिप्टी CM और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद राधा मोहन सिंह, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही गोपालगंज के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी डुमरिया घाट पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर लगाने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,
21: से पानी बढ़ रहा था, लोगों की परेशानी देखने आए थे। अब तो पानी घटना शुरू हो गया है। 5,43,000 क्यूसेक तक वाल्मीकि नगर बराज पे रिचार्ज आया था, अब घट के वो 4.25 लाख तक हो गया है। यहाँ भी अभी जो है, हम समझते हैं मुश्किल से 10 इंच और एक बार फिर से बढ़ सकता है, लेकिन स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। विभाग के सभी अधिकारी मुस्तैद हैं और कहीं कोई दिक्कत, आपने देखा जिला प्रशासन के लोग दोनों जिला के मौजूद हैं।
4: इधर गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर निचले इलाके के लोग परेशानी में हैं। बहुत सारे गांव में पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है जो आज नदी के रास्ते गुजरेगा। पानी के आने से रामनगर, जगीरी टोला और मेहंदिया का सड़क संपर्क टूट गया है। कई परिवार बाढ़ से घिर गए हैं। ग्रामीणों ने नाव और राहत बचाव की व्यवस्था तेज करने की मांग की है। वहीं जगीरी टोला में एक स्कूल पानी में डूब गया है। आज कई फीट पानी के रास्ते शिक्षक स्कूल पहुंचे और मुश्किल से अपनी ड्यूटी की। इसको लेकर लगातार निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अपील भी किया जा रहा है। इस संदर्भ में गोपालगंज के अंचलाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
25: बंगाल में चक्रवात आने से बारिश का लेवल बढ़ गया है, जिस कारण से नेपाल द्वारा 3 से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। परंतु घबराने की बात नहीं है, कल दोपहर तक ये पानी हमारे एरिया को हिट करेगा। हम स्थानीय लोगों से अपील किया जा रहा है, जो भी बांध के निचले स्तर पर रहते हैं वो लोग अब बांध के निचले स्तर पर आ जाए, और जितने लोग मवेशी पालक हैं अपने मवेशी को लेकर नदी की ओर ना जाए, क्योंकि अचानक से कभी पानी भर सकता है नदी में और अप्रिय घटना घट सकती है। साथ ही जो नाव चालक है उनसे भी अपील की जा रही है, वो लोग अपने नाव को लेकर के नदी के उस पार खेती करने ना जाए, क्योंकि जब भी पानी का स्तर बढ़ेगा अचानक से तो अप्रिय घटना घटने के चांसेस है। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदया द्वारा भी नदी पे नाव चलाने हेतु 163 की कार्रवाई की गई है। अगर कोई भी नाव चलाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाए। साथ ही इसके अलावा जब भी वर्षा बढ़ती है और पानी नदी में आता है तो सांप कटी की घटनाएं भी अक्सर देखने को मिलती है। तो आपके माध्यम से हम सभी जो मेरे प्रखंड वासी हैं उन लोगों को अपील करते हैं कि अगर कोई भी ऐसे सांप कटी की घटना सामने देखने को मिलती है तो किसी क्रम में नहीं रहेंगे, तुरंत स्थानीय PHC केंद्र अथवा सदर अस्पताल में
5: जाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भरपूर मात्रा में एंटी वेनम की व्यवस्था की गई है, अगर कोई ऐसी घटना घटे तो उनकी मालजाल की सुरक्षा की जा सके।
6: महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के द्वारा आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझवलिया विजयपुर में सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों एवं छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित संबल एवं सामर्थ्य घटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 109 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के संदर्भ में भी महिलाओं और बच्चियों को जानकारी दी गई। खेल विभाग बिहार सरकार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन गोपालगंज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय जिला स्तरीय वार्षिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का आज भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिवम कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी और खेल प्रशिक्षक तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। 4 दिवसीय यह जिला स्तरीय प्रतियोगिता 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न खेल स्थलों पर आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में भाग ले रहे हैं। हथुआ में महावीरी जुलूस के दौरान एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मृतक रूपंचक गांव का बताया जा रहा है। घटना भी रूपंचक गांव की ही है, जहां मध्य रात्रि में हिमांशु यादव को चाकू से गोद कर जख्मी कर दिया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर प्रभारी SDPO राजकुमार शाह ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज शव परिजनों को सौंप दिया है और इस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक एक बिंदुओं पर जांच हो रहा है। CCTV फुटेज इत्यादि की भी जांच की जा रही है। इस मामले में हिमांशु यादव की हत्या क्यों हुई, इसका कारण क्या था और कौन लोग हत्या करने में शामिल थे, इसको लेकर अब तक अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और इलाके में सनसनी है। आज शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद हिमांशु के शव का अंतिम संस्कार हुआ। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश भी है और लोग पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बैकुंठपुर के बनकट्टी दक्षिण गांव में मैनेजर शाह के मकान पर सरकारी पानी टंकी से कई सारे ईंट उनके करकट नुमा मकान पर गिर गए, जिससे बाल बाल उनके घर में रहने वाले बच्चों की जान बची। इसको लेकर अब उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आवेदन देते हुए सहायता की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पानी टंकी उनके घर के ऊपर बना है और जर्जर स्थिति में है। आए दिन यहां से पानी उनके घर पर गिरते रहता है। आंधी तूफान में टंकी का दीवार ढहकर उनके घर पर गिर गया, जिससे बाल बाल उनके बच्चों की जान बची। उन्होंने प्रखंड स्तरीय प्रशासन को आवेदन देकर नुकसान की भरपाई और पानी टंकी को वहां से स्थानांतरित करने की मांग की है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन उनके आवेदन पर मामले की जांच कर रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर नगर थाना चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला प्रशासन की ओर से माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ ने माल्यार्पण कर शहीद भगत सिंह के अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान को नमन किया। उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद आजम को श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद भगत सिंह का त्याग, साहस और राष्ट्र प्रेम देशवासियों विशेषकर युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उपस्थित अधिकारियों ने उनके आदर्शों और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए उनके विचारों से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। 2 अक्टूबर को प्रत्येक जिला में महिला जदयू के द्वारा जीविका के 20 साल बेमिसाल होने पर नीतीश संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर गोपालगंज में भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि इस बार जीविका में महिलाओं की उपलब्धि को लेकर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने बैठक की जिसमें महिला प्रकोष्ठ की तमाम कार्यकर्ता शामिल हुई और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों का विचार विमर्श किया गया। गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक जाने वाली ट्रेन को रेलवे ने अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 1579 और 1580 जो गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक चलती है, इस गाड़ी को 24/10/2026 तक के लिए रेलवे ने निरस्त कर दिया है। इसके वजह से थावे रेलखंड से गोरखपुर और पटना जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। मीरगंज थाना की पुलिस ने 164 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब तस्कर मंजीत कुमार मांझी को गिरफ्तार कर लिया। यह नौतन जिला सिवान के विश्रामपुर गांव के ब्रिजनाथ मांझी का पुत्र बताया जा रहा है। कार और शराब को पुलिस ने जब्त कर आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पूरी रात जगह जगह पुलिस ने वाहनों की जांच की। इसको लेकर असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने स्वयं भी कई इलाकों का दौरा किया और जांच में लगे पुलिस कर्मियों की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिया। ग्राम पंचायतों में स्थानीय जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप समेकित विकास कार्य योजना तैयार करने को लेकर कौशल विकास केंद्र में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिलाधिकारी समीर सौरभ ने गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर विशेष जोर देते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जी रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की समेकित योजना तैयार की जानी है। इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका तथा मौसम एवं आपदा और न्यूनीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत चेक डैम, तालाब, ग्रामीण सड़क, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय भवन, कौशल केंद्र, भंडारण संरचनाओं सहित अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं तथा बाढ़ से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। गंडक नहर में डूबे एक किसान का शव धर्मपुर पुल के पास से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि गोपालपुर के पुर खास गांव के समीप नहर में 84 वर्षीय भोज कुशवाहा डूब गए थे। 2 दिनों तक SDRF की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद तीसरे दिन धर्मपुर नहर पुल के पास शव बरामद किया गया। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वजनों ने शव की पहचान की है। पोस्टमार्टम के बाद आज शव परिजनों को सौंप दिया गया। ग्रामीणों के सहयोग से किसान का अंतिम संस्कार भी किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक नदी का लिया जायजा, डुमरिया घाट तक पहुंचकर की समीक्षा। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। महावीरी अखाड़ा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। शहीद आजम भगत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
8: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
7: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
8: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
7: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
8: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
7: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
9: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939951551 पे।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
26: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
27: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
28: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
27: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
28: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
27: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
28: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
27: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
28: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
29: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
30: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
31: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
29: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
32: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका। जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं। श्रृंगार वाटिका,
0: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
1: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ। समय 9:25 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम दर्शाना है यानी टाइप करना है, और हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे सेंड करना है। फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं या किसी को सुनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, जुड़ गए हैं, कैसे हैं। हम भी ठीक हैं और एक सॉन्ग सुनना है, फिल्म है जंजीर, रफ़ी जी और लता जी का शोर है और सॉन्ग है दीवाने हैं दीवाने को ना, डेडिकेट आप लगाए थे सभी मित्रों। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। तो चलिए आपकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अगले मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं बिट्टू कुमार सिटी बेगूसराय, मेरा गाना है। बिल्कुल आपका गाना है तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश बिल्कुल पूरी करेंगे। यहाँ पे अगले मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि जय महाकाल, मिथुन शर्मा बेंगलुरु से गाना सुनना चाहते हैं। गाने का बोल है उसका मत बन जाना, या उसका मत बन जाना जियोगी। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश यदि है तो पूरा करेंगे, पुराने होंगे तो ही। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं रंजीत कुमार शर्मा विद माई वाइफ सीमा शर्मा, मुझे सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और साथ में आपकी वाइफ की भी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना पतली कमर लंबे बाल, सुरेश साहजी त्रिपुरवा से मैसेज किए हुए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है सुरेश साहजी। और आगे मैसेज, सोनू भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम अंकुश कुमार गोपालगंज से, बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और आप साधारणतः गाने की फरमाइश करें बिल्कुल पूरी करेंगे हम, न आप भजन की फरमाइश करते हैं तो आप

रात कली एक ख्वाब में आई। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। शगीर अंसारी जी तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं और डेडिकेट करते हैं दिलप्राम जी को। तो बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी की जाएगी, आपकी भी फरमाइश पूरी की जाएगी। फिलहाल हम वीरेंद्र गुप्ता भैया जी के फरमाइशों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला फरमाइश उन्हीं का प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो रमशीम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और भी हम सभी वीरेंद्र गुप्ता भैया जी की फरमाइश सुन रहे थे सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यदि आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें तो हमारे पास केवल पुराने गाने की फरमाइश करें, तभी आपकी फरमाइश हम प्ले कर पाएंगे और आप सुन पाएंगे, क्योंकि रात्रि का कार्यक्रम है। आप पुराने गाने की फरमाइश करें। आगे मैसेज जो दो पहुँचे हुए थे और उन मैसेजों में नए गाने की फरमाइश पहुँची है, जिसके वजह से इनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं रंजीत शर्मा जी की, और इनके तरफ से लाइन लिखा गया है, तड़प के देखो किसी की चाहत में तो पता चलेगा कि इंतज़ार क्या होता है, यूं ही मिल जाए कोई भी ना चाहे तो कैसे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। बिल्कुल अच्छी लाइन। और इनके तरफ से गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है, जिंदगी जहर बनाओ लूँ तो सनम बेवफा हो गई लू हो, पवन सिंह का है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आप सब परिवार एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमशीम 94.4 एफएम पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम 94.4 FM पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे सुरेश शाह जी की, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं पतली कमर लंबे बाल, तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। कुछ मैसेज पहुंचे हुए देखा जाए फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है ललीपॉप लगे लो, लेकिन आप कौन है अपने तो परिचय दे। आगे मैसेज लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया नमस्ते, MD नौसाद दरभंगा बाजीतपुर से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। MD नौसाद जी बने रहे हमारे साथ और गाने का बोल है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, तो आप बने रहे हमारे साथ। मिथुन शर्मा जी आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर सॉन्ग में सत्यम जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी प्लेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मैं भी जुड़ चुका हूँ, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है फिर से रिपीट किया गया लॉलीपॉप लगे लो, तो आप कौन है अपना परिचय और कहां से मैसेज कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को कहां से सुन रहे हैं ये तो बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा कार्यक्रम आप यहां से सुन रहे हैं। तो आप बताते हैं तो आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुरेश जी के गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के गाने सुन रहे हैं हम सब रेडियो रेमसेम 94 एफएम पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश की। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और जो भी सुरतागढ़ मैसेज किए हुए हैं स्थिर हैं, आपकी फरमाइश एक करके पूरी की जा रही है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। प्रणाम भाई कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक है। सुपर गाना बा, बिल्कुल सुपर गाने की फरमाइश किए हुए हैं सुरेश शाह जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। मेरा नाम है मोहित गुप्ता, मुजफ्फरपुर से हूं और पुणे से सुन रहा हूं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे मोहित गुप्ता जी। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और सफरोज अली के तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है किशोर कुमार जी की आवाज़ में। गाने का बोल दिया गया है, कभी बेकशी ने मारा। तो प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया ख़त्म और ब्रेक बाद में आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि हाय सुनो सर, मैं सुरभि फ्रॉम गोपालगंज से और सॉन्ग सुनना है, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सॉन्ग की फरमाइश तो पूरा करने की खुशी से आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। बुलेट चौधरी जी बढ़रिया थाना क्षेत्र 3 खड़िया से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि ओहो मोहित जी, आपके द्वारा फरमाए गए गाने हम नहीं पूरा कर सकते हैं। पहले जो गाने के फरमाइश किए हुए हैं उन गानों को प्ले करने की कोशिश रहेगी, लेकिन अभी जो बता रहे हैं उस गाने का फरमाइश हम कतई पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो सर, मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाने की कोशिश है और एक एक करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी वो फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और यहाँ पे गाने की फरमाइश करते हैं मिथुन शर्मा जी। गाने को चेंज करते हुए गाने का बोल देते हैं, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया। प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

रेडियो एम जी 94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का हार है। आगे मैसेज पहुंचे हुए हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। गाने की फरमाइश करते हैं शगीर अंसारी जी तेजपुरा शाम से और डेडिकेट करते हैं दिलीप राम जी को। तो चलिए दिलीप राम जी आप एंजॉय करें और साथ में हम सब भी हैं, सुनते हैं

रेडियम जिम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और काफी प्यारा सॉन्ग रातें खली एक ख्वाब में आई। फिर आगे गाने की फरमाइश पहुंचे हुए तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं यहाँ पे MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से मैसेज किए हुए हैं तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी यहाँ पे एक ही करके फरमाइश पूरा करने की कोशिश है जो भी श्रोतागण मैसेज किए हुए हैं। अभी तो मेरे पास बहुत कम समय है तो चलिए गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: हाँ जी खबर पक्को है।
1: कमल के गाने सुन रहे हैं हम सब रेडियो रूम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा
2: दुश्मनी लड़ने का मतलब है।
1: और आगे मैसेज पहुंचे हुए ओम प्रकाश गुप्ता जी सर नमस्ते कैसे हैं आप शौंग छूले छूले आ मुझे छूले महानता मूवी से तो स्वागत है और कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चुका है तो अंतिम गाने प्ले करना है और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय आगे इजाज़त नहीं दे रहा है। आगे मैसेज हमारे पास सभी कई हैं जो गाने की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है और आग्रह है कि आप कल जुड़े हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश हम प्ले कर सकें। आगे मैसेज अंतिम गाने प्ले करते हैं सुरभि की और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है भोली से सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय। चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले दिन तब तक आप इंजॉय करते रहें रेडियो रमछिम 94.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से नमस्कार।
3: फिर
4: छोड़ कर लंच लेने जा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं लंच का टाइम हो गया।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, उससे निपटने की कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, मानव अधिकार, आतंकवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियों को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय तथा पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन शामिल है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में मदद करेगा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों के समय पर कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति व्यक्त की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने के लिए ऊर्जा, उद्योग, बुनियादी ढांचा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए टीमें भेजेगी। नई दिल्ली में रबी फसल अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। सरकार ने आज नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पशुधन बीमा सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुलभ बनाना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग आयोग की 70वीं बैठक में वेल और अन्य समुद्री स्तनधारी जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के हुबार्ट में आज से शुरू हुई 5 दिवसीय बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री स्तनधारी जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच लगातार सहयोग जरूरी है। भारत और मंगोलिया के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली और उलान बटार के बीच नियमित उड़ान शुरू होने से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा का समय करीब 5 घंटे रह जाएगा। मंगोलिया की हुनु एयर द्वारा संचालित ये सेवा हर सोमवार को उपलब्ध होगी। सीधी विमान सेवा से पर्यटन, चिकित्सा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आवागमन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज भी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखा। निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने आज अपने खाते में 8 और पदक जोड़े। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल मिलाकर 45 पदक जीत चुका है। इनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर पारुल चौधरी को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यशवीर सिंह और कांस्य पदक हासिल करने पर रोहित यादव को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सभी खिलाड़ियों को भविष्य में और अधिक सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय आरएस रघु। Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi. The conference deliberated upon the seven pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts in recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said the government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shahzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted, more than 100 FIRs were registered and 350 individuals were arrested across 15 states. He said, at the same time, the government declared Shahzad Bhatti network a terrorist organization under Unlawful Activities Prevention Act UAPA. India and the UAE have agreed to take steps for the timely implementation of initiatives relating to settlement of trade in local currency, integration of payment and messaging systems and central bank digital currencies. The two sides reached the agreement during the 14th meeting of the India-UAE High-Level Joint Task Force on Investments in Mumbai today. It was co-chaired by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Managing Director of Abu Dhabi Investment Authority Sheikh Hamid bin Zayed Al Nahyan. Addressing media after the meeting, Mr. Goyal said India has set a target of raising its total exports of goods and services to $1 trillion this year from $863 billion last year. He said the two countries aim to take bilateral trade to $200 billion by 2032.
3: The Comprehensive Economic Partnership Agreement is now 4 years old. We have doubled our bilateral trade to $100 billion and have set an ambitious target to double it to $200 billion by 2032. The UAE believes in India. They have already invested $25 billion and is the seventh largest FDI source. The ultimate objective of taking investments from UAE to $100 billion in the years to come.
2: The center will dispatch teams to Karnataka and Maharashtra to assess the drought situation in the two states. Talking to reporters in New Delhi today, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan said the governments of Maharashtra and Karnataka have declared drought in large parts of their states. He said a central team will be sent to Karnataka on 3rd October to assess the drought situation. The Agriculture and Farmers Welfare Minister today addressed the National Agricultural Conference Rabi Campaign 2026 in the national capital today. He called upon states to complete preparations for the Rabi season through coordinated planning, scientific assessment and close field level monitoring. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan today with athletes making their mark across shooting, cricket, kurash and boxing. The country added 8 more medals to its tally while the men's cricket team advanced to the semifinals. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw with Yashveer Singh clinching silver and Rohit Yadav bagging the bronze medal. Commonwealth Games bronze medalist Yashveer Singh delivered a personal best of 85.72 meters to secure the silver. India's Rohit Yadav completed the podium with an effort of 84.35 meters. Sri Shankar Murli clinched the silver medal in the men's long jump, recording a best effort of 8.07 meters defending his silver at the previous games. Athlete Gulbir Singh won his second silver medal at the ongoing games, finishing runner-up in the men's 1,500 meter event. In shooting, Isha Singh won the silver medal in the women's 25 meter pistol individual event. Parul Chaudhary won her second bronze medal at the games, clocking 15 minutes 14.61 seconds in the women's 5,000 meter event. Athlete Vidya Ramraj bagged bronze in the women's 400 meter hurdles, setting a new national record in the process. India also secured a bronze medal in kurash with Pinky Badhara finishing third in the women's under 78 kilogram category. In women's boxing, Olympic medalist Lavlina Borgohain and Priya Ghangas have assured India of 2 more medals. India currently 12th in the Asian Games medal standings. And that is the end of this news bulletin.
4: रात क्षेत्रीय न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। आप सब सुन रहे बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: झेला।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: इतना सवाल लेके बार पूछ ले बू, पहले आपन बताओ तो हम आपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताए, इशारा के बाद इशारे में समझ ली है।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का. तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911. जी हाँ, 8029994911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश.
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में. नाम बता दीजिए.
4: मैं दीपक मेन ग्राम मध्य सज्जनगढ़ से बोल रहा हूँ.
5: जी नाम क्या बताया?
4: दीपक.
5: दीपक. अच्छा दीपक जी, क्या हाल चाल है?

0: मक्का कट रही है इस जगह, बस मजदूर आगे पीछे कर रहे हैं और क्या।
1: अच्छा,
0: मजदूर लग रहे हैं खेत में भी।
1: मौसम कैसा उधर का?
0: मौसम मैम बदल मदल हो रहा है, पानी गिर सके। और आपके इधर?
1: हमारे यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, बारिश हो रही है।
0: जी मैम, पानी नहीं गिरता तो बढ़िया है। आज मैम सोयाबीन खाए, मक्का कट जाएगी, नहीं तो मजदूर ऐसे जाएंगे। 500 रुपए गए हैं मैम।
1: जी तो फिर क्या है आज की आपकी फरमाइश?
0: फिल्म का नाम है सपने साजन के, और गाने के बोल है कभी तेरे प्यार में, कभी भूला कभी याद किया।
1: एक बार और बता दीजिए।
0: कभी भूला कभी याद किया, जेगी शराब की मूवी है, जेगी शराब की।
1: जी जी, क्या ये गाना मुझे दुल्हन गा के बताएंगे आप?
0: तेरे इंतजार में कभी भूला कभी याद किया।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
0: हाँ, मेरे मित्र है ना सुनील साहू मकसूदनगढ़।
1: जी जी,
0: उसको उनको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं, और मैम उसने ही मुझे ये नंबर दिया था। मैम बहुत दिन से लगा रहा हूँ, लगता ही नहीं वो तो आज तक कैसे भगवान ने सुन ली मेरी।
1: अच्छा जी, तो आज पहली बार कॉल की है। हेलो माय चॉइस।
0: हाँ मैम, लगाया था, नहीं लगाया था मैंने बहुत दिन से, वो लगता ही नहीं था, वो आज वो बेटा बेटे में आज लगा सही।
1: अच्छा जी, यानी कि आज पहली बार ही मतलब लगाया और बात हो रही
0: है। जी मैम, पहली बार ही लगाया मैंने, वो भी इतना लगा ले, मजदूर आ रहा तो खाना पीना करेंगे, तो मैंने लगा ले और बात करते।
1: जी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे।
0: जी मैम, जी मैम, मैम आप, जी मैम ठीक है, धन्यवाद।
1: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM
0: में। जी नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर बगैबाजा गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया है जी। कौन बोल रही है? भारती मैम भी बोल रहा है।
1: मनोरमा।
0: हाँ जी, और सब बताइए जी, बारिश हो रहा है ना खूब?
1: जी जी, बारिश तो हो रही है।
0: किसी समय से कॉल लगाते लगाते बीच जाके लगा 5 मिनट पहले। बोल रहे की एक गाना सुना दीजिएगा। गाने का बोल है, घुंघरू की तरह बदता ही रहा हूँ मैं।
1: जी मैं गाना सुनाऊंगी, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: हमारा नाम पप्पू ठाकुर है।
1: और कहाँ से?
0: बगही बाजार कटिया गोपालगंज।
1: अच्छा जी, ये गाना जो बताया वो डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: हाँ हाँ, डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारे दोस्त हैं सुभाष सिंह और राजेंद्र भाई हैं, इनके लिए।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: अस्सलाम वालेकुम मैम।
7: वालेकुम अस्सलाम,
6: कैसी हैं?
7: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: हम लोग भी ठीक है। नाश्ता वाश्ता हो गया?
7: हाँ नाश्ता तो हो गया, और आपका हुआ?
6: हाँ नाश्ता हो गया है।
7: क्या करेंगी अभी आप?
6: कुछ नहीं, नहा कर आए थे तो बाल झड़ गए।
7: अच्छा,
6: स्कूल आज छुट्टी है, कोई पर्व वगैरह है?
7: हाँ हाँ पर्व।
6: गाना बजा दीजिएगा।
7: गाना बिल्कुल सुनवाएंगे, पहले अपना नाम बता दीजिए।
6: खुशी पठानपट्टी से।
7: तो खुशी जी और सब बताइए?
6: हाँ सब ठीक है।
7: तो बता दीजिए अपनी फरमाइश।
6: नहीं, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, हिंदी सॉन्ग
7: जी
6: वही बजा दीजिएगा।
7: क्या ये गाना आप मुझे जाके बताएंगे? बोलाएं
6: चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, मेकअप वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में।
7: जी जी, गाना करना चाहेंगी?
6: हाँ, जितना सुनना चाहता है सबको सुनेगा। आप सुनेंगी? अब मेरी बहन और मेरे मामू लोग को सुनाना चाहते हैं।
7: ओके जी, तो चलिए खुशी जी प्ले करते हैं गाना आपका।
6: हाँ
7: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजी 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसन बनी
1: जी? बिल्कुल ठीक बनी। रुआ बताई, रुआ कैसन बनी?
0: हम ठीक बनी।
1: अच्छा रुआ, अभी बाकी है रनी है का?
0: हाँ बाकी है रनी है, याद नहीं कर
1: ना? ना हम तो डेली याद करते नहीं। हम कहीं की कहीं भारती जी रिकॉर्ड करत रही है तो कहीं रुआ फोन कर देले हो क्या?
0: ना जी लगा अपने जनधन को आप नहीं खाना मोबाइल के लिए फोन नहीं खिला डाल बात नहीं टिक टिक कॉल कर देता।
1: अच्छा तो कहीं कुछ भाई रही फोन में?
0: हाँ हम को अपने की ना बात हो गई
1: है। ठीक बानी ना रवा? हाँ हाँ ठीक
0: बानी। अपन बताए की रवा कैसन
1: बानी? ठीक है काम बा,
0: सब कुछ ठीक बा।
1: हाँ हाँ सब क्यों बढ़िया बा।
0: भारती जी ठीक बानी?
1: हाँ ओके ठीक बानी। तो फिर आज कौन सा गाना सुने?
0: गाना सुने हिंदी गाना सुने बा।
1: बता दी।
0: जिसे डरते थे वही बात हो गया, सुना नहीं हिंदी?
1: राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
0: हाँ जी यही गाना
1: बा। क्योंकि सुनाई की भी चाहता नहीं?
0: हाँ सुनो अखबार होगा सुने, भारती में सुने, सोनी में, जैसा लोग हमारे के चिन्ह तो सब कोई सुनी। अरे रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं कोई सिवान से बा, बहुत लोग रेशमा के सुना होगा पठान पटी के।
1: परिचय हो गई सब लोग सुने ला एक दूसरे के।
0: हाँ वो सुना ही होगा यार हमारे के याद पात रही।
1: हाँ मानी सबके ध्यान से सुने ला ना, सबके नाम याद रखे ला एक दूसरे के।
0: तो वो सुनियो हम तरफ से क्या कर ना।
1: जी जी बिल्कुल। तब खाना ना हो गई बनो?
0: हाँ नाश्ता पानी हो गई बा। अरे वो तो जानते बानी हम दोपहर खाना बनाओ नहीं, दाल चावल सब्जी ये बनते है बड़ा।
1: बारिश वरिश होता नहीं?
0: हाँ जी बारिश खूब होता है क्या होता की ना।
1: हाँ हाँ बारिश अभी तो माने फिलहाल छूटल बा।
0: हाँ अभी स्कूल गई बा, खाली अनहार का भइल बा, हवा चलता खूब बा, मौसम अच्छा बा।
1: हाँ हाँ मौसम सुहाना बा।
0: हमरा के तो बारिश खूब पसंद है रौरा जी।
1: हमरा के बहुत ही पसंद है।
0: हाँ बारिश रहा तो खूब खुशी रही है सबसे बेस्ट।
1: हाँ हाँ बारिश से भीगना तो तबियत खराब
0: होना, तबियत तो केस में खराब होते
1: है
0: बारिश में नहा के झाड़ू बटन कर सब घर और पोछ के फिर।
1: हाँ ज्यादा बारिश में मत भीजे ना तो तबियत खराब हो जाएगी।
0: ना जी अब सब नहा ले रहे शाम लेके हरी थोड़ा बहुत कपड़ा बाकी बात आगे न लेगा सब नाश्ता बना कर बता।
1: तो नाम बता दिए इसे
0: रेशमा बोलते पठान पट्टी से रौड़ा भुलाए थे ना जी?
1: ना ना भुलाएल नहीं की लेकिन पूछे के पड़े ला डेली की आदत हो गई बानो।
0: ना ठीक है कर ली अब पहचान तो नहीं रेशमा बोलते पठान पट्टी से।
1: हाँ हाँ हम तो पहचानते वानी। चलिए फिर प्ले करते हैं रव गाना।
0: हाँ ठीक है बजा दी जाना
1: जी।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो।
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो

0: तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM। नमस्ते,
1: मनोरमा बोल रहे हैं।
2: हाँ जी,
1: हेलो, मैं से बोल रहा
2: हूँ। और आपका नाम?
1: लाल बाबू है।
2: अच्छा,
1: तो फिल्म का नाम डॉन है।
2: और गाने के बोल?
1: भाई के पान बनारस वाला। नमस्ते।
2: और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: हाँ, वो है उर्दू विकास है, रंजीत है, मंजीत है और आप है, आपकी टीम है।
2: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
3: खई के पान बनारस वाला।

हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पहन बनाओ रसवाला खुली जाए बंद अकल का ताला।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रतबाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ खई के पहन।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसी हैं?
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
1: सुरभी, गोपालगंज से।
0: अच्छा सुरभी जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, कॉल लगा रही थी, लग गया।
0: वैसे सुरभी जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: गोपालगंज से।
0: गोपालगंज में कहाँ?
1: गोपालगंज में जीएम स्कूल है ना,
0: कहाँ?
1: जीएम कॉलेज है, डीएम कॉलेज।
0: जी जी,
1: गरी से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, तो और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: तो दोस्तों ब्रेक के बाद

0: आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो मैम
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 FM में।
1: सलाम मैम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक है मैम
2: जी? मैं ठीक हूँ, नाम बता दीजिए अपना।
1: रोशनी।
2: कहाँ से बोल रही है रोशनी जी?
1: अगेड़वा।
2: और रोशनी जी क्या हो रहा था?
1: ड्राइंग बना रहे हैं
2: जी।
1: ड्राइंग बना रहे हैं?
2: अच्छा, ड्राइंग बना रही है।
1: हाँ।
2: अच्छा जी, तो किस क्लास की पढ़ाई करती हैं आप?
1: 7।
2: चलिए, तो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है?
1: हाँ ठीक है।
2: तो फिर कौन
1: नाश्ता हो गया?
2: हाँ जी, नाश्ता हो गया। और आपका हुआ?
1: मेरा भी हो गया।
2: चलिए बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: आज स्टोरी के पहले चढ़ाई से तो पिटाई कर रहा था ना मैं।
2: ये गाना मुझे गाके बताएंगे आप? बुलाएंगे।
1: हाँ, छोड़ी के पहले चढ़ाई तो तहर पिटाई करा दे मैं थाना में, उस संभाले में नहीं बत जहर खाना में। गिट्टी पट्टा तोरे से जड़े से कोड़ी तोरे घरे से, ए बर्बादी हुई बर्बादी हुई शादी हुई मोर तोरे से।
2: गाना आप किसी को सुनाएंगे जी?
1: पहले आपको और जो सुनते हैं उनको, और मेरे चाची को, और मेरे चाचा को, और मेरे बहन को, और मेरे अम्मी को।
2: तो चलिए आप फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ठीक, थैंक यू।
2: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: हम बोल रहा हूँ नीतीश कुमार पासवान, बोधा छपरा सिवान जिला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया।
0: बारिश तो मौसम मौसम कैसा है, बारिश का मौसम कैसा है, बारिश हो रहा है?
1: हाँ बारिश तो हो रही है, आज दो तीन दिन से बारिश लगातार हो रहा है।
0: गाना सुना दीजिए मैम हमको।
1: बता दिए
0: तोहरा प्यार में पिटाइल बनी लाइकी मिलत बाबू दास।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: ये गाना सुनवाना है कमल को, लक्ष्मी को, पूरा डेडिकेट है आपको भी।
1: अच्छा जी, आप रेडियो रिंकी में पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ जी मैम, हम तो कॉल करते हैं लेकिन मेरा कॉल भी नहीं लग सकता है।
1: तो आज पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ हाँ पहली बार।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: कार्यक्रम तो बहुत अच्छी लगती है मैडम, आपका भी बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया प्रोग्राम भी होता है, शूट होता है।
1: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक, और सब ठीक है ना?
1: सब बढ़िया।
0: वेलकम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
7: नमस्ते।
6: कैसे हैं मैडम जी?
7: जी हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं बिल्कुल अच्छा है।
7: तो क्या हो रहा था?
6: आपका इंतजार।
7: चलिए चलिए, इंतजार खत्म हो गया और फोन भी लग गया।
6: तो सब बताए, सब समाचार ठीक बार?
7: सब ठीक बार। हुआ नेहा बोला था ना?
6: जी मैडम जी, नेहा बोलता हूँ। पहचान लगे?
7: हाँ हाँ, रुआ जी कैसे ना पहचाने हम।
6: सब ठीक बा, पहचान लगे
7: जी। तो आज कौन से गाना सुने?
6: गाना सुना दे चुपके चुपके चोरी चोरी।
7: कई गाना रोला गा के बता सको
6: मैडम जी? गाना तो ना गाए गए, बाकी रे नहीं सुने।
7: अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं है। ऐसे नेहा जी कहाँ से बोला था?
6: भोर से।
7: तो मौसम कैसे बने के?
6: बहुत बारिश हो।
7: बारिश तो
6: रात भर बारिश हुआ।
7: और ये गाना कैसे सुनाए के विचार?
6: जितना सब है दो सौ चुनता सौ तो सकते।
7: नेहा जी तो चलिए अब गाना प्ले करता नहीं।
6: जी मैडम जी, नमस्ते।
7: नमस्ते। सुनते हैं सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी मैडम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मैं तो सुजनगढ़ जिला गुना से।
1: जी सुनील जी, कैसे हैं?
0: बस मैडम जी, आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं।
1: अच्छा जी
0: जी,
1: तो और बताइए मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम हमारे यहाँ धूप खिल रही है, सोयाबीन कट रही है।
1: अच्छा जी, धूप निकली हुई है।
0: जी, सोयाबीन की कटाई चल रही है।
1: अच्छा, और हमारे यहाँ गोपालगंज में बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है आपके इधर?
1: जी जी,
0: तो हमने उधर भेज दी आपके इधर, हम सोयाबीन काट लेंगे, फिर आप हमारे इधर बाजरे भेज देना, ठीक है?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और आपके उधर क्या फसल होती है?
1: फसल तो होती है बट मेरे घर नहीं होती।
0: नहीं, आपके घर नहीं, आपके शहर में, जैसे कि हमारे इधर सोयाबीन होती है, मक्का होती है, आपके उधर क्या होता है?
1: हम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमारा जो एरिया है वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं है?
1: जी जी, खेती वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता।
0: जी जी, कौन भारती जी बोल रही थी? मनोरमा जी बोल रही है।
1: मनोरमा
0: जी, और भोजन हो गया आपके?
1: जी जी, और आपका हुआ?
0: हाँ मेरा भी हो गया।
1: चलिए बढ़िया, तो आज की क्या है फरमाइश आपकी?
0: जी मैडम जी, आज की फरमाइश है हमारे मामा जी गोलू साहू जी की। हेलो।
1: हाँ जी,
0: हमारे मामा जी गोलू साहू जी की फरमाइश है, पिक्चर का नाम है राम अवतार।
1: जी,
0: और गाने बोलो तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो।
1: तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ।
0: हाँ, तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो कौन था ऐसे ये कुछ मैडम जी, हमको गाना मेरी मोहब्बत की तोहिन होगी, अनिल कपूर वाली फिल्म है ये।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, अच्छा गाना है ये, उनको किसी ने धोखा दे दिया था तो ये गाना वो सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा जी
0: जी,
1: और ये गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
0: जी जी, ये डेडिकेट गाना उनको किसी एक दोस्त को डेडिकेट रहेगा, और हमारे मित्र है गोपाल ओझा जी, दीपेंद्र धाकड़ जी, गजराज सिंह लोधी जी हैं, और सोनी मैम, मनोरमा मैम, और एक और मैम का नाम भूल गया, भारती मैम को ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
1: ओके सुनील जी, तो
0: ठीक है मैडम, धन्यवाद
1: जी। तो सुनील जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
3: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
5: नमस्ते मैम।
4: नमस्ते,
5: कैसी हैं?
4: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
5: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
4: तो क्या कर रही थी?
5: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर से बात।
4: चलिए चलिए, अब जाके लगा है कॉल।
5: जी
4: तो नाम बता दीजिए अपना।
5: मैं शबनम सिद्दीकी बात कर रही हूँ।
4: और कहाँ से?
5: जी खाल से।
4: चलिए तो शबनम जी, कौन सा गाना सुनिएगा आज?

0: मेरे साथ हो, ये वाला सॉन्ग।
1: ये गाना तो बहुत ही अच्छा है
0: जी मैम।
1: तो शबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: हाँ, आपको
1: ओके शबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी हाँ मैम, आप नई मन लग रही है, आप जान सकते हैं
1: जी,
0: आपका नाम जान सकते हैं
1: जी? जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
0: आप न्यू लग रही है।
1: हाँ जी,
0: पहले बार आपका मेरे को हो रही है।
1: जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
0: मैंने बोला कि मेरे तो खराब हो गई है।
1: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम,
1: जी जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, मैं आपसे कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी मनीषा जी, कैसी हैं?
1: मैं पूरा बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
1: अभी कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी, तो
1: रेडियो सुन के उसके बाद से कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को आजादी फरमाई
0: जी
1: बोल रहे हैं। सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी।
0: जी तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: मैं खाना खा लिया है आप?
0: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आप खाई हैं?
1: हाँ मेरा भी हो गया है। तो गाना सुनवा दीजिए।
0: बता रही है,
1: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
0: क्या मनीषा जी, ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
1: नहीं, आप दूसरे दिन गा देंगे।
0: कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: जी हम आपको और भाभी मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी मैडम, प्रणाम।
5: जी प्रणाम।
6: हाल
5: चाल तो ठीक बा। अपन बताएंगे रोवा कैसे बानी।
6: बढ़िया बने, हम सब पहचान रहे।
5: हाँ, रोवा विकास बोलता है ना।
6: विकास बोलता है। और सब बताई।
5: सब बढ़िया बारा उद्वा से। रोवा बताएंगे रोवा कैसे बानी।
6: बढ़िया बनी। और गोपालगंज में मौसम है।
5: गोपालगंज के मौसम तो का ही बताई, बहुत बारिश होता है।
6: हमने के दिल्ली में नोएडा में सारा बहुत धूप निकल है। थोड़ा होने से बारिशो भेजती, थोड़ा हमारियों के ना ठंडा थोड़ा मिली थी। भगवान के पास फोन करी कितना आया ना भेजी।
5: अच्छा चलिए,
6: तो भगवान के लगे कॉल लगवे था करी।
5: दुआ कर ली क्यों ना बारिश हो। वैसे क्या होता अभी?
6: अभी तो ड्यूटी होता
5: है। आज के फरमाइश,
6: आज गाना का फरमाइश होते खेसारी लाल के। वही दिल न लगाई हा, फिर का दुआई हा, यही वाली।
5: गाना बहुत अच्छा गावेंगे। गाना बहुत अच्छा गावेंगे।
6: हाँ, गाना तो गाई ले गया सैनू। अच्छा। लेकिन हमारा नाम सेकंड है, सेकंड में हमारा विकास नाम। तो हमारा नाम दया से, नाम से हमारा फेमस हटे पूरा। चलिए, आपके कृपा से, भगवान की कृपा से, आपके दुआरी पर अगर कभी भी आवे कोई तो अगर नसीब में हुई तो एग्जाम गावे खतरा आ जाए।
5: बिल्कुल।
6: ये नोएडा का मेरा दोस्त है ना, वो गुरदीप, वो भी बोलते है कि यार तुम्हारे घर में चलूंगा तो यार भारती सिस्टर से भेंट करूंगा। यार हम बोले एकदम यार बिल्कुल चलना, यार चलना, मैं घुमा करके लाऊंगा अपने देश में से। और सब मैडम बताइए, आप कैसन बानी अभी?
5: जी जी, हम ठीक बानी, बस थोड़ा सभी से बातें होता अभी।
6: अच्छा चलिए, बढ़िया बा। मौसम कैसे कि खराब चलता ना, दो चार दिन हमारे सर्दी खांसी इतना ना हो गई मैडम की हालत खराब कर दिला।
5: हाँ, मौसम की वजह से होत बा ऐसा।
7: हेलो, नमस्ते मैम।
5: जी नमस्ते
7: मैम। गाना जो बताया ना खेसारी लाल जी का,
5: जी
7: हम दोनों खेसारी लाल के फैन हैं मैम।
5: अच्छा जी।
7: जी, अब गाना जब हम खेसारी लाल के ही गाने पसंद करते हैं, और गाना मैम यही होना चाहिए, जहर ले
6: हो, वही वाला गाना,
7: हम काते ले हो।
6: ये गाना जितना रेडियो रेमियम सुनने वाले हैं सब श्रोताओं को, और मेरे दोस्त है गुरदीप, सबसे पहले आपको सुनवाना है।
5: जी जी बिल्कुल ठीक है विकास जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: अच्छा ओके, ठीक है, नमस्ते मैम।
5: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: हम स्वागत है बोल रहे हैं जी प्रसाद
0: जी, कैसन बानी?
1: हम ठीक बानी, दिनों निमन भइल बा, रात भर बरखा बरसल बा, खूब बढ़िया मस्ती आगे लगा था।
0: हाँ, बारिश तो
1: वही बात हवा बहुत खूब बढ़िया।
0: हाँ।
1: गाना सुना दी पूरा हवा पर
0: जी, बता दी।
1: सावन के महीना पवन कर स्टोर दिया रे झूमे जैसे बनवाना थे मोर
0: जी जी, और गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं।
1: रेडियो रंजन सब कोई सुनता, सब कोई सुनी।
0: चलिए ठीक बा, उसे खाना उना हो गया बचना रहो।
1: ना तो खाना बना रहा, छाना रहा पूरी खीर आलू सब्जी का सब्जी, खूब मस्ती बा खाना खाए में।
0: मौसम बढ़िया भइल बा तो खाना भी अच्छा बने के चाहिए।
1: हाँ
0: बढ़िया बात है, फिर गाना प्ले करते हैं।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुना तो सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके 90.4 FM में।
6: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो
5: जी। नाम बता दीजिए अपना।
6: हम बोल रहे हैं ओम साई टेलर, बंजारी रोड पुलिसन के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
5: जी जी राघव जी, कैसे हैं आप?
6: बहुत बढ़िया है, आप लोग के दुआ से। आप लोग कैसे हैं? पूरी टीम आप लोग सुनाइए
5: जी। सब कोई बढ़िया है यहाँ पे भी।
6: चलिए अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए बारिश के दिन में।
5: जी जी।
6: और मैम, सॉन्ग सुनना है हमको, दिल है बेताब पिक्चर का, क्या तुम्हें खाता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाली है, यही सॉन्ग चला दीजिएगा। और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, स्पेशल मैं आपको टीम को, ठीक है?
5: ओके जी, तो गाना एक बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए।
6: दिल है बेताब पिक्चर मोदी का, या तुम्हें खाता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाली है।
5: तो क्या मुझे गा के बताएंगे ये दो लाइन?

0: बस इतना ही
1: जी। गाना तो बहुत ही अच्छा
0: जी।
1: इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिन 90.4 एफएम में।
1: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मायर एमपी से।
0: जी सुनील जी क्या हाल चाल है?
1: बस ठीक है मैम, बस हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रहा है मैम, और आपके यहाँ भी भेजे तो सुनने में मिल रहा है अच्छा बारिश हो रहा है मैम आपके वहाँ भी।
0: जी जी बारिश तो हो ही रही है।
1: जी जी मैम हमारे यहाँ कल दोपहर 2 बजे से चालू हो बारिश, तो अभी भी बारिश हो रहा है। तो बैठे थे और फोन लगा रहे थे, हम सोचे चलो अभी टाइम हो ही गया है तो फोन लगाते, नहीं टाइम तो समाप्त हो जाएगा।
0: जी
1: जी जी जी
0: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: जी आज तो बारिश हो रहा तो सुनवा दीजिएगा बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और सुनवाएंगे कितने। जी बरसते पानी का मजा कुछ और होगा और सुनवाएंगे आपको कितने रेडियो रिंगजिन लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
0: ओके सुनील जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम धन्यवाद,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिन 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: का हुआ पुछू बेबी?
2: बेबी
1: वो का कोई ले बरू बताइबू की बीपी बढ़ाइबू
2: तो बर्दाश्त कर ले बना।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।